नमस्कार, FM में 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। आज सोमवार है, सक संवत 1948 के श्रावण मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 अगस्त सन 2026। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा इस मंगल ध्वनि के साथ आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 8:57 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे आज के शेष और विशेष कार्यक्रमों का विवरण और उसका प्रसारण समय।

श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि ठीक 9 बजे आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। उसके बाद दोपहर 1 बजे और शाम 6:30 बजे 6:45 मिनट आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: Pacar. साथियों, हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान का समय रहेगा 9:10 पर, और 9:20 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 9:40 पर आप सुन पाएंगे गैर फिल्मी गीत। सुबह 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के, और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। श्रोताओं, कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:00, और 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। शाम 6:05 पे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम माटी का स्वर का समय रहेगा शाम 6:20 पर, और शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। सात बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, और रात्रि 8:00 आप सुनेंगे सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम दिल से। रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे विविधा में जल की, और 8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। रात्रि 9:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत में दर्द भरे गीत। तो साथियों, ये थे हमारे आज के कार्यक्रमों का विवरण और उसका प्रसारण समय। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 MHz पर। सुबह के 9:00 हैं। अब आप सुनेंगे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: में बदलाव किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज बारा और झालावाड़ जिले को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। देश भर के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों और प्रधान आयकर महानिदेशकों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से जयपुर में, और NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता, और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आरक्षण लॉटरी की नई तारीखें तय कर दी गई हैं। जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के लिए आरक्षण लॉटरी 17 सितंबर को, जबकि सरपंच और वार्ड पंच के लिए 18 सितंबर को निकाली जाएगी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने जिला कलेक्टरों और उपखंड अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे पहले ये लॉटरी 17 और 18 अगस्त को प्रस्तावित थी। विभाग के अनुसार राज्य सरकार ने 15 नवंबर तक नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का लक्ष्य तय किया है। इधर राज्य के नगरीय निकायों के वार्डों के आरक्षण के लिए आज लॉटरी निकाली जाएगी। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डों का आरक्षण जिला कलेक्टर स्तर पर किया जाएगा। केंद्रीय कृषि और पंचायती राज मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बारा जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोनों नेता बारा कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे इस दौरान बारा और झालावाड़ जिले के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को आवास की सौगात दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री का बाद में कार्यकर्ताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। अधिक ब्यौरा हमारे 12 संवाददाता से।
2: कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों का शिलान्यास एवं लाभार्थियों को चाबी वितरण, 2400 करोड़ रुपए के ग्रामीण विकास कार्यों को पोर्टल पर शामिल करना, अमृत पोषण वाटिका, अमृत ग्रामीण हाट बाजार, ग्रामीण पुस्तकालय एवं संजीवनी पार्क का शुभारंभ, स्वयं सहायता समूह को 10 करोड़ रुपए के क्रेडिट लिंकेज चेक वितरण, लखपति दीदी योजना 8 करोड़ रुपए एवं सखी योजना के तहत स्कूटी वितरण तथा ग्राम श्री स्वास्थ्य सखी मार्ट बारा का लोकार्पण भी करेंगे।

0: तथा 54 करोड़ रुपए की लागत से बने 7 मंजिला जिला अस्पताल भवन का उद्घाटन भी करेंगे। लक्ष्मीचंद नागर, आकाशवाणी समाचार, 12।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे आज कोटा के बोरेखेड़ा स्थित कोरल पार्क में सुरक्षा संवाद महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर में सांगोद की कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री बिरला वहां सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी आज किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 82,55,00,000 रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें किशनगढ़ के राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल में 72,58,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले 100 बिस्तरों के नए भवन का शिलान्यास शामिल है। भवन में ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, मातृत्व और प्रसूति सेवाओं तथा बच्चों के उपचार की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा अस्पताल में 125,000,000 रुपए की लागत से बनी इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ यूनिट का लोकार्पण किया जाएगा। अराई में 8,32,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का शिलान्यास भी किया जाएगा। रेलवे नेटवर्क में करीब 20,000 स्थानों पर टैंक टू टैप जल शोधन और निगरानी प्रणाली शुरू की जाएगी। ये व्यवस्था वाटर कूलर सहित विभिन्न स्थानों पर यात्रियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लागू की जाएगी। सीएजी की रिपोर्ट में पेयजल की गुणवत्ता से जुड़ी कमियां सामने आने के बाद रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड स्तर पर इसकी समीक्षा की गई। इसके तहत पुरानी और अनुपयुक्त पानी की टंकियां बदली जाएंगी। जल स्रोत और आउटलेट दोनों जगह नियमित रूप से पानी की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। साथ ही टंकियों की समयबद्ध सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने के अलावा जल गुणवत्ता की केंद्रीकृत निगरानी व्यवस्था विकसित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। जयपुर में देशभर के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों और प्रधान आयकर महानिदेशकों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से शुरू होगा। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल करेंगे। सम्मेलन में सीबीडीटी के अन्य सदस्यों के साथ देशभर के वरिष्ठ आयकर अधिकारी शामिल होंगे। इसमें आयकर विभाग से जुड़े वर्तमान और भविष्य के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही विभाग के कामकाज को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव और कार्य योजना तैयार की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन 3 विषयों में पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। समाज शास्त्र विषय का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा 22 से 30 जून के बीच 87 विषयों के लिए आयोजित की थी। ये परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर पद के लिए पात्रता और PhD कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी। एनटीए ने इन त्रुटियों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने निष्पक्ष और त्रुटि रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन 3 विषयों की दोबारा परीक्षा कराने की सिफारिश की थी। जयपुर में लोक मंथन 2026 का आयोजन 4 से 6 दिसंबर तक किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने रविवार कल जवाहर कला केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में लोक मंथन 2026 के प्रतिभागी पंजीयन की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि लोक मंथन का 5वां राष्ट्रीय संस्करण जयपुर में होगा। इस 3 दिवसीय आयोजन की मुख्य थीम हम भारत के लोग रखी गई है।
2: ये हम सबका सौभाग्य है, राजस्थान का भी सौभाग्य है कि इस बार का कार्यक्रम राजस्थान जयपुर में हो रहा है। रजिस्ट्रेशन शुरू है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग रजिस्टर करें और कार्यक्रम में

0: जरूर आए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा। मैं पहले गई हूँ भाग्यनगर में, जाने का मुझे भी अवसर मिला, मैंने देखा जो स्केल है इस कार्यक्रम का वो बहुत बड़ा है, और इसमें चाहे कल्चर की बात करें, इतिहास की बात करें, थिंक टैंक की बात करें, स्पीकर्स की बात करें, हर प्रकार से आपको जब आप इस कार्यक्रम में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ आप इस कार्यक्रम से सीखेंगे।
1: सावन के तीसरे सोमवार पर आज प्रदेश भर के शिव मंदिरों में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। शिवालयों में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। श्रद्धालु भगवान शिव का जल, दूध, दही और पंचामृत से अभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सवाईमाधोपुर के शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर में सहस्त्रघट और रुद्राभिषेक के आयोजन हो रहे हैं। पाली के सोमनाथ मंदिर में विशेष झांकी सजाई गई है, जबकि परशुराम महादेव मंदिर में मेला भरा है। बाड़मेर के विभिन्न शिवालयों में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में नगरीय निकायों के वार्डों की आरक्षण लॉटरी आज निकाली जाएगी। पंचायती राज संस्थाओं के लिए आरक्षण लॉटरी की तिथि में बदलाव किया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बारा और झालावाड़ जिलों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। देश भर के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्तों और प्रधान आयकर महानिदेशकों का दो दिवसीय सम्मेलन आज से जयपुर में, और एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाज शास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। सुबह के 9:10 हुए। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

महाराज दशरथ के दाह संस्कार दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्री राम की चाकरी में निहित है, अवध का राजपद श्री राम सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं, रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरे भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हठ करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। खुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

श्रोता हूँ, अभी आपने सुना हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM में 103.7 MHz पर सुबह के 9:20 में। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें आप सुनेंगे जगजीत सिंह और सुमन कल्याणपुर को।

0: नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अब आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। सुबह के 9:40 में अब आप सुनेंगे गैर फिल्मी गीत। साथियों, शुरुआत करते हैं एल्बम बनारस का ये प्यारा सा नगमे से। आवाज़ मरीना अहमद और रागिनी सारन की है और गीत लकी अली का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं एल्बम ऐसा कभी हुआ नहीं है से। आवाज़ किशोर कुमार, आरडी वर्मा, नीति मोहन और समीर टंडन की है। संगीत आरडी वर्मन और समीर टंडन का, और गीत लिखा है गुलशन बावरा और प्रियंका आर बाला ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं नील कमल सिंह की आवाज़ में, एल्बम चेहरा तेरा से। संगीत आरजे कंका है और गीत लिखा है आशुतोष तिवारी ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुने गैर फिल्मी गीत एल्बम सॉन्ग। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM में 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 10 बजे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं फिल्म संगीत की ओर और सुनवाते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। साथियों, शुरुआत करते हैं फिल्म शर्मिली से। आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है, संगीत SD बर्मन का है और गीत लिखा है नीरज ने।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म शिकार से। संगीत शंकर जयकिशन का और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने।

0: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेतीबाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, फिल्म संगीत का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में फिल्म किनारा से। संगीत RD बर्मन का और गीत लिखा है गुलजार ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने जमाने के। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म आराधना से। संगीत SD बर्मन का और गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म असली नकली से। संगीत शंकर जयकिशन का और गीत लिखा है सैलेंदर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और अंतिम नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म आरजू से। संगीत शंकर जयकिशन का है और गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने।

साथियों, आपने सुना कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने पुराने ज़माने के। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुबह के 10:30 में। अब हम आपको फिर से ले चलते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत में और सुनवाते हैं गाने नए, तराने नए। साथियों, शुरुआत करते हैं फिल्म बजाते रहो से, संगीत जयदेव कुमार का और बोल कुमार के।

0: एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं मीका सिंह और नीति मोहन की आवाज़ में फिल्म बादशाहों से। संगीत अंकित तिवारी का और गीत के बोल है मनोज मुंसियार के।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रेड 2 से। संगीत वाइट नॉइस कलेक्शन का है और गीतकार जानी, आवाज़ जस्मीन संडल्स, सचेता टंडन, दिव्या कुमार और सुमंतु मुखर्जी की है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और शाश्वत सिंह की आवाज़ में, फिल्म लव आजकल से। संगीत प्रीतम का है और गीत के बोले इरशाद कामिल के हैं।

0: This is a Rich Refix.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बहन होगी तेरी से। आवाज़ जगीडी और सीवी रफ्तार की है।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। कार्यक्रम का अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लीगर से। आवाज़ सुखी और लिशा मिश्रा की है, संगीत लीजियो जॉर्ज का।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत में गाने नए तराने नए। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, सुबह के 11 बजे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरली धड़कन की ओर। सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अनुप जलोटा, संजय राज की आवाजों में आपने सुना नलिन वर्मा का लिखा ये भजन। सचिन सतीश ने इसे संगीत से सजाया था। एल्बम शिव शंकर देवाधिदेव, इस एल्बम से हमने इस भजन को आपके लिए सुनवाया।

0: शिव आराधना। इस एल्बम से आप सुन रहे थे भजन अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, महेंद्र दहलवी की बोल, दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

बैजू मंगेशकर और साथियों की आवाज में कबीर दास का लिखा ये भजन आप सुन रहे थे, मन मस्त कबीरा। इस एल्बम से बैजू मंगेशकर ने ही इसे संगीत से सजाया था। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

कविता कृष्णमूर्ति, करसन सगार्थिया और साथियों की आवाजों में हम दिल दे चुके सनम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। महबूब ने इसे लिखा, स्माइल दरबार का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं आई लव यू इस एल्बम से उदित नारायण की आवाज में गीत। फैज अनवर ने इसे लिखा है, संदेश सांडिल्य का संगीत।

0: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
1: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
0: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती।
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
0: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
0: जी।
2: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
0: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो

0: दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग।

इब्राहिम अश्क कका का कलाम आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में। मोहब्बत इस एल्बम से इसलिया भूपिंदर सिंह का ही संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। वाणी जयराम की आवाज में सुनते हैं ये गजल और इसे परवाज एल्बम से हमने लिया है। दानिश बरेलवी ने इसे लिखा। मुरली मनोहर स्वरूप का संगीत।

0: शमीम जयपुरी का यह कलाम आप सुन रहे थे। अनूप जलोटा की आवाज में उन्हीं का संगीत भी इसमें आपने सुना।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे,
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

बाबा सैगल की आवाज में आप सुन रहे थे जुगनी मस्त कलंदर एल्बम से ये गीत। बाबा सैगल और देव कोहली ने इसे लिखा और बाबा सैगल का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। जाने मन फिल्म का ये गीत गुलजार ने लिखा है, अनु मलिक का संगीत, सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज।

जाने मन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सोनू निगम और साधना सरगम की आवाजें, गुलजार के बोल, अनु मलिक का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना 2027 के लिए जनसंख्या गणना 1 सितंबर से शुरू होगी। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक डिजिटल रूप से स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण जनगणना पूरी करना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना का कार्यक्रम विशेष व्यवस्था के साथ और देश के बाकी हिस्सों से पहले रखा गया है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने कहा है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG तंत्र के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। झारखंड में JPSC JSSC भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: JPSC JSSC अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट इक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में आज भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पवित्र सावन महीने के तीसरे सोमवार पर भगवान के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां जमा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने आज बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित 4 जिलों शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव के प्रभावित परिवारों के लिए अंतरिम वित्तीय सहायता जारी की। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की गिरावट में चल रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 515 अंक की गिरावट से 77,494 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं विविध।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर सपन चक्रवर्ती और गुलशन बावरा की आवाजों में सुन रहे थे सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गीत, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम में हम अभिनेता सचिन पिलगांवकर के जन्मदिन पर उनकी फिल्म के कुछ गीत सुन रहे हैं।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और अंतराल में जाने से ठीक पहले हमने आपको सुनवाया गीत गाता चल फिल्म का गीत, जिसे लिखा और संगीतबद्ध किया रविंद्र जैन ने, और आवाज आपने सुनी जसपाल सिंह और साथियों की। कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं नदिया के पार फिल्म से।

0: नदिया के पार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। चंद्रानी मुखर्जी, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल उन्हीं का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था

विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अभिनेता सचिन पिलगांवकर के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों के कुछ गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: गोपाल कृष्णा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रविंद्र जैन का गीत और उन्हीं का संगीत, यशदास और हेमलता की आवाजें।
1: बैठ जा, खड़ी हो जा,
2: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाएं हम?
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सेहतनामा,
0: विविध भारती पर। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: आंखियों के झरोखों से फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हिमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल, उन्हीं का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए अब सुनते
1: हैं। भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में आप सुन रहे थे त्रिशूल फिल्म से ये गीत, साहिल लुधियानवी के बोल, खय्याम का संगीत।
1: बैठ जा, खड़ी हो जा।
2: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
3: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
3: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
2: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: चले।
1: ज्वेल थी फिल्म का गीत। आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द और सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
5: तुम्हारी याद सताते हैं।
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
7: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
6: सखी सहेली?
7: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
6: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
8: सखी सहेली।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजें।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जय से हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में साहिल लुधियानवी के बोल, सपन चक्रवर्ती का संगीत, जमीर फिल्म के इस गीत में।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे जयपुर के अंदर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: जयपुर अजमेर केंद्र है, प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। राज्य के नगरीय निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी आज निकाली जा रही है।

0: नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के वार्डो का आरक्षण जिला कलेक्टर स्तर पर किया जा रहा है। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डो के लिए जिला कलेक्टर संदेश नायक के नेतृत्व में लॉटरी निकाली गई। इस अवसर पर निगम आयुक्त ओम कासेरा भी मौजूद रहे। अन्य जिलों में भी कलेक्टर की अगुवाई में लॉटरी प्रक्रिया सम्पन्न की जा रही है। इस बीच पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए आरक्षण लॉटरी 17 और 18 सितम्बर को निकालना तय किया गया है। जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के लिए 17 सितंबर को, जबकि सरपंच और वार्ड पंच के लिए 18 सितंबर को लॉटरी निकाली जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 15 नवंबर तक नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने का लक्ष्य तय किया है। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए जल्दी ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के 2 दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद बताया कि ये समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। नीति तय करने में विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखा जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंक विकसित भारत की रूपरेखा तय करेंगे। बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और वित्तीय संस्थाएं बैंकिंग क्षेत्र के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि और पंचायती राज मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 12 जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोनों नेता 12 कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे इस दौरान 12 और झालावाड़ जिले के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 2,400 करोड़ रूपये के ग्रामीण विकास कार्यों को पोर्टल पर शामिल करना, अमृत पोषण वाटिका, अमृत ग्रामीण हाट बाजार, ग्रामीण पुस्तकालय और अमृत संजीवनी पार्क का शुभारंभ शामिल है। श्री चौहान 54 करोड़ रुपए की लागत से बनी 7 मंजिला जिला अस्पताल के भवन का उद्घाटन भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री का बाद में कार्यकर्ताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के 5 दिन के दौरे पर है। श्री बिरला कोटा के बोरखेड़ा स्थित कोरल पार्क में सुरक्षा संवाद महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इसके बाद वे सांगोद की कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री बिरला वहां सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। द्वितीय जोधपुर चैलेंज कप बास्केटबॉल प्रतियोगिता जोधपुर में 8 से 12 सितंबर तक आयोजित होगी। उम्मेद स्टेडियम में होने वाली प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग की राष्ट्रीय स्तर की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों और विजेता टीमों के लिए करीब 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है। आयोजन का उद्देश्य जोधपुर और राजस्थान की उभरती बास्केटबॉल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने और सीखने का अवसर देना है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री तथा जोधपुर बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व और टीम भावना विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता में कमी आई है। हालांकि कुछ स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। इनमें चित्तौड़गढ़, करौली, दौसा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा और अलवर शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान में मॉनसून की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान की तुलना में अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। 19 से 21 अगस्त के बीच बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। नागौर पुलिस ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में 100 से अधिक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने भीलवाड़ा के जहाजपुर से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह पिछले 5 वर्षों से सक्रिय था और 10 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी और जेवरात चोरी कर चुका है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: The news read by
2: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। FM में 103.7 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 1:05 में अब हम आपको एक बार फिर से ले चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन की ओर। सुनवाते हैं विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

राजस्थान में खरीफ 2026 में फसल बीमा योजना PMFBY एवं RWBCIS लागू की जा रही है। आज ही अपने नजदीकी बैंक CSC केंद्र या अन्य अधिकृत माध्यम से अपनी फसल का बीमा कराएं और प्राकृतिक आपदाओं से अपनी फसल को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि रक्षक हेल्पलाइन 1447 पर संपर्क करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।

केके और श्रेया घोषाल की आवाज में गाना भी आप सुन रहे थे फिल्म जश्न से। कुमार के बोल थे शारिब तोशी का संगीत। अगले गाने में एक बार फिर से श्रेया घोषाल की आवाज, साथ है सोनू निगम। समीर के बोल है राम संपत का संगीत। फिल्म का नाम है खा

फिल्म एक था टाइगर से ये गाना भी आप सुन रहे थे वाजिद और श्रेया घोषाल की आवाज में। कौसर मुनीर ने इस गाने को लिखा था, संगीत से सजाया साजिद वाजिद ने। इस फिल्म संगीत के कार्यक्रम का आखिरी गाना सुनिए फिल्म तुम मिले से। आवाजें हैं जावेद अली, इरफान अशरक और शादाब की, सैयद कादरी के बोल हैं प्रीतम का संगीत।

तुम मिले फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 497.51 मीटर पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पणिहारी।

0: मणिहरि कार्यक्रम।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन

0: में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: लोग घर में नाग देवता रो चित्र बना के
3: सब कुछ हट जाए तो क्या करेंगे आप उस एक दिन? क्या होगा आपके मन का वो काम जो आप करना चाहते हैं और कभी नहीं कर पाए, वक्त नहीं मिला या कुछ समय इस तरह का था, परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे आप, ये हमें बताइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि किस चीज की एक कसक मन में रह गई है तो वो क्या है, हमसे साझा कीजिए आज। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गीत, हमें बताइए कौन सी फिल्म का है, किस पर फिल्माया गया।

छोटी सी बात, फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, विद्या सिन्हा इसमें नजर आती हैं। हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है इस गीत के बारे में। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये गीत समझ में आया था आज की भारत के बारे में, पर काम का लोड होने के कारण मैं लिख नहीं पाया। हमारे एक और साथी कह रही कि मेरा तो मन है कि एक दिन ऐसा आए मैं आप सबके साथ स्टूडियो आकर मिल सकूं, आप सभी के साथ एक फोटो खिंचवाऊं। हमें तो पूरी उम्मीद है कि ये दिन जरूर आएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि इस गीत की प्रतीक्षा कर रहे थे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बचपन से स्कूल टीचर बनना चाहती थी, अब रिटायरमेंट के बाद जरूरतमंद बच्चों को स्कूल में जाकर फ्री में पढ़ाती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ। अब इस तरह अपनी सेकेंड इनिंग चल रही है। बहुत ही खूब अच्छी तरह से आपने ये काम किया। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मन भी लगा रहता था, स्कूल में हर खेल में भागीदारी रहती थी, फिर पढ़ाई के कारण सब छूट गया। अब अवसर मिले तो पहले अवसर मिले और पहले वाली थोड़ी स्फूर्ति भी मिल जाए तो खेलों में जाएंगे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि

शमी कपूर साहब की जो जंगली फिल्म का गीत उन्होंने सुना, उसके लिए वो कहने कि कुछ लोग को इसी तरह की जिंदगी पसंद आती है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन दूसरों की नजर में खटकते रहते हैं, पर कोई बात नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे कि अनेक विवादों का कारण बहुत छोटी सी बात होती है जो बड़ा विकराल रूप धर लेती है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिनके साथ नहीं बनती उनसे एकदम दूर हो जाते हैं, हम तो जबरदस्ती नहीं निभाते किसी के साथ बात, ये नहीं कि सारे विचार सबसे मिलें, पर कुछ लोग अपनी ही बात मनवाने में लगे रहते हैं। हमारे एक और साथी कहने कि अपनों के साथ काहे का स्वाभिमान, ये तो बाहर वालों के साथ होना चाहिए। भाई हमें लगता है कि आप स्वाभिमान नहीं अभिमान लिखना चाहते हैं, क्योंकि अभिमान किसी से नहीं करना चाहिए पर स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जिंदगी की इस भाग दौड़ में जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो एहसास होता है कि मैंने हर लम्हा दूसरों की खुशियों को संवारने में गुजार दिया। पहले बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने की फिक्र रही, तो कभी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने की जद्दोजहद। उनके चेहरों पर खिलती मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी कमाई बनी और उनकी जरूरतों के आगे मेरी अपनी इच्छाएं चुपचाप पीछे छूटती चली गई। सच्चाई तो ये है कि अभी तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए हो, लेकिन इस बात का मुझे कोई मलाल नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको इस बात का कोई मलाल नहीं, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि आप कोई ऐसा काम कीजिए जो सिर्फ आप अपने लिए करें और उससे आपको जो खुशी मिलेगी उसकी तो क्या ही कहने, उसके बारे में भी हमें बताइएगा कभी न कभी। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें ये बताइए कि क्या आप वाकई परवाह करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? और इस फिल्म का नाम भी बताइए।

दिल चाहता है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हमारे कई साथियों ने सही नाम बताया फिल्म का, और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं तो सोच भी नहीं पा रही कि एक दिन मैं क्या करूं, मैं फिर से बचपन में जाकर उन सब दोस्तों से मिलकर वही मस्ती भरा पल एक बार और जीना चाहती हूं, जहां हर पल बस खुशियां ही खुशियां हो। तो हम आपको एक आइडिया देते हैं कि आप ये कर सकती हैं कि बचपन में जो चीजें आप किया करती थी अपनी सहेलियों से, अब भी आप मिलने की कोशिश कीजिए, तो आपको वो खुशी थोड़ी बहुत तो जरूर मिल जाएगी। क्योंकि अपने मन के करने के लिए हम आपको काल्पनिक तौर पर नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ सोचिए, नहीं, करके देखिए, बड़ा मजा आएगा। हमारे एक और साथी कहने कि चाहे कोई हमें बुरा कहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, बहुत से लोग हमसे 36 का आंकड़ा रखते हैं, पर हम जीते अपनी ही इच्छा से हैं। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वो गार्डनिंग उन्हें बहुत पसंद है और वो ये काम करती हैं, वॉलंटियर करती हैं वो अपनी सोसाइटी के लिए, 15 साल हो गए और वो ग्रीनरी अवार्ड भी उन्होंने 2 बार जीता है, कैश भी मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, और ये अवार्ड उन्होंने खुद दिल्ली में ये कलेक्ट किया अपने आप ही। 200 पॉटेड प्लांट उन्होंने खुद लगाए और उनकी रखवाली करती हैं और किसी की सहायता नहीं लेती, खुद उनकी रखवाली करती हैं। तो बहुत ही अच्छी बात आपने की और अपने मन की आप ये कर रही हैं और उससे लोगों का भी फायदा हो रहा है। तो ये भी होता है, जब हमारा मन हम खुद खुश रखते हैं तो उससे ही हम दूसरे लोगों को अपने आप ही खुशियां बांटते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। वैसे ही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल चाहता है पुरानी फिल्मों के गीत सुने, मगर अब नई फिल्म का दिल आ गया है तो दिल इसको भी सुन लेगा, कान भी सुन लेंगे। भाई, नई और पुरानी दोनों फिल्मों का दौर है और अच्छे अच्छे गीत हैं, हमारी थीम के साथ मैच कर रहे हैं, तो क्यों ना सुना जाए। हमारे एक और साथी कह रही, हम तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, जिससे हमें बहुत खुशी मिलती है। ऐसा लगता है हम कहीं जाकर कुछ गीत गाएं, भले ही उसमें सुर ना हो, बस अपनी खुशी के लिए। एक बात और, जब कहीं हम देखते हैं कोई गीत गा रहे हैं तो हम माइक लेकर एक लाइन ही सही गा लेते हैं, फिर बच्चे कहेंगे कि क्या मम्मी आप ये क्या करती रहती हैं। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है, कहते हैं ना परवाह के लोग क्या कहेंगे, शायद इसलिए ही आपने अपने लिए हम कभी जिए नहीं। वही हमारे एक और साथी कहते हैं, दिल तो नहीं करता कि उनकी बातों की परवाह करें, पर आप नहीं करेंगे तो लोग जबरदस्ती आपसे परवाह करवा कर ही रहेंगे। भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर आप ठान लें कि आप किसी की परवाह नहीं करेंगे तो देखिए, फिर धीरे धीरे बेपरवाह होने का भी एक मौका मिलने लगेगा आपको। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मन की तुलना चंद्रमा से की गई, जिस प्रकार चंद्रमा घटता बढ़ता है उसी प्रकार मनुष्य के मन की मनोदशा कही गई है। कभी इच्छाओं से अभिभूत होकर श्रृंख हो जाता है, कभी निराशा से बोझिल थकासा, कभी आशा की किरण से चमकता हुआ, हर दर्द से बेपरवाह। सच, कितनी असीम शक्तियां छुपी हैं इस मन में। मन के हारे हार है मन के जीते जीत। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि उनका मन था कि आकाशवाणी में प्रोग्राम करूं, एक दो बार गई भी, लेकिन कुछ हालात की वजह से रेगुलर नहीं हो पाया। अब आप लोगों से मिलने का भी मन करता है, मुंबई स्टूडियो जाऊं और आप सबसे मिलूं। तो आपका ये मन जरूर, आप मन का काम पूरा कर सकती हैं ऐसा हमें लगता है, और भविष्य में जरूर ये होगा ऐसा भी हमें लगता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि तबला बजाने की इच्छा थी जो नहीं पूरी हो सकी, लेकिन अब मैंने तबला क्लास लगाया है और सीख रहा हूं। भाई, क्या कहने, क्योंकि जब आपका मन किसी चीज को करने का हो और आप उसकी ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करते रहें तो यकीन मानिए वो काम तो होकर ही रहेगा। जैसा कि हमारा मन कर रहा है कि आपके मन की बात सुनते हुए गीत आपको सुनवा दें, तो देखिए ये काम पूरा हो रहा है। बताइए कौन से फिल्म का गीत है।

0: एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और आज हम बात कर रहे हैं कि अपने मन के कब करेंगे हम, अपने मन की बात नहीं कब सुनेंगे हम, क्योंकि बचपन से हमने तो ये सीखा है कि खुद को तो बाद में रखिए, दूसरों को पहले रखिए, खुद की खुशी के बारे में हम ना सोचें, ऐसा कई बार हमें सिखाया जाता है। लेकिन एक बात जो हमें नहीं सिखाई जाती वो ये कि हमारी जिम्मेदारी अपने प्रति है, हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई और हमारा ख्याल कैसे रखेगा। और बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो उम्र को देखकर कही जाती हैं कि आपकी उम्र इतनी हो गई है, अब आप ऐसा ना करें, वैसा ना करें। तो हमारे एक साथी कह भी रहे हैं कि इस जीवन के रंगमंच में अनेक किरदार निभाते निभाते हम अपने को ही खो बैठते हैं, सबके सुख और खुशी में हम भी सुख और खुशी पा जाते हैं, अपने निज सुख और आनंद की ओर ध्यान नहीं जाता और कर्तव्य करते करते अपने को हम ना भूलें, ऐसा ये कह रहे हैं। और कई बार हमें देखना चाहिए कि अपनी खुशी भी आगे रखनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात आपने कही और लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, यही गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। राजेश खन्ना नजर आते हैं पर्दे पर, ये बात किसे समझा रहे हैं पर्दे पर ये बताइए और फिल्म का नाम भी बताइए।

0: अमर प्रेम फिल्म का ये।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: लोगों की अपना काम है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा ना करो। और हमारे और साथी कहने कि अगर एक दिन के स्वतंत्रता ईश्वर दे दें तो मैं असीम सच्चिदानंद को हर के ही हृदय में भर दूं। और हमारे और साथी कह रहे हैं कि पहली कक्षा की सहेलियों से भी वो मिलती हैं। और एक साथी हैं वो बना रही हैं अपनी दूसरी श्रोता साथी के साथ प्लान विविध भारती स्टूडियो आने की। हमारे और साथी कह रहे हैं कि अगर परवाह न करें, सपने न देखें, तो हर शख्स आपसे कोई भी नाराज ना हो, यानी एक सपना है ये कि कोई नाराज ना हो। हमारे और साथी कह रहे हैं कि यदि ऐसा एक दिन हो जाए तो अपनी फेवरेट स्कूल टीचर, स्कूल की बेस्ट फ्रेंड के साथ पूरा दिन बिताना चाहेंगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि सच और झूठ में यही खेल है, 100 सुनार की 1 लोहार की। और एक और साथी अपने दोस्त को याद कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो हमारा पल अपनी बातों से, चुटकुलों से खुशहाल कर दें। हमारा एक दोस्त था जो अपनी बातों से इतना हंसाता था कि सांसें फूल जाती थी, उसके आने का इंतजार करते थे। तो बस जीवन में अपने मन की भी कीजिए, अपने मन की बातों के लिए भी ध्यान रखिए। और आज के इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

नमस्कार। आज की त्रिवेणी मोड़ शब्द पर आधारित है। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ भी आते हैं जहां से जाकर लौटना मुनासिब नहीं होता। बड़े ही अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते। उस मोड़ पर आकर ठहर सी जाती है जिंदगी। इन्हीं अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, वहीं कुछ अपने होकर अनजान बन जाते हैं। इसमें कभी खुशी भी मिलती है तो कभी गम में बिखर जाते हैं। हर मोड़ पर एक नया

जिंदगी में मोड़ों से भरी एक लंबी सड़क होती है। यही मोड़ हमें सिखाते हैं कि जिस रास्ते को तुमने चुना है, मंजिल उसके बहुत दूर है। कुछ पाना है तो कुछ मोड़ पर आकर लौटना हारने जैसा है। जैसे जब हम शहर में जीविका की तलाश में आते हैं तो समस्याएं, परेशानियां मुंह फैलाए आती हैं। ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं कि उन स्थितियों में अपने आप को संभालना ही पड़ता है। कई दोस्त साथी बनते हैं, कुछ दूर तक साथ चलते हैं, लेकिन मुश्किलों के मोड़ पर कुछ हाथ छोड़ भी देते हैं। तब भावनाएं आहत होती हैं, लेकिन भरोसा खुद पर गर हो तो ये मोड़ भी सीधे हो जाते हैं।

कई बार हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि अगर वो एक मोड़ ना आया होता तो शायद हम इतने समझदार, इतने मजबूत ना होते। दर्द देने वाले मोड़ ही अक्सर इंसान को अपनी असली पहचान से मिलवाते हैं। इसीलिए जब भी जिंदगी किसी नए मोड़ पर लाकर खड़ा करे तो डरिए मत, हो सकता है वही मोड़ आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय बन जाए। क्योंकि रास्ते चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, हर मोड़ के बाद एक नई सुबह इंतजार करती है, एक नए मोड़ का।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 184 रन बनाए। और BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। भारत के MR अर्जुन, हरिहरन अम सकरून पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंचे।

0: समाचार विस्तार से। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद कहा कि यह समिति विभिन्न मुद्दों और अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यदिशा तय करेगी।
1: On the basis of a well-researched
2: पहले से उपलब्ध शोध दस्तावेजों से समिति को चर्चा के लिए जरूरी ठोस जानकारी प्राप्त होंगे। समिति के विचारों और सुझावों से स्पष्ट होगा कि यह देश को विकसित भारत की दिशा में किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है और इसमें बैंकों की क्या भूमिका होगी।
1: And in that, the role of banks.
0: वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में हैं। डूबे कर्ज की स्थिति निम्नतम स्तर पर होने के कारण भविष्य के सुधारों के लिए मजबूत आधार उपलब्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उच्च स्तरीय समिति से सिफारिशें मिलने के बाद सरकार और बैंकिंग क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज गति देने में सक्षम होंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स सहयोग की अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की है। नई दिल्ली में आज जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य तथा संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा कि ब्रिक्स संगठन पिछले दो दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है।
2: श्री तन्मय कुमार ने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि सतत विकास, जलवायु समायोजन, संसाधन क्षमता और चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरणीय निगरानी के संदर्भ में भागीदारी मजबूत हुई है। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स 2026 की गतिविधियां वैश्विक सहयोग को मनुष्यता प्रथम के आधार पर जन केंद्रित बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से निर्देशित हैं। भारत ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान पर्यावरणीय कार्य समूह और संपर्क समूह ने चार प्राथमिकता क्षेत्रों सतत जीवन शैली, वनीकरण, जंगल की आग और आपदा प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समायोजन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स सिविल फोरम में विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। उन्होंने कहा कि इससे ब्रिक्स संगठन के तीन आधार स्तंभ राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, वित्तीय सहयोग और जनभागीदारी के बीच समन्वय मजबूत हुआ है। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई, जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सावन माह के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वहां एकत्र थी।
3: लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पर जलाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की कतार में भगदड़ से ये हादसा हुआ। हादसे में गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के अनुसार आज सुबह श्रद्धालुओं के अशोक धाम स्टेशन हॉल्ट से मंदिर जाने वाले रास्ते में बिजली के गिरे खम्भे में करंट दौड़ने की अफवाह के बीच भगदड़ मचने से ये हादसा हुआ।
4: मंदिर का क्यू वो पहुंचा हुआ था अशोक धाम हॉल्ट तक, तो जो उसका क्यू था उसके राइट साइड में पोल था, उधर गिरा तो अफवाह फैल गया कि बिजली गिरा है।
3: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के निकटतम परिजन को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने और घायलों को समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धालुओं की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता कर रहा है। रक्षा मंत्री ने इस दर्दनाक हादसे के पीड़ित हर व्यक्ति के लिए कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की प्रार्थना की। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। आग सबसे पहले होटल के रिसेप्शन में लगी और 4 मंजिला इमारत तक फैल गई। आग लगने के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा बचाव अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीरभूम हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए डिजिटल स्वगणना प्रक्रिया आज आधी रात से शुरू हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जनगणना 2027 के अंतर्गत यह प्रक्रिया 31 अगस्त तक जारी रहेगी।
1: जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी अमित शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि ये प्रक्रिया जम्मू कश्मीर के 16 जिलों में की जा रही है। इसमें जम्मू, श्रीनगर, सांबा और राजौरी जिलों को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लद्दाख को इस अभियान के अंतर्गत पूरी तरह कवर किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि स्वगणना प्रक्रिया जियो रेफरेंस्ड है। अपने निर्धारित क्षेत्रों में मौजूद निवासी ही इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। निवासी आज से डिजिटल स्वगणना के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे। इस बार जाति संबंधी जानकारी भी देनी होगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
2: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे, नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था। यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वो कांग्रेस नेता के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही न करे। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी से भी कहा कि वे श्री गांधी के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में उच्च न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल न करें। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ तथा ने श्री गांधी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और सीबीआई, ईडी तथा उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले कर्नाटक निवासी एस विग्नेश शेषिर को नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गांधी की ओर से दायर याचिका पर यह पीठ सुनवाई कर रही थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तेजी से बदलती तकनीक के इस दौर में स्नातक डिग्री शिक्षा का अंत नहीं बल्कि निरंतर बदलाव के साथ सीखते रहने की शुरुआत है। आज तमिलनाडु के तिरुवरूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2014 के बाद देश में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे के अभूतपूर्व विस्तार का उल्लेख किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सेना की टुकड़ी संयुक्त मैत्री सैन्य अभ्यास में भाग ले

0: के साथ आंधी वर्षा की संभावना है। दिल्ली के कुछ भागों में आज हल्की बारिश हो सकती है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकरुणन की भारतीय जोड़ी पुरुष डबल्स के दूसरे दौर में पहुंच गई है। आज ही पूर्व विश्व चैंपियन और नौवीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल के साथ खेलेंगी। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 187 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। हॉकी विश्व कप में आज नीदरलैंड्स के अम्स्टरफेंड में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। विश्व कप में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को वेल्स पर 3-1 की विजय के साथ की, जबकि इंग्लैंड ने प्रतियोगिता के पहले दिन पाकिस्तान को 4-1 से हराया। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 कर्मियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार से सम्मानित किया। इन पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने कानून निरस्त किए जाने और नए कानून बनाने तथा प्रशासन और लेखांकन में प्रौद्योगिकी अपनाने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331081, व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 148 अंक की गिरावट से 77,861 पर कारोबार कर रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बैंकिंग सुधारों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। भारत ने ब्रिक्स सहयोग की अपनी अध्यक्षता में जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण की पुष्टि की। बिहार के अशोक धाम मंदिर में भगदड़ से 7 महिला श्रद्धालुओं की मौत। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग हादसे में 5 लोग मारे गए। पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन के खेल में मेजबान श्रीलंका ने पहली पारी में 5 विकेट पर 189 रन बनाए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

हेमंत कुमार की आवाज में घर हाउस नंबर 44 फिल्म का ये गीत आपने सुना। साहिल लुधियानवी की बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नकमे कार्यक्रम। आइए सुनते हैं भाभी फिल्म से ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज में भाभी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, राजेंद्र कृष्ण के बोल चित्रगुप्त का संगीत।
1: बैठ जा, खड़ी हो जा।
2: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें

0: उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
1: अब कहां जाए हम?
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
0: सेहतनामा कार्यक्रम में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदा राजाध्यक्ष आ रही हैं।
2: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सेहतनामा
4: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे थे गीता दत्त को भाई भाई फिल्म के इस गीत में, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज तुम सा नहीं देखा फिल्म के इस गीत में।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया ये गीत, फिल्म पेइंग गेस्ट, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।

किशोर कुमार और आशा भोसले को आप सुन रहे थे पेंगेस फिल्म के गीत में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब सुनिए मदर इंडिया फिल्म से ये गीत।

शकील बदायूनी की रचना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मदर इंडिया फिल्म के इस गीत में संगीत नौशाद का। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। गाने का आनंद लीजिए और मुझे दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार, विविध भारती का सुरीला सफर जारी।

0: सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और दीपा आपको सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: सोनाली आपको और हमारी सभी सखियों, सहेलियों, श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का
0: हेल्दी नमस्कार। मैं समझ गई थी कि आपका हेल्दी नमस्कार होगा।
1: क्योंकि भाई स्वास्थ्य है तो धन है, वो ही हमारा सच्चा धन है।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: और अभी बारिश का मौसम है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए।
1: बिल्कुल, सबका, घर वालों का, परिवार का और स्वयं का। सखियां अपने आप को सबसे पीछे छोड़ देती हैं स्वास्थ्य के मामले
0: ये
1: में।
0: बिल्कुल सही बात आपने कही। क्योंकि सबका ख्याल रखती है पर खुद के लिए बहुत हमेशा कभी सोचती नहीं खुद के लिए, है ना।
1: ये तो हम अपनी सखियों से कहेंगे कि भाई परिवार का ध्यान रखते रखते आप अपने आप को पीछे कहीं न छोड़ दीजिएगा, क्योंकि परिवार की धुरी तो आप ही हैं।
0: और जब हम खुश रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो हर त्योहार हम उसी उमंग, उसी उत्साह के साथ मनाते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि आज नाग पंचमी मनाई जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: आज हर घर में नाग पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा है, तो सारे श्रोताओं को, सखियों को नाग पंचमी की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना भी शुरू कर दिए।
1: बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और साथ में जब भाई बात हो रही है कोई पर्व की, तो पर्व आते ही याद आ जाता है खाना पीना, भोग प्रसाद, अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये जो बच्चे जो बाहर के खाने की जिद करते हैं, जंक फूड खाने की जिद करते हैं, तो इन सब बातों से कैसे निपटा जाए या उस आकर्षण को कैसे कम किया जाए। बहुत सारे कमेंट्स तो आए हैं सोनाली। और
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
4: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
5: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
4: हाँ।
5: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
4: हाँ।
5: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
4: हाँ? पता नहीं।
5: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
6: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: वृष्टि टापुर टुपुर जब पड़ती है ना दीपा, तो कितना उमंग और उत्साह का मौसम हो जाता है।
1: बिल्कुल, और दिल भी कहीं एकदम ऐसा करने लगता है कि मन में जैसे एक स्वाभाविक सी संगीत टापुर टुपुर वाली ही उत्पन्न होने लग जाती है।
0: और अब इंतजार है श्रोताओं के साथ हमें भी कथा सुधा का,
1: तो चलो
0: तो सुनते हैं आज तेतर कहानी का भाग दो।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना
4: आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। अनर्थ महा अनर्थ, भगवान ही कुशल करे तो हो, ये पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था, आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान सातवें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त, शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती या माता को या अपने को।
5: लड़की तो जरा देखो, दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है ये, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं, जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक, कलमुई नहलाते समय रोई भी नहीं, ठुकुर ठुकुर ताकती रही। ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं, हाँ?
6: इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े, उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ।
4: उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुंग करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई।

0: बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा,
1: सिद्धू सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ला ला ला ला ला, लाओ तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्नी सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो।
0: सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भाई भी दौड़ा, दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा, आज शायद पहली बार उसकी शुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया।

0: पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया। बालकों को बच्चों से बहुत प्रेम होता है। अगर किसी घोंसले में चिड़िया का बच्चा देख पाए तो बार बार वहां जाएंगे, देखेंगे कि माता बच्चे को कैसे दाना चुगाती है, बच्चा कैसे चोंच खोलता है, कैसे दाना लेते समय परों को फड़फड़ाकर चेंचे करता है। आपस में बड़े गंभीर भाव से उसकी चर्चा करेंगे, अपने अन्य साथियों को ले जाकर उसे दिखाएंगे। सिद्धू ताक में लगा रहता। जो ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में दो दो तीन तीन बार पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वो स्वयं चोकर के लोभ से चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई एक महीना गुजर गया। लड़की हृष्ट पुष्ट हो गई, आंखें जग उठी, शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो न सकती, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वो मरने को नहीं, हमें लोगों के सिर जाएगी, कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं। जब ही तो दिन दिन निखरती आती है, नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी।
2: मुझे तो लगता है दूध पिलाती है ये बिटिया को। अरे दूध क्या पिला रही है, सांप पाल रही है सांप। क्यों लड़की का बड़ा छो करती हो हा? हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, अब तुम न छो करोगी तो कौन करेगा भला। हाँ
3: अम्मा जी, ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ।
2: अरे तो मैं मना थोड़े ही करती हूँ। अरे मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूँ है। अरे कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। हाँ
3: अरे अम्मा जी, अब आपको विश्वास ही ना आए तो कोई क्या करे।
2: हाँ तो क्या, मुझे पागल समझती है तू है? पागल समझती हो? वो हवा पी पी कर ऐसी हो रही है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता क्या?
3: सही कह रही हैं। भगवान जाने अम्मा जी, मुझे तो आप ही अचरज होता है कि इसका चेहरा कैसे खिलता ही जा रहा है।
1: बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई। दादी को लगा ये मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्ची से कोई बैर है। उनके मन में ये भाव अंकुरित होने लगा कि इसे कुछ हो जाए तब ये समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वो जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल कामना करने लगी केवल इसलिए कि मेरी शंकाएं सत्य हो जाएं। वो ये तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा तुमने, मेरा कहा ना माना ये उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों ये द्वेष भाव प्रकट होता

0: था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति एक साल कुशल से कट जाता तो इनसे पूछती। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी, न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था, न रोते। इस भांति 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट ना हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे।
1: बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाती। कुछ समझ में नहीं आता, पुत्र भी किसी दिन पैरगाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता, ना बहू के मैके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आती है।
0: एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर कह भी दिया,
2: अम्मा ये सब ढकोसला है, तेतर लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं, तो सबके सब माँ बाप क्या मर जाते हैं।
0: अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई है, स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद हैं।
2: अरे अम्मा क्या हुआ, अरे कैसी तबीयत है, अरे हो क्या गया।
3: अरे आ गया, देखिए ना अम्मा जी को दोपहर से ही कलेजे में शूल सा उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही हैं।
1: अरे क्या बताऊं बेटा, तुम आ गए दामोदर, आओ अब ना बचूंगी, हाय भगवान अब ना बचोगे, जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई थी, इतनी उम्र बीत गई बेटा, ऐसी पीड़ा कभी नहीं हुई, तो लेकर ही बीतेगी मेरी जान।
3: ये सब ना इसी के कारण हो रहा है, ये कलमुही छोकरी ना जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई है।
2: मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं ना, देर करने से शायद रोग बढ़ जाए। अम्मा अम्मा कैसी है तबीयत।
1: हाय अरे बेटा भगवान साहब करते हैं, हाँ अरे बड़ा दर्द हो रहा है, ये बेचारी क्या जाने, तो बच्चा है, देखो हाँ मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना, आए, आए, उसे कष्ट मत देना।
2: जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौटा आता हूं।
1: अरे नहीं बेटा रहने दो सब, अच्छा हुआ मेरे सिर गई है, हाँ तू बैठ बेटा बैठ, अब किसी के सिर जाती ही हाँ तो मेरे ही सिर सही, हाँ बेटा अब ना बचूंगी, हाय राम हाय भगवान अब ना बचूंगी दामोदर, समझ लो कि बस सब सब खत्म, हाँ कह देती हूँ, अच्छा हुआ मेरे सिर आई, बड़ा दर्द हो रहा है दामोदर, हाय कहीं कोई मत जाओ।
2: अम्मा अम्मा अभी अभी जाकर डॉक्टर बुला लाऊं, अभी लौटा आता हूं, ठीक हो जाओगी तुम।
1: अरे कहां जाते हो, अरे नहीं नहीं बेटा डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे, अरे अरे वो कोई ईश्वर है क्या है, डॉक्टर कोई अमृत पिला देगा, 10-20 वो भी ले जाएगा हमारा, डॉक्टर पैसे कुछ ना होगा, कुछ ना होगा बेटा, बस अब तो बस आखिरी समय आ गया है बेटा, तुम बस मेरे पास बैठ जाओ बेटा, बैठकर भागवत पढ़ो, हाँ अंतिम समय है, अब ना बचूंगी, हाय राम अब ना बचूंगी, पढ़ो पढ़ो बचो, भागवत पढ़ो बेटा, अंतिम समय है, बस तो जान लेकर ही जाएगी, हाँ कह देती हूँ।

0: तेतर बुरी चीज है। मैं समझता था कि ढकोसला ही ढकोसला है।
1: मुझे पता था, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी।
2: अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो बेटा। नहीं, बच्चों को सब आराम से रखना। भगवान करे तुम सब सुखी रहो। तुम लोगों को भगवान सुखी रखे, बस यही आशीर्वाद देती हूँ। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई। तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा, बस यही अच्छा है। राम करे, कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता। राम राम। अरे बस अंतिम समय है, भगवान ने मेरी विनती सुन ली। बस यही विनती है, तुम सब खुश रहो। हाय हाय, अब न बचूंगी, बस मैं तो चली दामोदर। खुश रहो तुम सब। बच्चों को ठीक से रखना। हाँ कह देती हूँ, कष्ट ना हो किसी को।
3: दामोदर दत्त को निश्चय हो गया कि अब अम्मा न बचेंगी। बड़ा दुख हुआ। उनके मन की बात होती तो वो मां के बदले तेतर को ना स्वीकार करते। जिस जननी ने जन्म दिया, नाना प्रकार के कष्ट झेलकर उनका पालन पोषण किया, अकाल वैधव्य को प्राप्त करके भी उनकी शिक्षा का प्रबंध किया, उसके सामने एक दुधमुही बच्ची का क्या मूल्य था, जिसके हाथ का एक गिलास पानी भी वो न जानते थे। शोकातुर होकर मां के सिरहाने बैठकर भागवत की कथा सुनाने लगी। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली,
1: अब कैसा लग रहा है अम्मा जी? आप कहें तो आपके लिए थोड़ा सा साबुदाना बना दूं।
2: अरे बड़ा दर्द होता है। अरे बेटी, अन्न के बिना ना मारो है? भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा है? जाओ जाओ, थोड़ी सी पुड़िया छान लो। हाँ अब पड़े पड़े जो इच्छा होगी खा लूंगी। और हाँ सुनो बहू, कचौरियां भी बना लेना। अब मरती हूं तो भोजन को तरस तरस के क्यों मरूं भला? हाय बड़ा दर्द होता। सुन अब बेटी, थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना। हाँ वो भी चौक से। हाँ अब फिर थोड़े ही खाने आऊंगी। अब गई तो गई, हम तो समझो कि अब बेटी अब ना बचूंगी। बेटा थोड़े से केले मंगवा लेना। कलेजे में दर्द में केले खाने से आराम होता है। हाँ है बड़ा दर्द है भैया।
3: भोजन के समय पीड़ा शांत हो गई, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। एक सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय जरा वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मातृवियोग के आगत शोक से रोते। घर की मेहरी ने महल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा,
4: ये तो कहो भैया कि बड़ी कुशल हुई जो बुढ़िया के सर गई। नहीं तो तैतर माँ बाप दो में से किसी एक को लेकर जाए तो ही शांत होती है। देव ना करे कि किसी के घर तैतर का जन्म हो।
5: हाँ हाँ सही कहती हो, तेतर का नाम सुनते ही मेरे भी रोए खड़े हो जाते हैं। भगवान भले ही औलाद ना दे पर तेतर ना दे।
3: एक सप्ताह बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ। मरने में कोई कसर ना थी। वो तो कहो पुरखों का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब कहीं जाके संकट टला।
6: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर

0: बन रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो है ना, ये जो त्यौहार होता है ना, ये हमारा देश त्योहारों और परंपराओं की विविधता वाला देश है। यहाँ मनाए जाने वाला प्रत्येक पर्व अपने साथ धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक संदेश भी लेकर आता है। नागपंचमी हमारा एक महत्वपूर्ण पर्व है जो नाग देवताओं की पूजा और उनके प्रति सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ये पर्व सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है।
1: बिल्कुल। और सुनाली, नागपंचमी के दिन श्रद्धालु सर्प की पूजा करते हैं। भगवान शिव के गले में नाग का स्थान होने के कारण नागों का संबंध भगवान शिव से भी माना गया है। और नागपंचमी का महत्व ये केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा अधिक है। और सर्प हमारे पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो खेतों में चूहे और दूसरे हानिकारक जीवों की संख्या नियंत्रित करते हैं जिससे फसलों की रक्षा होती है। इसलिए नागों और अन्य जीव जंतुओं का संरक्षण प्रकृति के संतुलन के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: और इस दिन कई स्थानों पर जो है ना, नाग देवता के चित्र और प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये पर्व विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना करती है। अनेक स्थानों पर पूजा व्रत और धार्मिक कथाओं का आयोजन भी किया जाता है।
1: और आज जब हम ये पर्व मना रहे हैं तो इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए सोनाली कि सांपों को पकड़कर उन्हें परेशान करना या जबरदस्त ती उनको दूध उन्हें पिलाना ये सब उचित नहीं है। वन्य जीवों के प्रति प्रेम और सम्मान ही हमारी सच्ची पूजा और श्रद्धा मानी जानी चाहिए। यदि घर या आसपास कहीं सांप दिखाई दे तो उन्हें परेशान करने के बजाय प्रशिक्षित वन्य जीव बचाव दल की हमें सहायता लेनी चाहिए।
0: और ये दिन हमें एक संदेश भी देता है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाग देवता के प्रति श्रद्धा तभी सार्थक है जब हम उनके सहित सभी जीव जंतुओं की रक्षा करें और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखें। इस प्रकार नागपंचमी हमारी धार्मिक आस्था और संस्कृति और प्रकृति प्रेम का एक सुंदर संगम है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश भी आया है इसी के लिए कि ये जो पर्व है ये बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है हमारे देश में और बहुत ही सुंदर और धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ ये पर्व है। इन दिनों नागों की पूजा की जाती है और कहीं कहीं नाग देवता को दूध पिलाने की भी विधि रखी गई है, देखा जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने गले में सर्प को धारण किया था।
0: ये हमारे
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
5: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट।

0: दीपा, हमारी एक सखी ने एक मैसेज लिखा है कि हमारे घर भी आज नागपंचमी की पूजा हुई है। नाग देवता को गोबर और मिट्टी से बनी हुई मूर्ति को धान का लावा, लैया, गुड़ और दूध चढ़ाया जाता है। वहीं सब साथ खाना खाते हैं और बहुत जगह पर, खासकर बिहार के कुछ प्रांत में आज बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सभी के घरों में दाल की पूरी, खीर, आम, पका कटहल, भोग लगाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। नीम की पत्तियों से घर के दरवाजे को सजाया जाता है। ये पूजा भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। सावन के महीने में खेतों में धान की फसलें लगाई जाती है और उन बारिश के दिनों में बहुत सारे कीड़े सांप रहते हैं, जो उन्हें भी देवता स्वरूप मान के साथ उनका भी पूजन किया जाता है और हर्ष और उल्लास के साथ इस दिन को मनाया जाता है।
1: और एक और संदेश आया, ये कहते हैं कि हमारे घर में कहा जाता है कि आप कहीं भी किसी भी देश में रहिए, वहां के परिवेश में अपने को ढाल लिए, पर अपना अपना कुल परंपरा का जो है परंपरा के निभा होनी चाहिए। तो कहती है कि बहू हमारी पुणे में रहती है, वो भी आज नागपंचमी की पूजा वहां करती है। यानी आप तो अपने गांव देश में रहते हैं लेकिन बहू दूर रह रही है, लेकिन सारी परंपराओं को वो अपनाकर उसका
0: पालन
1: कर रही है।
0: तो ऐसे ही होता है ना दीपा, की जो परंपराएं होती है या फिर पारंपरिक व्यंजन होते हैं, अगर वो बनेंगे घर में तभी तो उसका स्वाद बच्चों को पता चलेगा।
1: बिल्कुल,
0: अगर वो बनेंगे ही नहीं तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा।
1: और उसका जो महत्व है, क्यों बनाया जाता है, हर एक चीज का महत्व है और हर एक चीज का कारण है, वो समझेंगे ही नहीं अगर उन्हें ना वो चखेंगे ना वो बनते हुए देखेंगे। वो सौंधी खुशबू जब घर में फैलती है उसका आनंद नहीं लेंगे तब तक उसका महत्व उन्हें समझ नहीं आएगा।
0: और जब हम बताते हैं कि कितना पौष्टिक है, इसमें इतना सारा प्रोटीन है, इसमें विटामिन है और इसमें यानी ये जो जो व्यंजन है स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, जब ये बात बच्चों को बताई जाती है ना तो बच्चे जंक फूड के लिए जिद नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन देखो ना आज का ये जो जमाना है, तेज रफ्तार भागती भागती से जिंदगी हमारी हो गई है और इस बदलते परिवेश का सबसे ज्यादा जो प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है वो खान पान पर हम देख ही रहे हैं। एक समय था सोनाली जब बच्चों में घर का बना ये दाल चावल सब्जी रोटी या यूं कहें खिचड़ी पोहा उपमा कोई किसी भी प्रकार के पराठे फल सब कुछ उनको बड़े चाव से खा लेते थे वो लोग, है ना।
0: पर आजकल बच्चे जो है ना कलर और जो है ना रंगों के प्रति बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें ना ये जो उसमें बहुत जो चटपटा बनाया जाता है जंक फूड, जैसे फिर पिज्जा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, नूडल्स, पास्ता, चिप्स, चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट बंद खाद्य पदार्थों ने ये जो जगह ले ली है बच्चों के जीवन में और यही कारण है कि जंक फूड बच्चों के जीवन का हिस्सा बनता चला जा रहा है।
1: और इन्हें इस तरीके से रंग बिरंगी पैकेजिंग में परोसा जाता है ना और बड़े लुभावने फिर विज्ञापन भी बना दिए जाते हैं। जब विज्ञापन बच्चे टीवी मोबाइल पर या अपने किसी सोशल मीडिया हैंडल पर देख लेते हैं या कार्टून प्रोग्रामों के दौरान बीच में अगर देख लेते हैं तो बस फिर उनका मन उस पर तो आ ही जाता है, उसका बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, वहां से शुरू

0: हो जाती है जिद।
1: और छोटे बच्चे तो क्या बड़ों का भी मन आ जाता है, बिल्कुल से बच्चे हैं। और जब उनके पसंदीदा अभिनेता है या खिलाड़ी है या कार्टून पात्र किसी खाद्य पदार्थ का प्रचार करते हैं ना, तो बच्चे भी उसे खाने की जिद करने लगते हैं। इसके अलावा फिर जन्मदिन है भाई, पार्टियां हैं मॉल में, मल्टीप्लेक्स में, स्कूल के आसपास की दुकानें, ऑनलाइन फूड डिलीवरी ने भी जंक फूड को बच्चों की पहुंच में बहुत ही आसान बना दिया है कि इतना इजीली उन्हें सब मिलता है, तो वो तो उन्हें इजी है
2: बिल्कुल,
1: और चटपटा स्वादिष्ट है।
2: चटपटा स्वाद है, और चलिए स्वाद भी अगर किसी को पसंद ना आए तो एक बच्चा तो खा रहा है, शायद दो तीन खा रहे हैं, तो वो जो एक नहीं खा रहा है उसका भी मन करेगा या उसको बोला जाएगा कि देखो तुम ये खाकर देखो
1: कितना अच्छा है। और
2: तो
1: फिर वो अपनी मम्मी से कहेगा कि सबकी मम्मियां तो लेकर देती है, आप ही हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो,
2: ऐसा क्यों करते हो। बिल्कुल सही कहा। और जंक फूड स्वाद में भले ही लाजवाब लगे सोनाली, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, यानी हानिकारक है। और इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में तेल होता है, सफेद चीनी, नमक, मैदा, फिर ये प्रिजर्वेटिव डले होते हैं, कई प्रकार के फ्लेवर उसमें मिलाए जाते हैं और आर्टिफिशियल कलर्स उसके अंदर होते हैं। और ये वहीं पे देखो आप विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और कई तरह के खनिज जैसे पोषक तत्व की तो बहुत कमी होती है,
1: या फिर ना के बराबर होते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा। अच्छा, बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे ये सारी बातें, हमें उनको बताना पड़ता है। अगर उनको बताएं कंपोजिशन में क्या लिखा है, देखो ये सब चीजें इतनी ज्यादा है और तुम्हारे शरीर में इतनी ज्यादा ये चली जाएंगी, ये मात्रा हमारे शरीर में जरूरत नहीं है इतनी जितना ये एक पैकेज के द्वारा जा रहा है, तो वो बच्चे समझेंगे। उनको बिठा के बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, समझते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त उन्हें देना होता है।
1: और परिणाम हमारे सामने है ना दीपा, कि जब हम छोटे थे या फिर हमारे साथी मोटे नहीं थे, है ना।
2: बिल्कुल,
1: आजकल के बच्चे देखिए ना कितने मोटे होते जा रहे हैं, जंक फूड खाने से बच्चों में मोटापा बढ़ रहा है, मधुमेह है छोटे छोटे बच्चों को, डायबिटीज हमें मालूम ही नहीं था, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर मालूम नहीं था, दांतों की समस्या है, हम हार्डली बहुत कम डेंटिस्ट के पास जाते थे, पर आजकल तो हर बच्चा डेंटिस्ट के पास जाता है।
2: सोनाली, पहले तो डेंटिस्ट इतने होते ही नहीं थे, अब तो पेडियाट्रिक डेंटिस्ट भी होने लगे हैं जहां छोटे बच्चों के लिए खास तौर पर डेंटिस्ट है, क्योंकि छोटेपन से ही उनको दांतों की समस्या है, यानी उनके दूध दांत भी अभी गिरे नहीं है, उसके पहले ही उन्हें बहुत ज्यादा सीरियस दांतों की प्रॉब्लम होने लग जाती है।
1: साथ ही उनकी ना रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी आने लग गई है, और कम उम्र में उन्हें अनेक स्वास्थ्य समस्याओं से का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए ना, हम यही चाहेंगे ना कि हमारा बच्चा स्वस्थ रहे, खुश रहे, अगर ये चाहते हैं तो हमें जंक फूड से बच्चों को दूर रखना चाहिए, और अभी हमें एक गाना सुनना चाहिए,
2: उसके तो पास रहना चाहिए, है ना।

0: सोनाली, हमारे सभी साथियों ने, सहेलियों ने अलग अलग संदेशों से के द्वारा बताया है कि जंक फूड के बारे में उनके क्या विचार हैं। बहुत सी बातें तो बताइए, हम ये चाहते हैं कि आप कोई सखी या किसी भी हमारे शो सुनने वाले, इस वक्त सुनने वाले श्रोता बताएं, उनके घर में छोटे बच्चे हैं, अगर हैं तो क्या वो बाहर के खाने के लिए जिद करते हैं तो आप उन्हें कैसे समझा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, दोनों ही बातें बताएं।
1: इस विषय पर भी हमें लिखकर बताएं, क्योंकि जब है ना श्रोता अपने कमेंट्स लिखते हैं ना तो ज्यादा दिल के करीब होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उससे एक ना बहुत अच्छा संदेश भी जाता
0: और
1: है,
0: और समझ में भी आता है कि क्या चल रहा है सबके घरों में, क्या एक सा चल रहा है, एक सा सही हो रहा है या एक सा गलत हो रहा है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि मेरी प्रोविजन की शॉप है और मेरी शॉप में 5-10 रुपए वाले पैकेट वाला नाश्ता मैं बेचता हूँ। आजकल स्कूल के बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे पैकेट लेना पसंद करते हैं। लंच बॉक्स में घर का हेल्दी फूड देने के बजाय घर से पेरेंट्स भी यही खरीद कर नाश्ता में दे देते हैं। इसमें ज्यादा शुगर और नमक होने के कारण बच्चे छोटी उम्र में मोटापे के शिकार हो जाते हैं, और घर पर भी पिज्जा जैसे जंक फूड आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, जो हेल्थ के लिए अनुकूल बिल्कुल भी अच्छे नहीं है।
0: बिल्कुल, वही एक और संदेश आया है कि आज के समय में खाने में जंक फूड बच्चों की पहली पसंद है, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, चिप्स, ये तरह तरह के पैकेट स्नैक्स। खुशबू और आकर्षक पैकिंग की वजह से बच्चों को ये बहुत लुभाते हैं। इसके अलावा माता पिता की व्यस्त दिनचर्या और आसानी से ये सब अवेलेबल हैं, उसके कारण भी ऐसे खाद्य पदार्थ बच्चों के आदत का हिस्सा बन गए हैं, जो उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए स्वाद के साथ बच्चों को संतुलित आहार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जंक फूड को पूरी तरह खाने पर पाबंदी लगाने के बजाय उन्हें एक संतुलित भोजन का महत्व समझाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है कि घर में जो भी आप हेल्दी फूड, जो भी स्वस्थ खाना बना रहे हैं पौष्टिक, वो बनाए भी और खाएं, खुद भी खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं, क्योंकि जब आप खुद करेंगे उस चीजों को, उन आदतों को अपनाएंगे, तो बच्चे बिल्कुल उन आदतों का अनुसरण करेंगे।
1: अब देखिए ना, अब जैसे पिज्जा जैसे ही हम अगर मोटी मोटी रोटी बना के उसपे सारी सब्जियां डाल के उसको अच्छे से उसके ऊपर पनीर कद्दूकस करके उसमें चाट मसाला डाल के दिया ना, तो बच्चों को बताएं कि देखिए होममेड पिज्जा है, ये खाएंगे ना तो ये ज्यादा हेल्दी है। इस तरह से बच्चों को, अगर डोसा का बैटर है उससे आपने ABCD बना के दिया बच्चों को, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। फिर पराठे को कट करके ABCD का शेप बना दिया तो बच्चे शौक से खाएंगे।
0: और इसी तरह से पराठे में जैसे किसी दिन पालक की प्यूरी डाल के आप हरे कलर के पराठे दीजिए, कभी बीटरूट का पराठा जो कि बिल्कुल लाल कलर का हो जाता है, या एक दिन जिस दिन आपके पास थोड़ा समय हो, ये सब अलग अलग कलर के पराठे बना के दीजिए, तो उनको बहुत सुंदर लगता है और बहुत खुशी से और बहुत स्वाद लेकर के चाव से खाते हैं बच्चे।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है कि जंक फूड हमने भी बहुत खाया है, हमारी मजबूरी होती थी क्योंकि कॉलेज इतना दूर था, वहाँ आसपास कॉलेज कैंटीन के सिवा कुछ भी नहीं होता था। भूख लगने पर मजबूरी में जो कैंटीन में मिलता था वही खाना पड़ता था, लेकिन आज मैं कोई जंक फूड नहीं खाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात
0: ये
1: है,
0: बहुत अच्छी
1: बात। मजबूरी में हम खा सकते हैं, पर जहाँ पर हम कोशिश कि ना खाए वहां पे हम कोशिश कर सकते हैं।
0: अच्छा, एक संदेश ये कहता है कि भाई ये आकर्षक नहीं बल्कि घर में समय पर भोजन नहीं बना पाने का परिणाम है। अच्छा, इन्हें ऐसा लगता है, और वो भी वहां पर विशेष जहां दंपत्ति भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मनपसंद भोजन मंगवा लेते हैं। अरे बच्चे तो अनुसरण करते हैं और जब कर लिए तो उसका दुष्प्रभाव से मोटे होने पर उन्हें रोकते भी हैं, मगर वे भी तो तभी रुकेंगे जब आप रुकेंगे। ऐसे में

0: तो यही कहना होगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भाई यही बात हम पहले भी कर रहे थे कि हमें पहले अपने आप में सुधार लाना होगा, सुधार भी लाना होगा और पहल भी करनी होगी।
1: एक साथी कहते हैं कि सिर्फ बच्चों में ही नहीं बड़ों को भी जंक फूड खाने की आदत होती है, चिप्स पिज्जा और वो भी कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ। इन सभी का आकर्षण विज्ञापनों के साथ बड़ा प्रचार किया जाता है। रंग बिरंगी पैकिंग और इंस्टेंट डिलीवरी सुविधा के कारण गृहणियों को भी आराम मिल जाता है।
0: जी बिल्कुल। और एक और संदेश ये कह रहा है कि जो बच्चे देखते हैं जंक फूड, बस उसे देखते ही मचल जाते हैं और ये है कि इनके लिए बहुत नुकसानदायक है सेहत के लिए। इनमें जो मसाले केमिकल का प्रयोग करते हैं बनाने वाले, वो स्वास्थ्य का कतई ख्याल नहीं रखते। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक बिक्री पर जोर देना होता है। चटपटी मसालेदार चीजें बड़े आदमियों की तरह बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उनका पाचन तंत्र इतना मजबूत नहीं होता। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इन्हें अपने बच्चों को इनसे दूर रखें।
1: वही एक साथी कहते हैं कि आजकल ये बहुत स्वाभाविक हो गया है, रंग बिरंगी पैकिंग, स्वाद और विज्ञापन उन्हें जल्दी आकर्षण करते हैं। कभी कभार पसंद की चीज खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर यही रोज की आदत बन जाए तो पौष्टिक भोजन से दूरी बढ़ सकती है। अब तो जंक फूड 10 मिनट में घर पर आ जाता है। वही सुविधा हो गई है, इसलिए उस सुविधा का हमें दुरुपयोग नहीं करना है कि हाँ भाई कभी बीमार है या कभी जन्मदिन है या फिर कभी कोई खास अवसर है, 2-3 महीने में 4 महीने में एक आध बार ठीक है, पर अगर रोज रोज वही हम खाने लग गए तो उसकी आदत भी बन जाएगी
0: और हाँ
1: और बीमारियां भी करीब आ जाएगी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक हम गर्मियों की छुट्टी में जब सारी बहनें मिलती हैं तो एक हमारी सिस्टर ने बताया, कजिन सिस्टर ने, कि हम अपने बच्चों को बिठा लेते हैं और उनको बोलते हैं कि पूरे हफ्ते भर के में आप क्या खाना चाहते हो बताओ, एक दिन सिर्फ आपको मिलेगा, वो भी क्योंकि छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, एक दिन बाजार का, बाकी सब चीजें घर में बनेंगी और आप भी हमारे साथ मदद करेंगे। तब उन बच्चों को बहुत मजा आने लगा और अब वो बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप हमें घर पर ही हर चीज बना के खिलाइए।
1: कितना सुंदर उदाहरण है। चलिए अब गीत सुन लेते हैं।
0: चलिए

0: भाई दिल किसी पे भी आए, ये हानिकारक पदार्थों पे ना आए बस, है ना।
1: मिष्टी दोई पे आ जाए तो बात होगी, है
0: हाँ ये बिल्कुल
1: ना।
0: सही है।
1: एक हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, सामग्री है 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 3/4 कप चीनी या गुड़, 3 से 4 चम्मच गाढ़ा दही हंकड़। बनाने का तरीका, दूध को उबालकर थोड़ा गाढ़ा कर ले, एक अलग पैन

0: में चीनी को पिघलाकर कैरेमल बना ले। कैरेमल को गुनगुने दूध में अच्छी तरह मिला ले। दूध के मिश्रण को हल्का ठंडा होने दे। अब इसमें गाढ़ा दही मिलाकर अच्छी तरह से फेंट ले। इस मिश्रण को मिट्टी के बर्तन कूलर में डाले और बर्तन को ढककर 7 से 8 घंटे तक रात भर के लिए किसी गर्म जगह पर जमने के लिए रख दे। जमने के बाद इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा कर ले और फिर सर्व करे मिष्टी दोई।
1: तो भाई देखियो सखियो, हमारे सोनाली ने तो मीठा आपको पहले बता दिया, लेकिन साथ में क्या खास व्यंजन बनेगा, तो वो बनेगा आलू और दम, यानी कि दम आलू फेमसली उसे कहते हैं। छोटे छोटे आलू लेने होते हैं इसमें, जो दम आलू के लिए जाते हैं। आप ले लीजिए आधा किलो यानी 500 ग्राम। प्याज ले लीजिए 2 बारीक कटे हुए, टमाटर 2 बारीक कटे हुए, दही आधा कप, लहसुन अदरक का पेस्ट आपके हिसाब से ले लीजिए, तेल 3 बड़े चम्मच, जीरा आधा चम्मच, हल्दी छोटी आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आपके हिसाब से, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, गरम मसाला जैसे आपके घर में चलता है वैसे लीजिए, नमक भी आप अब जैसे आपके घर में डाला जाता है वैसा, और हरा धनिया सजाने के लिए। तो अब आलू उबाल करके छील लें, उनमें हल्के छेद छेद छोटे छोटे से कर दीजिए। कढ़ाई में तेल गर्म करके आलू को हल्का सुनहरा होने तक तल लें और निकाल लें। उसी कढ़ाई में जीरा डालें, फिर प्याज डालकर सुनहरा भुने, अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ और सेकंड के लिए भुने, फिर अब टमाटर हल्दी लाल मिर्च धनिया पाउडर डालकर मसाले को तब तक भुने जब तक तेल मसालों से अलग ना हो जाए। गैस धीमी करके फेटा हुआ दही डालें और लगातार चलाते हुए पकाते रहिए। अब तेल तले हुए जो आलू आपने रखे थे अलग से, नमक और लगभग 1 कप पानी उसमें डालना है। ढककर इसको आप धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं ताकि आलू में मसाले खूब अच्छी तरह से घुल जाए और मिक्स हो जाए। आखिर में आप गरम मसाला डालिए और हरा धनिया डालकर थोड़ा सा और पकाइए।
0: और इसके साथ में लूची यानी बंगाल की बेहद लोकप्रिय पूरी है, जो सामान्य पूरियों से थोड़ी अलग होती है। आटे के बजाय मैदे से बनाई जाती है। इसमें मोयन के लिए थोड़ा सा घी या तेल और हल्की सी चीनी मिलाई जाती है और इसका रंग सफेद और बनावट बाहर से हल्की खस्ता और अंदर से बेहद नरम होती है। और आलू और दम और ये लूची और साथ में मिष्टी दोई हो तो क्या कहने।

0: भर भर के कमेंट्स लिखे हैं दीपा। एक साथी कहते हैं कि भाई है अपना दिल तो आवारा, बिल्कुल पहले अपने दिल पर मुंह पर कंट्रोल होगा जंक फूड के प्रति, तभी बच्चों को भी इसके लिए मना कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश आया है कि बंगाल के व्यंजन में पूरी और दम आलू की बात ये हो रही है आज, लेकिन ये बिहार का भी लोकप्रिय व्यंजन है। जी हाँ बिल्कुल है, और जब भी कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है ना तो खीर पूरी तो बनती ही है, साथ में दम आलू भी बनता है, लेकिन आजकल कहीं कहीं जगह पर इस पनीर की सब्जी ने जगह ले ली है।
0: और एक साथी ने लिखा है, एक सखी ने, कि लूची व्यंजन पहली बार सुन रही हूँ, तो इनके घर में अब लूची बनने वाली है और हमारे घर में भी बनेगी। पर हम श्रोताओं को दिल से धन्यवाद कहेंगे कि आपके कमेंट्स के कारण, आपके इतने सुंदर सुंदर संदेश के कारण कार्यक्रम में चार चांद लग गए।
1: बिल्कुल सही।
0: और अब इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षदा राज्याध्यक्ष, जो एक जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में
2: और मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू।
1: डॉक्टर, ये जो फिजियोथेरेपिस्ट है, इसकी जरूरत आजकल लोगों को बहुत पड़ती है। जब किसी को टेनिस एल्बो हो जाती है, किसी की गर्दन टेढ़ी हो जाती है, शोल्डर में प्रॉब्लम हो जाती है, पर फिजियोथेरेपिस्ट का काम कितना गंभीर है, सबसे पहले तो ये बताइए।
2: सो फिजियोथेरेपिस्ट का काम गंभीर नहीं बोलूंगी मैं, बट जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसे बन गई है कि इसकी जरूरत पड़ती है।
1: जी जी।
2: अगर हम सोचे कि हम कितना टाइम बैठे रहते हैं एक जगह पे, काम भी ऐसे हो गए हैं कि लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे काम करना,
1: सारा दिन बैठे,
2: सारा दिन 8 घंटा, समटाइम्स 4 या 5 घंटा एक साथ बैठे हैं लगातार, तो हमारा बॉडी का टेंडेंसी है कि शोल्डर्स क्रंच हो जाते हैं, हेड फॉरवर्ड आ जाता है, तो गर्दन की प्रॉब्लम्स होती हैं। अभी ये जो लोग हैं उनको एक्चुअली लाइफस्टाइल डे टू डे में कोई एक्सरसाइज मिलती ही नहीं है, तो एक्सरसाइज एक्चुअली ये आर्टिफिशियल हो जाती है।

0: मतलब करनी पड़ती है। तो जब भी हम करते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज के लिए, तो कभी कभी चॉइस भी गलत करते हैं या बहुत ज्यादा टाइम करते हैं। अगर टेनिस एल्बो टेनिस से रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज अगर हम बहुत ज्यादा करें या बहुत हैवी कुछ उठाएं और हमको आदत नहीं है वो चीज की और वो हम बार बार करें, या तो समझो अगर टेनिस ही खेल रहे हैं तो शॉट परफेक्ट करने के लिए बार बार वही शॉट मारते रहें, तो तभी होता है ये। तो अभी बिकॉज साइंस हैज गॉन अहेड एंड रिसर्च ने दिखाया है कि क्या करना चाहिए, तो इसके लिए ये सब चीजों के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आर इसेंशियल।
1: बिल्कुल।
0: जब भी लाइफस्टाइल ही ऐसी थी जहां बहुत सारी एक्टिविटी जरूरी थी लाइफस्टाइल के लिए, तभी ये आर्टिफिशियल एक्सरसाइज या कुछ ऐसा नहीं था। और अभी स्पोर्ट्स में भी इतना पावर के साथ लोग खेलते हैं कि उनके लिए एक्सरसाइज करना, वो चीज मेंटेन करने के लिए, पावर बिल्ड करने के लिए जो एक्सरसाइज जरूरी है, उससे भी कभी कभी पेन बढ़ता है। तो इस चीजों के लिए हमारी जरूरत पड़ती है।
1: बिल्कुल। और एक और एरिया है जहां बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और वो है स्पोर्ट्स, जिसकी दिशा में आपका बहुत सारा काम है।
0: हाँ,
1: इस बारे में बताइए।
0: स्पोर्ट्स मतलब कि फिजिकल होता है, और स्पोर्ट्स के लिए ट्रेनिंग भी जरूरी होती है। स्पोर्ट्स में एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो बहुत अपने, मतलब यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। इसके लिए जरूरी है कि उसका प्रेपरेशन भी ऐसा हो कि यू आर एट योर फिजिकल बेस्ट। फिजिकल ट्रेनिंग भी सख्त होती है, प्रैक्टिस ट्रेनिंग भी सख्त होती है, और फिर जब भी मैच में जाते हैं तो यू आर कॉम्पीटिंग विथ योर राइवल हु इज ऑल्सो बेस्ट। तो उन्होंने भी बेस्ट उनकी फिजिकल स्टेटस बनाई है, आपकी भी है, और आपको दोनों को जीतना है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ये वॉर के जैसा है, जो दो सोल्जर्स वॉर पे जाते हैं, बेस्ट देते हैं क्योंकि जीतना तो है। तो इस कंडीशन में इंजुरीज आर गोइंग टू हैपन। तो इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प अ लिटिल बिट टूवर्ड्स प्रिवेंशन, मतलब जो प्रिवेंटेबल है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर उसी टाइम कुछ हो गया, गिर गया कोई या कुछ हो गया, तो वो प्रिवेंटेबल नहीं है। बट जो प्रिवेंटेबल है, वो कंडीशंस प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और जब भी इंजरी हो भी जाती है तो उसके रिकवरी में हम हेल्प करते हैं। अगर सर्जरी है तो सर्जरी के बाद तो बहुत सारा काम होता है, सो व्हाट आई कॉल लॉन्ग टर्म रिहैबिलिटेशन। क्योंकि सपोज ACL सर्जरी है, या रोटेटर कफ जो शोल्डर की है, या कुछ भी, अगर टेनिस एल्बो की भी हो, उसका रिकवरी पीरियड बिटवीन 3 months टू 9 to 12 months बाय द टाइम यू कम बैक।
1: तो वो पूरा साल,
0: हाँ, साल जाता है। ACL सर्जरी अगर हो तो स्पोर्ट में वापस आने के लिए 9 महीना जाता है। आई कॉल इट लाइक,
1: मतलब क्या होता है,
0: इट इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये नी वाली लिगामेंट है, बहुत फेमस है, बहुत एथलीट्स को होती है,
1: अखबारों में हम पढ़ते हैं।
0: हाँ, स्पेशली फुटबॉल या ऐसे जो है जहां बैलेंस और रोटेशन होता है, तो ये होती है इंजरी। 9 महीने लगते हैं, इट्स लाइक गिविंग बर्थ, जेस्टेशन पीरियड उतना तो लगता है। तो वो पूरा 9 महीना हमारे अंडर होता है ट्रीटमेंट, और एंड वी कॉल इट ग्रेडेड। तो वो स्टार्ट होता है जैसे हम ABCD लिखते हैं वैसे, बहुत बेसिक से चालू होता है, और फिर हर 3-3 हफ्ते के बाद या 6 हफ्ते के बाद इंक्रीमेंट होता है। और इस तरह से पूरा 9 महीना चला जाता है। बाय द 7th month दे कैन गो बैक टू फील्ड एंड दे कैन स्टार्ट विथ फील्ड प्रैक्टिस एंड ऑल दैट, बट फिर भी टीम में आने के लिए 9 महीना लगता है।
1: बताइए ये कितनी
0: तो स्पोर्ट्समैन को बहुत ही जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट विद देम, अगर अफोर्ड होता है वो टीम के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में सब लेवल पे ये नहीं होता है, क्योंकि टीम्स के पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं। या मेनी थेरेपिस्ट डू गो फ्री ऑफ चार्ज, बट फिर वो क्वालिटी नहीं मिलती है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। आम जीवन में जब फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है तभी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो एक आपको हो सकता है कि अजीब सा सवाल लगे, पर क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो सावधानियां बरते हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े?
0: जरूर है, जरूर है, पर हम ऐसे हैं सब, इवन मी, कि जब तक एकदम जरूरत नहीं हो हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते कि कुछ प्रॉब्लम है।
1: यानी जब आग लगती है तभी हम,
0: तभी, हाँ, जब ही थोड़ा सा कुछ पता लगता है तभी कोई नहीं उस पे केयर करता है। मतलब फर्स्ट साइन इज पेन।
1: जी,
0: पेन ऐसी एक इंडिकेशन है बॉडी की, बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, कि वो बता देता है आपको कि कुछ गलत हो रहा है। कभी कभी पेन थोड़े टाइम के लिए आता है, मतलब एक

0: जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तभी पेन आता है और इमीडिएटली जाता है. उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो पेन कहाँ है, क्या वो जॉइंट में है, कितना है, एक्टिविटी के बाद चला जा रहा है. पर आप अगर वो एक्टिविटी वापस करो, समझो आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं, तो अगर एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, एक 10 स्टेप्स आप चले ऊपर, घुटने में पेन हो तो वो नॉर्मल नहीं है. अगर इमीडिएटली जाए तो ठीक है, एक दिन आप इग्नोर कर सकते हो. अगर 2-3 दिन लगातार आपको घुटने में पेन होता है 10 सीढ़ियां चलने में, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है, मे बी इट इज रॉन्ग. मैं एक स्टोरी बताती हूँ आपको. एक आदमी आया था शोल्डर इंजरी के साथ, तो मैंने पूछा क्या हुआ आपको, तो बोलता है कि एक हफ्ते पहले मैं मेट्रो में जा रहा था तो ऊपर पकड़ा हुआ था हाथ, तो थोड़ा जर्क लग गया, उसी टाइम समझा कि कुछ गलत है, पेन हो रहा है, तो मैंने एक हफ्ते के लिए नहीं किया, वो ऊपर नहीं लेके गया हाथ, और सब ठीक हो गया, मेरा पेन चला गया. तो मैंने बोला तो फिर आप इधर क्यों हो, पेन तो चला गया. तो बोलता है नहीं, कल मैंने फिर से वही किया, मुझे लगा कि अगर मैंने नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने वही किया और फिर से पेन हो गया, तो मैं आपके पास आया हूं. तो ऐसा है कि हम सोचते हैं कि अगर हमने एक एक्टिविटी छोड़ दी तो वो पेन आएगा वापस या कुछ ठीक नहीं रहेगा. तो ये जो है बार बार पेन आना जाना, हम उसको टाइम देते हैं, जब तक हमें नहीं लगता ये सीरियस है तो नहीं करते. देखो, जो ओपन इंजरी होती है, अगर आपके हाथ में कोई कट आ जाए तो आप उसकी केयर लोगे, उसको ढक के रखोगे, ये देखोगे कि वो टच ना हो किधर, या आप उसको स्क्रैच नहीं करोगे, उसको केयर लोगे जब तक कि उसका कवरिंग ना आ जाए, वो भी गिर जाए, बहुत 15 दिन उसकी केयर लोगे. पर जो इनविजिबल इंजरीज होती है, जो अंदर होती है, उनको हम इग्नोर करते, हमें लगता है कि हमने अगर वो एक्टिविटी नहीं की तो ये अच्छा नहीं होगा, तो हम करते रहते और उस वजह से वो बढ़ती है. वो एक है कि आपको रेस्ट उसी टाइम लेना चाहिए जब भी है, और अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हैं जो केयर जो हम ले सकते हैं उसे बचाने के लिए. अगर आप बहुत स्पेसिफिक पूछोगे तो मैं बोलूंगी कि एक कॉमन है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी,
1: जी
0: अगर उस बारे में बात करनी है तो वो मैं बता सकती हूँ कि उसका केयर कैसा लेना है.
1: डॉक्टर साहब, यहाँ ये बात करेंगे लेकिन इस गाने की बात करेंगे, तो यहाँ इस प्रोग्राम का पहला गाना मुझे लगता है कि बजाते हैं, और वो गाना है राही तू रुक नहीं जाना, मिलेगी तेरी मंजिल कहीं दूर गगन की छांव में. ये गाना इसलिए सुनते हैं क्योंकि जब भी कोई इंजरी होती है तो व्यक्ति रुक जाता है, अटक जाता है, उसके काम रुक जाते हैं, तो ये गाना सुनते हैं, फिर आगे की बातें करते हैं.

0: डॉक्टर, ये गाना सुना है हेमंत कुमार की बड़ी मीठी सी आवाज में, और ये गाना ये कहता है कि रुक मत जाना, लेकिन जब समस्याएं होती हैं, शारीरिक समस्याएं, तो इंसान को रुकना ही पड़ता है। आप कुछ बताने वाली थी?
1: मुझे बोलना है कि ये अभी सब दुनिया के 50 या 60% लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी
0: जी
1: ये होता है, और फिर उसके लिए नी रिप्लेसमेंट भी होता है, बहुत कॉमन हो गया है।
0: महिलाओं में ज्यादा होता है?
1: महिलाओं में थोड़ा ज्यादा होता है, यस, उसके भी कारण हैं, बट ये एक्चुअली मैं प्रिवेंटेबल टोटली नहीं बोलूंगी, बट डिले तो जरूर हो सकता है, और अगर अर्ली केयर ले तो इसको शायद प्रिवेंट भी हो सकता है। मेनली ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो इधर डिसयूज के वजह से होता है, मतलब हम ज्वाइंट ज्यादा यूज नहीं करते, बहुत आराम की लाइफस्टाइल है, कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ता है, वो एक है। दूसरा ये है कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, या तो बहुत सालों के लिए कुछ नहीं करके फिर इमीडिएटली एक्सरसाइज या कुछ बहुत ज्यादा कर लेते हैं। अभी देखो मैराथन भी अगर करना है तो फुल मैराथन करना है या हाफ मैराथन करना है, उसके लिए ट्रेनिंग ज्यादा करनी है, ये सब होता है, इसलिए नी पेन सेटल ही नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एज रिलेटेड बोला जाता है, बट उसका डाइट से बहुत ज्यादा संबंध है। ब्लड शुगर अगर बढ़े और बढ़ी रहे, सो डायबिटीज बेसिकली विल गिव यू अ कॉन्स्टेंट इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी विच विल अलाउ द जॉइंट टू डीजेनरेट, मतलब वो उसकी वेयर एंड टेयर हो सकता है। अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस यूजुअली ये जो वाटी होती है जो घुटने के आगे होती है,
0: कटोरी जैसा,
1: कटोरी, वो सबसे पहले उधर पेन होता है यूजुअली लोगों को। हमारे फ्रंट ऑफ द लेग बड़ा मसल है क्वाड्रिसेप्स करके, तो वो क्वाड्रिसेप्स नॉर्मल फंक्शन के लिए, मतलब ये जो कटोरी है सामने, पटेला जो हम बोलते हैं उसको, वो उसका स्मूथ फंक्शनिंग या स्मूथ मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उसको थोड़ा सा मसाज करें या क्वाड्रिसेप्स को रिलैक्स करें, उसको स्ट्रेच करें, काफ मसल जो पीछे होता है लोअर लेग के पीछे, काफ मसल, उसको अगर हम स्ट्रेच करें रोज, तो सो क्वाड्रिसेप्स एंड पीछे का काफ मसल, ये दोनों अगर हम अच्छे से स्ट्रेच करें और उनको अगर हम लेंथ में अच्छा रखें, अगर आपको फ्लैट फुट है तो उसके लिए जब भी आप एक्सरसाइज करते हो या लॉन्ग वॉक्स करते हो, तो उसके लिए अगर आप अच्छे आर्च सपोर्ट वाले शूज वेयर करें, और वॉकिंग अगर आपको करना है तो आप थोड़ा उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। अभी ऐसा बोला जाता है कि वजन ज्यादा होने की वजह से घुटने पे दबाव आता है, पर वो ही एक कॉज नहीं है। फैट जो है बॉडी में वो भी अभी एक मेटाबॉलिक एंडोक्राइन ऑर्गन के जैसा फंक्शन करता है, तो उसके वजह से कोई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डिस्ट्रक्टिव हार्मोन्स होते हैं,
0: जो हड्डियों को तबाह करना शुरू करते हैं।
1: तो ये जो फैट बिल्डअप होता है वो भी कम रखना पड़ता है। सो शुगर, सॉल्ट, फैट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल फैट, बट जो बॉडी में फैट बढ़ता है वो अगर कम रखें, सब मसल्स लेग के स्ट्रेच रखें, एक्सरसाइज रोज का रोज सही मात्रा में करें, नॉट टू मच नॉट टू लेस, और कायम करें, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे आपका वॉकिंग, जो हमारी बॉडी एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए ही बनी है, मूवमेंट के लिए बनी है, हम उसको मूवमेंट बंद कर देते हैं और फिर सडनली जब भी चालू करते हैं तो बहुत ज्यादा करते हैं। तो अगर ये सब आप करो तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कैन बी प्रिवेंटेड और इट कैन बी डिलेड। अनफॉर्चुनेटली ये बात है कि

0: जब तक हमें ये सब समझता है तभी ऑलरेडी लेट हो चुका होता है.
1: जी
0: ऑल प्रिवेंशन हैज टू बी स्टार्टेड इन चाइल्डहुड,
1: बिल्कुल,
0: बचपन से ही आदतें डालनी चाहिए.
1: आपने ये जो पूरा ब्यौरा बताया है इससे एक बात ये समझ में आई कि रेगुलर सही एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आप इन तमाम चीजों से बच सकते हैं. ये जो सही एक्सरसाइज वाला मुद्दा है, ये कितना इंपॉर्टेंट,
0: हिप्पोक्रेटस ने बोला था, जो हिप्पोक्रेटस इज द फादर ऑफ मेडिसिन, उन्होंने 400 BC में बोला है कि इफ वी कुड गिव एवरी इंडिविजुअल द करेक्ट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड द करेक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, That would be the safest way to ensure health.
1: कितनी बड़ी बात,
0: और ये कितनी पुरानी बात है, और हमारे भी संस्कृति में यही बात है
1: जी,
0: योगा में यही बात है,
1: संपूर्ण स्वास्थ्य की बात है. और उन्होंने क्या कहा कि सही मात्रा में एक्सरसाइज,
0: सही मात्रा
1: है ना, और
0: वही कैच फ्रेज है, नॉट टू लेस Not too much.
1: जी, और आज आपने जब इस कार्यक्रम में बताया तो मुझे ये उम्मीद है कि लोग जो हैं वो अवेयर होंगे इस बात के लिए कि एक्सरसाइज
0: लाइफ में कभी बंद ही नहीं करनी चाहिए.
1: जी,
0: जो हम चाइल्डहुड में जो थोड़ा रनिंग करते हैं या खेलते हैं वो कायम रखना चाहिए.
1: जी, आपने एक बात कही थी कि महिलाओं में ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये ज्यादा,
0: ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला था, बट पोरोसिस भी,
1: हाँ दोनों चीजें
0: दो अलग हैं. ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वेयर एंड टेयर, जो घिस जाती है जॉइंट्स, और पोरोसिस है जो
1: हड्डियां
0: कमजोर होती हैं, पोरस हो जाती हैं.
1: तो महिलाओं पर अगर फोकस किया जाए तो आपकी क्या राय और सलाह होगी, क्योंकि अमूमन महिलाएं सारे परिवार का ख्याल रखने के चक्कर में खुद पर फोकस सबसे कम रखती आई हैं.
0: ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली ज्यादा डेंजरस है. ऑस्टियोआर्थराइटिस का तो है आंसर, कर सकते हैं सर्जरी. ऑस्टियोपोरोसिस बहुत डेंजरस है क्योंकि वो रिवर्स होता है कभी कभी. अभी तो बहुत अच्छे इंजेक्शंस और सब आए हैं जो होता है रिवर्स, बट उसको टाइम लगता है, किसी में होता है किसी में नहीं. मेनली विमेन में क्या होता है, ईस्ट्रोजन जब भी कम हो जाता है मेनोपॉज के टाइम, तो उस वजह से कैल्शियम का
1: डेफिशिएंसी
0: होती है. विटामिन D3 एंड सम अदर मिनरल्स आर देयर, वो अगर नहीं हो तो फिर एब्जॉर्प्शन, बोन में एब्जॉर्प्शन कैल्शियम का कम हो जाता है. हमारे नॉर्मल फूड में अगर हम केयरफुल नहीं हो तो एक्चुअली उतना कैल्शियम नहीं जाता है बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होती है. मतलब पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, दे शुड हैव 1500 mg ऑफ कैल्शियम अ डे, वो नहीं होता है. एक्चुअली अगर दही खाएं या ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, ये सब, पर इतना हमारा बैलेंस न्यूट्रिशन अभी नहीं रहा है और इस वजह से भी होता है. दूसरा है कि बोन को ग्रो करने के लिए, वो एक तो है ना, ये ऑस्टियोपोरोसिस, अगेन आई कॉल इट अ चाइल्डहुड प्रॉब्लम, नॉट एडल्टहुड प्रॉब्लम,
1: उसका पता बड़े होने पर लगता है.
0: बट उसका अक्यूमुलेशन पहले 18 साल में ही होता है कैल्शियम, और वो बैंक के जैसा है, जितना भरो उतना बाद में घटा सकते हो आप. पहले भरना चाहिए, तो 18 तक भरना चाहिए, फिर उसको मेंटेन करना चाहिए 30-32 तक, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा खर्चा कर सकते हैं, पर उसको थोड़ा सा रिप्लेनिश भी करना चाहिए. तो अगर मेनोपॉज हो तो अभी हार्मोनल रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है. बोन स्ट्रांग रहने के लिए मसल की बहुत जरूरत है. मसल अगर बोन पे पुल नहीं करेगा तो बोन को स्टिमुलेट ही नहीं होगा वो कैल्शियम उठाने के लिए. तो एक्सरसाइज न्यूट्रिशन मतलब कैल्शियम डाइट में, और फिर जो कमतरता है वो सप्लीमेंट से, मेंटेनिंग ऑल अदर मिनरल्स ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट एब्जॉर्प्शन के लिए, और एक्सरसाइज सो मसल्स का पुल रहे बोन्स पे, यही सब है. अगेन वेट मैटर्स, वेट ऑल्सो शुड बी अंडर कंट्रोल, बट मेनली एक्सरसाइज एंड फूड हैबिट्स एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट वेन एवर रिक्वायर्ड. और अगर अर्ली डायग्नोसिस भी अभी बहुत है, मतलब आप BMD बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट रेगुलरली करो, 2-3 साल में जरूर करो, मेनोपॉज के बाद तो हमेशा करो 2-3 साल में. अगर अर्ली ऑस्टियोपीनिया मतलब एकदम थोड़ी सी पहली वाली कमजोरी अगर दिखे तो फिर बहुत अच्छे मेडिसिन हैं अभी रिवर्स करने के लिए. क्योंकि बेसिकली हमें ये चाहिए कि हम जब एज में बढ़ जाए तो गिर के फ्रैक्चर ना हो, या कभी कभी स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर्स भी होते हैं, अपने आप से ही फ्रैक्चर हो जाता है.
1: शरीर इतना मजबूत रहना चाहिए
0: क्योंकि अभी एज एक्सपेक्टेंसी बहुत है. मोस्ट पीपल आर लिविंग, लंबा जीना चाहिए और स्वस्थ भी जीना चाहिए, सिर्फ लंबा नहीं, अच्छा जीवन चाहिए.
1: बिल्कुल सही है. आगे की बातें करते हैं. यहाँ एक गाना

0: सुनते हैं तो बताइए कि किस गाने की गुजारिश करना चाहती हैं आप?
1: गुजारिश की गुजारिश करूंगी।
0: क्या बात है, तो चलिए ये गाना सुना जाए यहाँ पर। तेरा जिक्र है, तेरा या जिक्र है, इत्र है?
1: करेक्ट।
0: क्या गाना है, सुनते
1: बहुत ही सुंदर।

0: देखिए, गाना हमने सुना और ये गाना सुन के मन थोड़ा रिलैक्स हो गया। ये जो जीवन की भागदौड़ है, इस भागदौड़ में हम सामान्य इंसान और स्पोर्ट्समैन अपने शरीर को कितना ज्यादा ओवरलोड करते हैं, कितना ज्यादा स्ट्रेस करते हैं कि उनको फिजियोथेरेपिस्ट की शरण में जाना पड़ता है।
1: बाकी फिर सेम हो गया कि हम बहुत बॉडी को अब्यूज ही करते हैं
0: जी।
1: एक तरफ से उसे बहुत आराम देते हैं, जैसे कि बॉडी हमारा बना है एक्टिविटी के लिए, मूवमेंट इज द नेसेसिटी फॉर लाइफ। एक्चुअली ऐसा है कि हमारा ये जो फिजिकल बॉडी है वो समझो हार्डवेयर है अपना, और उसके पीछे एक फिजियोलॉजी है, मतलब जो यू कैन से ब्यूरोक्रेसी है कि उसको चलाना कैसे है, और उसके ऊपर बैठा है सॉफ्टवेयर विच इज आर ब्रेन। तो ये तीनों मिलके बॉडी चलती है पूरे लाइफ, और उसको चलाने के लिए एक तरीका है जो इनबिल्ट है। ये सब बोलते हैं कि बॉडी इज अ मशीन, आई मीन ये मशीन से भी बेहतर है, बट ये है ऑल सेड एंड डन समथिंग लाइक

0: चलता है
1: जी,
0: एक ये करना है एक वो करना है, उसके लिए हार्मोन्स की जरूरत होती है। थोड़े हार्मोन्स ऐसे हैं जो एक्सरसाइज को अलाउ करते हैं और थोड़े हार्मोन्स ऐसे हैं जो रिजुविनेशन को अलाउ करते हैं, वो वापस लाने का। तो ये दोनों चीजें जरूरी है कि आप सही तरह से एक्टिव रहो, सही तरह से रिलैक्स करो, इनफ आराम करो, स्लीप। एंड ये भी हमें याद रखना है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वो होम्योस्टेसिस एक जगह से हिलते रहता है दूसरी जगह पे।
1: Okay.
0: मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा आप वही स्थिति पे वापस आओगे। अगर आप 5 साल एज में बढ़ गए तो आपका होम्योस्टेसिस अलग जगह पे रहेगा,
1: तो वो एक्टिविटी चेंज
0: हाँ,
1: हो जाएंगी।
0: अभी हम ऐसे हो गया है कि सब सोचते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर, एक्चुअली है नहीं। फिजियोलॉजिकली एज इज समथिंग, उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमारी एक्टिविटी थोड़ी चेंज करनी चाहिए। एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट बट हाउ मच यू डू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो अगर ये हम सब मेंटेन करें तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी फिजियोथेरेपिस्ट की। अगर हम नियम से चले कि क्या खाना है, कितना एक्टिव रहना है और कितना आराम करना है।
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: नहीं देखभाल कर रहे हैं बॉडी की, या तो रेस्ट ही करते रहते हैं। कभी फिर डॉक्टर बोलता है कि ब्लड शुगर बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, अभी एक्सरसाइज करो, तो सीधा जाके मैराथन के लिए एनरोल करते हैं या टेनिस क्लास चालू करते हैं,
1: जो दोनों एक्सट्रीम है। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या क्या करती हैं? लोगों को समझाने के बाद वाली जो प्रोसेस है उसमें कितनी एक्सरसाइज है, कितनी मशीनों की मदद है?
0: मेरा थोड़ा अलग से सिस्टम है मेरे क्लिनिक में, मतलब जो अभी आई थिंक मेनी पीपल आर डूइंग, बट मेरा ग्रेजुएशन ही बहुत पहले, लाइक आई हैव ग्रेजुएट 1989 और तभी तो। लेट मी टेक यू टू हिस्ट्री ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी इंडिया में आई है 100 साल अभी हुए नहीं है, इट इज अबाउट 75-76 years। सो वेन आई ज्वाइंट 84 में, मैंने ज्वाइन किया 89 में मेरा खत्म हुआ, तभी फिजियोथेरेपी बहुत नई थी। और ये जो अभी सर्जरीज हैं वो भी तभी नहीं थे, मतलब जो अभी आर्थ्रोस्कोपिक, जैसे मैंने ACL बोला, रोटेटर क्रफ, जो छोटी इंसिजन से सर्जरी होती है, वो 1985 या कुछ से चालू हुई है। मतलब मैं तभी थी कॉलेज में, सर्जरीज उतने तभी नहीं थे। रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये भी 1980s में आई है, वो भी एकदम नई नई थी तभी। अभी जो जितने सर्जरीज होते हैं और जितने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन होता है, मतलब जब भी मैं कॉलेज में थी तभी अगर कोई साइक्लिस्ट रास्ते पे दिखा, मतलब दिखते थे तभी बहुत, तो वो एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग नहीं कर रहा था, वो एक्चुअली जरूरत के लिए कर रहा था। जो अभी बढ़ गया है ये सब, इसके लिए ये सब आए हैं। तो बट मेरा थॉट प्रोसेस तभी से ऐसे ही था कि जो इंजरी और पेन और सब है, और दूसरी साइड है एक्सरसाइज और सब, तो उसके बीच वाला ब्रिज हम लोग बन सकते हैं। तो उसी तरह से मेरा क्लिनिक चलता है। पहले पेन मैनेजमेंट होता है। अगर आप आए, समझो आपको पीठ में पेन है, तो फर्स्ट स्टार्ट होता है पेन मैनेजमेंट से। मेरे ख्याल से पेन बहुत जल्दी मैनेज हो जाना चाहिए
1: जी।
0: अगर वो अक्यूट पेन है, अभी आया है, तो उसको मैनेज कर सकते हैं बहुत जल्दी से। अगर पेन मैनेज जब भी होता है तो पहले 2-3 दिनों के अंदर ही हम थोड़े एक्सरसाइज चालू करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। और जैसे समझो 1 घंटे का सेशन है, तो पहले मे बी 45 मिनट्स उसमें से पेन मैनेजमेंट में जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो कम होके पेन का, समझो लास्ट 10 मिनट ही पेन मैनेजमेंट करेंगे, ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज, वी कॉल इट रिहैबिलिटेशन, मतलब मेकिंग दैट पर्सन फंक्शनल अगेन, जो भी फंक्शन
1: जी।
0: और वो जो हमारे एक्सरसाइज है वो ऐसे डिजाइन होते हैं, एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट, मतलब आप कुर्सी में बैठ के कंप्यूटर का काम करने वाले हो, या आप कोई मेडिकल रेप, या आप कोई सेल्स के डिपार्टमेंट हो जहां आपको ज्यादा चलना पड़ता है, या आप हाउसवाइफ हो जहां आप क्लीनिंग करोगे या कुछ भी करोगे, या आप स्पोर्ट्समैन हो, या इवन वीकेंड स्पोर्ट्समैन हो, अगर आप ऑफिस में काम करते हो बट वीकेंड में आप स्पोर्ट्स खेलते हो,

0: तो आपको उस तरह से एक्सरसाइज कराना चाहिए जो एज अप्रोप्रिएट, फंक्शन अप्रोप्रिएट एंड सूटिंग टू योर नीड्स, सो इंडिविजुअलाइज्ड होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये प्रोसेस होती है। अगर सर्जिकल है, पोस्ट सर्जिकल है, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, फिर वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है।
1: जी, तो मरीजों को ये बताइए कि कितना ज्यादा मायने रखती है फिजियोथेरेपी, क्योंकि एक चलन जो अमूमन हमारे आसपास देखा जाता है कि जब तक आराम मिला, तकलीफ थोड़ी कम हुई, तो छुट्टी मारो, कौन जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट
0: हाँ,
1: के पास।
0: बट अगर मैंने देखा है कि आप जितना बात करते हो ना, जितना समझाते हो या एक्सप्लेन करते हो पेशेंट को, उतना उनका इंटरेस्ट बढ़ता है।
1: जी
0: जरूरी तो है, जैसे मैं बोलती हूँ, पेन मैनेज हो जाता है, पेन के लिए इतनी तकलीफ नहीं करनी पड़ती है। एंड लाइक यू करेक्टली सेड, थोड़े दिनों में पेन चला जाता है, फिजियोथेरेपी का वर्क इज ओवर एक्चुअली। बट जो प्रिवेंटिव है कि नेक्स्ट एपिसोड नहीं होना चाहिए, या ये बार बार नहीं होना चाहिए, या आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या कर सकती है, क्या नहीं करना चाहिए। एंड अगेन लाइक आई सेड, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक्सरसाइज करो फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग। जो बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है वो मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। तो वो कैसे करना है वो सीखने के लिए हम ज्यादा काम करते हैं, सिखाने के लिए, एंड टू क्रिएट इंटरेस्ट इन यू फॉर एक्सरसाइज। उसके लिए बात करना बहुत जरूरी है। उसका जितना आप इंपॉर्टेंस समझाओगे, पेशेंट का इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा, और उनके लैंग्वेज में उन्हें जैसे समझे वैसे एक्सप्लेन करना चाहिए।
1: जी,
0: जैसे मैंने बोला, इंजरी कहाँ है, वो आपको कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है, क्यों करना है प्रोटेक्ट। सो आई कॉल इट एम्पावरिंग द पेशेंट। अगर आप एम्पावर करोगे तो वो खुद से जान जाएंगे। और मेरा अदर थिंग इज कि उनको एम्पावर इस तरह से करो कि वो अपने आप से एक्सरसाइज कर सके। हमारे पास आने की जरूरत नहीं है ज्यादा।
1: जी जी,
0: बट ऑफकोर्स लर्निंग प्रोसेस के लिए एक महीना या दो महीना जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि आपने अगर थोड़े अलग तरह से की तो वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकती है। सो वो सिखाने में थोड़ा टाइम जाता है, पर उसके बाद बार बार आने की जरूरत नहीं है।
1: इसका मतलब ये है कि अगर आपको जरूरत है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की, तो पूरी शिद्दत के साथ जाएं और जो कुछ सिखाया जा रहा है उसको सीख के प्रिस्क्राइब टाइम तक पूरा करें।
0: करें और करते रहे उसके बाद।
1: हाँ,
0: ये लाइफ लॉन्ग है, लाइफ लॉन्ग है। जैसे मैं बोलती हूँ, डाइट एंड एक्सरसाइज, उसको टाइम मत रखो। ऐसा मत बोलो कि मैं दो महीने डाइट पे हूँ, मैं दो महीने एक्सरसाइज के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए जाती हूँ या जाता हूँ। लाइफ लॉन्ग है, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, बट एक्सरसाइज लाइफ लॉन्ग है।
1: जी, अब हम उन बातों पर आते हैं जहां आपने कुछ बहुत ही मशहूर हस्तियों का इलाज किया है, बीमारियों से, चोटों से, तो उससे जुड़े कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए।
0: मैंने फिजियोथेरेपी क्यों ज्वाइन किया, तभी तो कुछ उसका यही नहीं था, मतलब नोबडी न्यू कि फिजियोथेरेपी क्या है।
1: जी,
0: मुझे मेडिसिन करना था, MBBS, और उसके बाद MD या MS नहीं मिला, एक दो मार्क से छूट गया।
1: अरे रे,
0: तो फिर मैं फिजियोथेरेपी में आई और मुझे तभी कुछ मालूम नहीं था क्या है ये।
1: हाँ हाँ।
0: जैसे मैंने बोला, मैंने ज्वाइन किया KEM हॉस्पिटल, इट वॉज द फर्स्ट हॉस्पिटल इन मुंबई विच ऑफर्ड, एंड इन 84, जैसे मैंने अभी बोला, मैंने ये डिसाइड किया एक दो साल के बाद, समझने के बाद कि ये क्या है, मैंने ये डिसाइड किया कि ये जो गैप है, तभी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी करके कुछ नहीं था, स्पोर्ट्स साइंस ही नहीं था 84-85 में, कुछ नहीं था। फिर भी मैंने ऐसे सोचा कि ये जो सब्जेक्ट्स है वो इतने अलाइंड हैं इस चीज के लिए कि जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं या स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, तो उन्हें हम ब्रिज बन सकते हैं उनके पेन और इंजरी और परफॉर्मेंस के बीच में। तो उस तरह से मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, क्योंकि था नहीं एक कोर्स, तो मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया, टेपिंग, स्पोर्ट्स टेपिंग, बहुत सारे कोर्सेज किए मैंने, एक्चुअली एक्सरसाइज के बहुत सारे किए, एडवांस्ड वेट ट्रेनिंग, कोर स्टेबिलिटी ऑन रीबॉक बॉल, एंड बहुत सारे किए। तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि कभी ऐसी जरूरत पड़े, और मैंने मेरा क्लिनिक भी वैसे ही डिजाइन किया कि ज्यादा एक्सरसाइज बेस्ड एंड लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन। और आई डोंट नो हाउ लक के वजह से, मेरे आसपास के लोगों के और ऑफकोर्स मेरे काम के वजह से भी, थोड़े लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली एक्टर्स जिनको ऐसे बॉडी बनानी है किसी रोल के लिए, और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए, वो लोग और स्पोर्ट्समैन थोड़े थोड़े मेरे पास आने लगे। मैं ये बोलना चाहूंगी कि रेसलर्स, जो बहुत पुअर रेसलर्स हैं, उनके साथ मैंने बहुत पहले से काम किया है।
1: अरे गजब।
0: दंगल बहुत बाद में आई, उसके मच

0: बिफोर दैट मैं 2002 से लोकल महाराष्ट्र के और नेशनल लेवल रेसलर्स के साथ मैंने फ्री में काम किया है. मेरे क्लिनिक में आते थे. एक्चुअली नाम आपने पूछा है, मैं नाम थोड़े बड़े वाले बोल सकती हूँ, बट ये लोग जो हैं उनके साथ मैंने इतना काम किया है. और इवन क्रिकेटर्स जो लोअर लेवल के अभी भी आते हैं. अभी भी एक था जो रोटेटर कफ इंजरी था उसको, ही इज ओनली 20-21, अभी कोई टीम में नहीं है. जिसे जरूरत है उनको मैं देती हूँ ट्रीटमेंट. तो बड़े नाम बोलो तो एक तो सचिन तेंदुलकर.
1: बाप रे
0: हाँ, आई हैव बीन ट्रीटिंग हिम फ्रॉम 2002 टू 2012, मतलब क्वाइट अ लॉट,
1: बहुत
0: टेन
1: लंबा
0: टेन हाँ
1: टाइम.
0: टेन
1: जी
0: ईयर्स. जब भी बिकॉज स्पोर्ट्समैन का ये है कि वो टीम के साथ ट्रैवल करते हैं तो उनका थेरेपिस्ट उधर होता है.
1: जी
0: मैं कभी उसमें नहीं थी. बट जब भी इंजोर होते हैं तो घर पे होते हैं, तो फिर उन्हें कोई और
1: जरूरत
0: लगता
1: पड़ती
0: है.
1: है.
0: और अगर एक पे भरोसा आ जाए तो फिर वही होता है. तो अनऑफिशियली आई वॉज नॉट विद बीसीसीआई, बट बीसीसीआई ऑलवेज पेड मी फॉर सचिन ट्रीटमेंट्स. आई हैव ट्रीटेड सचिन फ्रॉम बैक इंजुरीज, मेनली द टेनिस एल्बो,
1: जो बहुत ही मशहूर
0: टेनिस
1: उनकी
0: एल्बो
1: इंजरी
0: एंड
1: थी.
0: शोल्डर. या
1: जी जी जी
0: सो या ही इज बीन अ प्लेजर. और इतना हम्बल कोई वो लेवल पे हो ही नहीं सकता है,
1: क्या
0: हो
1: बात
0: ही नहीं सकता है कोई भी
1: है
0: नहीं.
1: जी
0: मतलब एक बार जब भी मैं बहुत, मतलब आई थिंक नाउ आई एम प्रिटी एडवांस्ड इन माई फील्ड, बट एट दैट टाइम आई वॉज अ नो बडी एंड ही वॉज एट द टॉप. तभी भी एक बार मुझे याद है, मैं उसके घर में रुकी हुई थी, कोई अपॉइंटमेंट था उसके साथ. और उसका मुझे मैसेज आया कि मैं 5 मिनट लेट होने वाला हूं, आई एम वेरी सॉरी. और एक्चुअली इट वुडंट हैव मैटर टू मी, बट वो इतना टाइम का पंक्चुअल दैट इवन ही थॉट कि आई शुड मैसेज.
1: वाह
0: बहुत ही संभल आदमी है. एंड प्रूफ इज दैट ही प्लेड फॉर दोज 10 ईयर्स दैट वॉज ट्रेनिंग, ही प्लेड वेरी वेल.
1: क्या बात है.
0: नो, मुझे ये बोलना था कि ये प्रोफेशन मैंने चुना नॉट बाय चॉइस बट बाय चांस, बट इसमें से प्लेजर मुझे बहुत मिला है.
1: जी
0: ऋतिक रोशन, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, शिल्पा शेट्टी, बहुत बहुत नाम है, बड़े वाले भी और छोटे विक्ट्रीज भी बहुत हैं
1: क्या बात है. तो
0: जिनको.
1: जब बड़े स्टार्स को ट्रीट करती हैं तो कैसा, वो क्या
0: मुझे
1: फीलिंग होती
0: कुछ
1: है
0: अलग नहीं लगता है, नहीं सच नहीं लगता है.
1: जी जी
0: इट्स अ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स द सेम दे.
1: राइट
0: आई रियली डोंट फील, बट इट फील्स गुड. कभी शिल्पा शेट्टी डांस करके बताएं कि मुझे ये मूव करना है, इधर दुख रहा है. कभी सचिन तेंदुलकर 10 स्ट्रोक मार के दिखाएं कि ये बैटिंग में इधर दुखता है, ये ऐसा दुखता है. कभी ऋतिक रोशन पुशअप्स करके दिखाएं.
1: कि ये प्रॉब्लम हो रही है.
0: तो अच्छा लगता
1: वाह
0: है.
1: वाह क्या
0: दीज
1: बात
0: आर
1: है.
0: द पर्क्स,
1: बिल्कुल
0: साइड
1: बिल्कुल.
0: पर्क्स,
1: ऑफ कोर्स ऑफ
0: बट
1: कोर्स.
0: नो, इन रियलिटी नथिंग इज डिफरेंट,
1: जी
0: एवरीबॉडी
1: बातें
0: इज.
1: चूंकि इन तमाम लोगों की हो रही हैं जो मशहूर लोग हैं जिन्होंने आपसे सलाह ली
0: पर
1: है,
0: मशहूर लोगों से बहुत ज्यादा मैंने रेगुलर
1: नॉर्मल लोगों
0: लोगों
1: से
0: से, और मुझे तो प्लेजर उधर से ही मिलता है. बिकॉज
1: बिल्कुल
0: वो
1: मैं
0: उनके
1: समझ रहा
0: प्रॉब्लम्स कोई सॉल्व नहीं कर सकता है. यू नो
1: जी.
0: लाइक दीज पीपल आई नो, मैंने नहीं किया तो कोई और करता था. मुझे, आई एम एक्चुअली लकी दैट आई केम इन कॉन्टैक्ट विद देम. बट ऑल दी अदर्स, सो मेनी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ओवर 37-38 ईयर्स, वो ही प्लेजर देता है.
1: क्या बात है. क्योंकि जिक्र हुआ है ऋतिक रोशन और आमिर खान का, तो इन दोनों में से किसका गाना सुनवाया जाए.
0: अभी आमिर खान का सुनाइए.
1: ठीक है, क्योंकि बात दंगल की हो रही है तो
0: दंगल का,
1: दंगल का
0: यस
1: गाना सुनवाते
0: यस
1: हैं, नैना.
2: नै

0: डॉक्टर साहब, इतनी सारी बातें स्पोर्ट्स इंजरी की और नॉर्मल इंजरी की हुई, और आपने एक बात पर बहुत जोर दिया कि एक बहुत लंबा समय ऐसा था जब फिजियोथेरेपी पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आज ऐसा समय है जब फिजियोथेरेपी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गई है, पर फिर भी क्या आपको लगता है कि एक आम इंसान फिजियोथेरेपी को लेके थोड़ा कम सीरियस है? इस तरह की चीजें आपने देखी हैं?
1: मैं ये कहूंगी कि बहुत लोगों को ये एक्सपेंसिव हॉबी लगती है।
0: एक्सपेंसिव हॉबी?
1: क्योंकि पेन इज अ रियल थिंग
0: जी,
1: बट उसके बाद मुंबई जैसे शहर में रह के कम्यूटिंग इज सो डिफिकल्ट, टाइमिंग्स आर डिफिकल्ट, उसमें आना है, रोज आना है या हफ्ते में 3 दिन आना है, फीस भरनी है, ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है आम आदमी के लिए, इसलिए बोलूंगी मैं। अदरवाइज मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो हमारे पास आते हैं वो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स आते ही रहते हैं
0: जी।
1: उनको अगर
0: उनको
1: हाँ महत्व अगर ठीक से समझे तो वो आते हैं। बट फिर भी ये मैं बड़े शहर की बात कर रही हूँ
0: जी,
1: मुंबई की बात कर रही हूँ, मे बी मुंबई, बैंगलोर, कैलकटा, पुणे, ये सब, और इवन मिड लेवल सिटीज, ये सब आई थिंक फिजियोथेरेपी, आई थिंक पीपल डू अंडरस्टैंड, आते हैं, करते हैं, पर छोटे गांवों में और अभी तक नहीं है उतना, आई थिंक उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं मालूम है लोगों को
0: जी।
1: फिजियोथेरेपिस्ट का पॉपुलेशन भी वो जगहों पे कम होगा
0: जी, तो
1: सब इधर ही बड़े शहरों में भरे पड़े हैं।
0: ऐसे शहरों में जहां लोग हमें सुन रहे हैं, छोटे छोटे शहर, लोगों को छोटी छोटी फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो जिनको फिजियोथेरेपी कहा जाता है और जो इस बात को सीरियसली नहीं लेते हैं, एज एन एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या सलाह देना चाहेंगी जो बहुत ही कॉमन लोग हैं, छोटे शहरों के लोग हैं, और बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, डॉक्टर ने कहा कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए, ये प्रोटोकॉल आपको करना है,
1: वो उसको सलाह दे कि अगर उनके पास कोई हो उधर तो ही तो फायदा है, बिकॉज नहीं तो, और आप बोल रहे हैं छोटी छोटी चीजें, वो है एक छोटी चीजों की थोड़ी बातें कर दी अभी, बट बड़ी चीजें भी होती है लाइक पैरालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स
0: जी,
1: हेमिप्लीजिया,
0: बल्कि सर्जरी के बाद भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है।
1: हाँ, बहुत
0: सीरियस मैटर है,
1: बहुत है, अगर टाइमली फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फिर वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज आती हैं पैरों में या हाथों में, तो फिजियोथेरेपी एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं लोगों को कुछ सलाह दे नहीं सकती अगर उनके पास नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट, बट अगर है तो सच में लाइफ बदल जाती है, बिकॉज ये जो सर्जरीज हैं वो काफी नहीं है, सर्जरी इज इंपॉर्टेंट समटाइम्स, बट उसके बाद वाला फिजियोथेरेपी नहीं किया तो फंक्शन नहीं आता है, मतलब जो हमें चाहिए वो एंड रिजल्ट फंक्शन वो ही नहीं आता,
0: इसीलिए इसको रिहैबिलिटेशन कहते हैं।
1: यस, इट इज रिहैबिलिटेशन एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट शुड बी ट्राइड कि हर छोटी जगह पे भी फिजियोथेरेपिस्ट हो, और क्योंकि कई चीजें छोटी है समझो चल भी जाएंगी नहीं करेंगे तो, बट कई चीजें ऐसी हैं कि आपका लाइफ ही बदल जाएगा, अगर नहीं किया तो खराब हो जाएगा, किया तो मच बेटर।

0: हो जाएगा।
1: जी, बुजुर्गों में फिजियोथेरेपी
0: यस,
1: कितनी डिफिकल्ट होती है?
0: बहुत जरूरी है, बहुत बहुत बहुत जरूरी है। एज के वजह से जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस।
1: जी
0: मसल इज प्रोग्राम्ड, जैसे मैंने बोला, ब्रेन हॉर्मोन्स ये सब डिसाइड करते हैं कि बॉडी फंक्शनिंग कैसे करेगी। अप टू 30 ईयर्स बॉडी इज ग्रोइंग, मतलब आई विल से टिल 20 इट इज ग्रोइंग। 20 to 40 थोड़ा मेंटेन होता है स्टेटस को, और 40 के पास थोड़ा सा डिटेरियरेशन चालू होता है। ये हमारा सेट प्रोग्राम्ड है, बॉडी प्रोग्राम्ड है इस चीज के लिए। मसल लॉस बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब अगर हम इनएक्टिव है तो 30 के बाद ही मसल लॉस चालू हो जाता है। पहले 5-5% पर डेकेड, देन 10-15-20%, 70 और 80 एज के बीच में तो ड्रास्टिकली कम हो जाता है, 20-30% का लॉस होता है। तो वीकनेस बढ़ जाता है, उसके बाद स्टेयर्स अगर आपको चढ़ने हैं तो डिफिकल्टी होती है ऊपर चढ़ने में, कुर्सी से कभी उठने में तकलीफ होती है, तो सोशल एक्टिविटी कम हो जाती है, बोन लॉस उसके वजह से होता है, एज रिलेटेड अदर बीमारियां आती है बिकॉज एक्टिविटी कम हो जाती है हार्ट के। तो मसल मेंटेन करने के लिए एक प्रिवेंटिव प्रोग्राम जीरियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए बहुत ही जरूरी है।
1: जी
0: पेन तो होता ही है, पेन मैनेजमेंट के लिए भी लगता है, बट मेनली मसल लॉस इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी प्रॉब्लम ओल्ड पीपल हैव, इंक्लूडिंग फॉलिंग एंड हैविंग फ्रैक्चर्स।
1: वो तो बहुत ही
0: फ्रैक्चर
1: कॉमन
0: के
1: चीज।
0: उसकी डेंजर्स ये हैं कि गिर के आपका हेड इंजरी और हिप इंजरी, दीज आर द टू डेंजरस थिंग्स विच कैन हैपन टू ओल्डर पीपल, दैट विल मेक देम बेड रिडन और ऑल्सो कैन बी फेटल। सो
1: बिल्कुल
0: वो सब मसल पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बैलेंस और हम जो भी बोलते हैं वो सब मसल से चालू होता है।
1: जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। और मुझे ये लगता है कि बुजुर्गों की इंजरी और उनके पेन मैनेजमेंट और जो आपने कहा कि प्रिवेंटिव जो उपाय हैं
0: बहुत
1: वो
0: ही
1: बहुत
0: जरूरी है,
1: जरूरी
0: और
1: हैं।
0: वो प्रिवेंशन जल्दी ही चालू होना चाहिए, बट इट्स नेवर टू लेट।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: मैं बोल रही थी, हमारे पास बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं और हम होम विजिट्स भी उनको प्रोवाइड करते हैं। एक तो 95 ईयर ओल्ड थे, जो 80 के एज से हमारे पास एक्सरसाइज कर रहे थे रेगुलरली, 2 or 3 times a week यूज टू कम टू क्लिनिक, एंड 95 ही पास्ड अवे। 1 day बिफोर दैट ऑल्सो ही हैड रिक्वेस्टेड होम विजिट फॉर एक्सरसाइज।
1: क्या बात है, इतना
0: तो सम
1: ध्यान रखने
0: पीपल आर
1: वाले लोग भी
0: रियली।
1: हैं।
0: और पंडित जसराज जी आते थे हमारे पास,
1: वाह वाह
0: हाँ,
1: वाह,
0: और हमारे
1: क्या
0: क्लिनिक
1: बात
0: में
1: है,
0: गाना गाते थे
1: क्या बात है,
0: ट्रेडमिल पे चलते चलते
1: क्या क्या बात है, क्या बात है। जिस स्टूडियो में यहाँ हम बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ भी
0: हाँ, वो
1: हम
0: भी 10 साल
1: पंडित
0: आए
1: जसराज
0: हमारे
1: को रिकॉर्ड
0: पास
1: कर
0: जस्ट
1: सकते हैं।
0: एक्सरसाइज के लिए, कार्डियक रिहैब, बट ही वेंट ऑन टू एक्सरसाइज।
1: गजब, क्या बात है। चलते चलते एक गाना सुन लिया जाए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। आपने चूंकि पंडित जसराज का जिक्र किया है, तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार गाना गाया था, 1920 नाम की एक फिल्म है, उसमें वादा तुमसे है वादा,
0: या
1: वो गाना सुनते हैं थोड़ा सा।
0: यस।

0: डॉक्टर, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें आपने की हैं, चलते चलते एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आम आदमी से आप वो कौन सी बात कहना चाहेंगी जो इस पल सबसे ज्यादा जरूरी है?
1: एक्सरसाइज करते रहो,
0: जी
1: एब्सोल्युटली करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो।
0: जी
1: जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत लगे तो जरूर जाना चाहिए, बिकॉज एट अ वेरी सिंपल लेवल मेनी मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व।
0: बहुत जरूरी सूत्र आपने दिए हैं कि ये तमाम चीजें माने तो बहुत सारी
1: एक्सरसाइज
0: प्रॉब्लम्स।
1: एंड डाइट इज, एंड आई ऑलवेज टेल पीपल दैट एक्सरसाइज एक्चुअली मेडिसिन से भी डिफिकल्ट है प्रिस्क्राइब करना। हर एक के लिए इंडिविजुअलाइज होना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन में ना एक आता है, उसके पीछे पर्ची आती है जहां पे लिखा रहता है डोसेज, एज रिलेटेड, वेट रिलेटेड, ये वो। एक्सरसाइज में बहुत सारा, हर दिन भी बदलना पड़े तो बदलना चाहिए। अगर
0: जी
1: आप टायर्ड हो तो नहीं करना चाहिए ज्यादा, थोड़ा हल्का वॉक करो। जिस
0: जी
1: दिन एनर्जेटिक लगता है उस दिन ज्यादा करो, क्योंकि उसका रिकवरी उस तरह से अच्छा होगा।
0: बिल्कुल,
1: सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो।
0: एडवाइस लेके एक्सरसाइज करो, ये आज के इस प्रोग्राम की बॉटम लाइन है।
1: यस
0: डॉक्टर हर्षदा, बहुत बहुत शुक्रिया कि विविध भारती के स्टूडियो में आके आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। आगे फिर आइएगा और फिर

0: हमारे श्रोताओं से
1: थैंक यू
0: मुखातिब
1: वेरी
0: होके
1: मच,
0: जरूरी बातें बताइएगा।
1: आई एंजॉयड, थैंक यू,
0: शुक्रिया।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हर्षदा राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग काजल भदरगे, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण अभी आप विविध भारती मुंबई से सुन रहे थे। FM एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बजने को हैं। अब युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को संजय पाराशर का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज सोमवार है और आज हम आपसे बातचीत करेंगे युवा और फिटनेस संस्कृति के बारे में। साथ ही जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर किस प्रकार से प्रतिबंध है और युवाओं के सामने क्या विकल्प है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। पहले बात करते हैं आज का युवा। दोस्तों, आज आप युवा हो और आपके मन में ये आता होगा कि जिम जाएं या योग करें। साथियों, शारीरिक और मानसिक प्रभाव की तुलना हमारे मन में हमेशा चलती रहती है कि जिम जाएं या योग करें। जिम और योग दोनों ही शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाले एक तरह से सेगमेंट है, लेकिन दोनों की कार्यप्रणाली पर शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव है उसमें वास्तव में अंतर है। जिम क्या है? मांसपेशियों का निर्माण, भारी वजन और मशीनों की मदद से मांसपेशियों का आकार और उसकी ताकत जिम से तेजी से बढ़ती है। कैलोरी बर्न और वजन पर नियंत्रण, हाई इंटेंसिटी यानी उच्च तीव्रता वर्कआउट के कारण वजन और फैट तेजी से कम होता है। शारीरिक सीमाएं की बात करें तो अत्यधिक या गलत तरीके से वजन उठाने पर जोड़ों या मांसपेशियों में चोट भी लग सकती है या जोखिम एनी टाइम हमारे साथ में रहता है। अब दूसरी बात हम बात करें योग की, तो योग लचीलापन और आंतरिक मजबूती का एक आसन और प्राणायाम से शरीर का लचीलापन, संतुलन और आंतरिक अंगों की कार्यक्षमता योग से बढ़ती है। बात करें मानसिक शांति और तनाव मुक्ति की, ध्यान और सांस नियंत्रण तंत्रिका तंत्र को शांत करते हैं जिससे मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद दूर होते हैं। आई समझ में साथियों कि योग करने से हमारे मन को शांति मिलती है, मस्तिष्क तनाव मुक्त होता है। यदि दीर्घकालिक स्वास्थ्य की बात करें तो योग का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। हर उम्र में, हर पड़ाव पर इसको हम निरंतर रूप से कर सकते हैं। तो साथियों, योग और जिम, इन दोनों में अंतर बताने के लिए हम आपसे बात करेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: साथियों, कभी कभी हमारे मन में आता है कि योग और जिम, इनका मुख्य क्या उद्देश्य होता है? साथियों देखिए, जिम का उद्देश्य शारीरिक और

मसल्स, सॉस और ताकत बाहरी रूप से हम इसको दिखा सकते हैं, उसके बदले मन, मस्तिष्क और शरीर का सामंजस्य और आंतरिक संतुलन का नाम ही है योग। यदि ऊर्जा की खपत के रूप में हम बात करें तो जिम में ऊर्जा बहुत ज़्यादा खर्च होती है, थकावट जल्दी आती है और पसीना ज़्यादा आता है। इसके बनिस्पत योग में संतुलित ऊर्जा का संरक्षण होता है और ताजगी बनी रहती है। लागत और उपकरण की बात करें तो जिम महंगा पड़ता है, महंगे उपकरण खरीदने पड़ते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट और जिम की सदस्यता भी हमें लेनी पड़ती है, बल्कि योग बिना पैसों का एक अच्छा सा साधन है। एक चटाई बिछाई और खुली जगह, खुली हवा में सुबह सुबह आप योग कर सकते हैं, या जब भी आपको समय मिले शाम के टाइम या दोपहर के टाइम, जब भी आप फ्री टाइम हो तो आप बिना घर से बाहर जाए हुए घर में ही योग कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिम में मानसिक और आत्मविश्वास और डोपामाइन रस होता है, इससे मानसिक प्रभाव पड़ता है। और योग की बात करें तो इसमें आत्म जागरूकता, एकाग्रता और मानसिक शांति मिलती है। संतुलित दृष्टिकोण से यदि फिटनेस, स्मार्ट फिटनेस का दौर आज के ज़माने में है, हर बच्चा जिम की ओर भाग रहा है। आज के युवाओं में एक नया रुझान देखने को मिल रहा है कि हाइब्रिड फिटनेस, युवा जब जिम और योग को एक दूसरे का विरोधी मानने लग गए हैं, दोनों में मेल को अपना रहे हैं, सोच रहे हैं कि जिम जाऊं या योग करूं। हालांकि दोनों ही स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, लेकिन जिम थोड़ा खर्चीला है, योग थोड़ा कम खर्चीला है। सप्ताह में दो दिन आप योग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान के माध्यम से अपने मांसपेशियों की रिकवरी कर सकते हैं और मानसिक शांति को भी प्रदान कर सकते हैं। जिम जहां युवाओं को त्वरित बाहरी परिणाम देता है, अनुशासन और शारीरिक मजबूती प्रदान करता है, वहीं योग जीवन भर स्थिर रहने वाला आंतरिक स्वास्थ्य, लचीलापन और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। युवाओं को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, जीवन शैली और शारीरिक क्षमता के अनुसार सही विकल्प या दोनों के संतुलन का चुनाव कर लेना चाहिए और बिना समय गंवाए या तो जिम करें या योग करें। आपको यदि मानसिक शांति चाहिए तो आप योग करें, शारीरिक ताकत और एनर्जी बर्न करनी है तो आप जिम जाएं। फैसला आपके हाथ में है, दोनों ही न तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और न ही ज़्यादा लाभदायक, दोनों का संतुलन बराबर रहना चाहिए। तो साथियों, ये तो थी जिम और योग के बारे में बातचीत। अब आप, आज सोमवार है और सावन का ये सोमवार महादेव को अर्पित है।

0: नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: आकाशवाणी नागौर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आपका अपना दोस्त संजय पाराशर। साथियों, हमने बात की थी योग और जिम के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बारे में और आज का युवा कौन से विकल्प को तलाशे। अक्सर साथियों, हम बाजार जाते हैं और सब्जी है या और भी कोई दूसरी चीज है प्लास्टिक के बैग में लेकर के आते हैं। आपको मालूम है हमारे देश में सिंगल यूज

0: प्लास्टिक पर प्रतिबंध है, यानी सिंगल यूज़ का मतलब होता है एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक, और वो प्लास्टिक पर्यावरण के लिए एक तरह से गंभीर संकट बना हुआ है। थर्माकोल के बर्तन, प्लास्टिक के थैले, स्ट्रा और पैकेजिंग मटेरियल सैकड़ों साल तक साथियों नष्ट नहीं होते हैं। ये हमारे हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित करते रहते हैं। तो हम पढ़े लिखे हैं, हमें ये समझ होनी चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग हम ना करें, क्योंकि भारत सरकार ने इस पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया है। देश की युवा पीढ़ी इस बदलाव को लागू करने में और नए विकल्प तलाशने में आज सबसे आगे हैं। साथियों, युवा पीढ़ी के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? सस्ते विकल्पों की कमी, प्लास्टिक के मुकाबले पर्यावरण अनुकूल उत्पाद अभी भी थोड़े महंगे आ रहे हैं और हमें बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। बाजार में प्लास्टिक के विकल्प पर हर जगह आसानी से ये जो उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, सुलभता नहीं है, इसलिए हम सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। पुरानी आदतें हमारी बनी हुई है कि पूरी तरह इसको हम छोड़ना या व्यवहारिक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं, इसलिए हम प्लास्टिक को छोड़ नहीं पा रहे हैं। पर्यावरण अनुकूल विकल्प, युवा वर्ग न केवल स्वयं पर इन विकल्पों को अपना रहा है बल्कि इनके इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रहा है। तो साथियों, ध्यान रहना चाहिए कि हमें इसका विकल्प जरूर ढूंढना है, और ये प्रतिबंधित जो प्लास्टिक है जो एक बार ही उपयोग में आता है उसको हमें बिल्कुल ना कहना चाहिए। इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव सिस्टम हमें अपनाना है। हम युवा हैं, न केवल स्वयं पर बल्कि दूसरों पर भी इसके इस्तेमाल का बढ़ावा ना करें, ना यूज में लें और न लेने दें। कपड़े और जूट के थैले, खरीदारी के लिए प्लास्टिक बैग की जगह सूती कपड़े, या आप मान लो सब्जी लेने जाओ तो आप प्लास्टिक की थैली में या प्लास्टिक के पॉली जो बैग है उसमें नहीं लेके आए, अपने घर से जूट की थैली लेकर जाए या सूती कपड़े की थैली लेकर के जाए, इससे इससे हम बच सकते हैं। स्टील, कांच और तांबे की बोतलें, प्लास्टिक की पानी की बोतल की जगह हमें, चाहे आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं या यात्रा पे जाते हैं, तो एक बोतल साथ में लेके जाएं जो कि टिकाऊ और सेहत के लिए भी अच्छी रहे। बांस और लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं, हैं? बांस के टूथब्रश भी आते हैं, कटलरी भी आते हैं, चम्मच और कांटे, और कागज़ के बने हुए स्ट्रॉ भी हम यूज़ कर सकते हैं। हैं? हम मान लो जूस वगैरह पीते हैं तो हमें प्लास्टिक का जो बनी हुई जो एक्स्ट्रा है उसको यूज नहीं करना है। पत्तल और मिट्टी के बर्तन, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट की जगह हम पत्तल दोनों का प्रयोग करें। पुराने जमाने में हमारे जो बुजुर्ग थे इसका उपयोग करते थे। कमल की पत्तल है, कमल की पत्तल है, उनके पत्तों से एक पत्तल बनाई जाती थी, और दक्षिण भारत में तो ज़्यादातर इसका उपयोग करते ही हैं। मिट्टी के कुल्हड़ का इस्तेमाल करें, प्लास्टिक की गिलास में हम पानी न पिए। बायोप्लास्टिक और कंपोस्टेबल बैग, मक्के और अन्य प्राकृतिक सामग्री से बने हुए बैग का उपयोग करें, और हम प्लास्टिक जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। साथियों, बातें तो और चलती रहेगी, पहले लेते हैं ये अंतराल।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने में आज हमारे युवाओं का क्या योगदान हो सकता है? ग्रीन स्टार्टअप के तहत युवा उद्यमी बांस, गन्ने की खोई और धान की भूसी से बने हुए विकल्प को यूज़ में ले सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग लोगों को जागरूक

करने में सोशल मीडिया के माध्यम से, कॉलेज कैंपेन के माध्यम से, या कोई मैराथन के जरिए प्लास्टिक फ्री जीवन शैली का प्रचार प्रसार हम करके और इससे निजात पा सकते हैं। रिसाइकलिंग और इनोवेशन के तहत प्लास्टिक के कचरे से सड़कें, ईंटें और फैशन एक्सेसरीज बनाने में भी एक नई तकनीक को काम में ले सकते हैं। तो साथियों, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध केवल एक सरकारी नियम ही नहीं है, बल्कि पर्यावरण को बचाने में हमारे युवाओं की भागीदारी भी निश्चित होती है। युवा पीढ़ी अपनी सोच, नवाचार और दैनिक आदतों में बदलाव करके और प्रतिबंध को सफल बना सकते हैं। एक टिकाऊ भविष्य की नींव हमारी तभी बन सकती है जब हम सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल ना कहें। तो साथियों, बातें चलती रहेगी, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: साथियों, हमने बात की थी सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में, और साथ में हमने आपसे चर्चा भी की थी जिम और योग के बारे में। तो साथियों, हम युवा हैं, हमें आउटडोर गेम खेलने चाहिए, इससे शरीर चुस्त तंदुरुस्त और पुष्ट बनता है। और बाहर जो खेलते हैं आज कल, ज़्यादातर युवाओं को देखा है घर में बैठे बैठे हैं, वो वीडियो गेम खेलते हैं, मोबाइल में घुसे रहते हैं। बेटर देन ये अच्छा है कि आप बाहर खेलें, अपने शरीर को तरोताजगी दें और हष्ट पुष्ट बनाएं, ताकि आपका स्वस्थ जीवन आराम से चल सके।
1: ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम

0: पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

साथियों, खेल हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। यदि हम खेल खेलते रहें तो अच्छा भोजन पचाने में भी ये सहायक है, भूख भी लगेगी और खून भी बढ़ेगा, है ना। कई लोग घर में बैठे रहते हैं, मोबाइलों में घुसे रहते हैं, लेकिन उनको शरीर यदि उनकी एक्सरसाइज नहीं होगी तो उनको भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगी के साथ साथ ही उनका मन मस्तिष्क है वो क्या पता किस प्रकार चिड़चिड़ापन उसमें आ जाएगा। तो ध्यान रखें, आउटडोर गेम आप अवश्य खेलें, जिससे शरीर चुस्त तंदुरुस्त और पुष्ट

युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 बजे हैं। अब महिलाओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कि तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुगद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। जी हाँ, महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को आपकी अपनी रेडियो दोस्त बबीता सोनी का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, मानसून तन और मन को तरोताजा करने वाला मौसम होता है, लेकिन ये अपने साथ कई तरह की परेशानियां भी लेकर आता है। इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन, पेट से जुड़ी समस्याओं के साथ डेंगू मलेरिया का खतरा भी बढ़ जाता है। अन्य दूसरी परेशानियों की बात करें तो बरसात के मौसम में सीलन, फंगस और लीकेज जैसी समस्या भी देखने को मिलती है। ये देखने में खराब तो लगती है, साथ ही इसकी वजह से एक अजीब सी बदबू आती रहती है, जो अगर आपको नहीं पता तो बता दे कि सीलन की वजह से अस्थमा जैसी भी गंभीर सांस की बीमारी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि घर को सीलन से बचाएं। तो सखियों, कुछ ऐसे तरीके जानते हैं जिससे हम अपने घर को सीलन से बचा सकते हैं। बारिश में सिर्फ सीलन की वजह से ही नहीं बल्कि गंदगी की वजह से भी बदबू आती है, तो इस मौसम में खास तौर से अपने किचन बाथरूम को साफ सुथरा और सूखा रखें, क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा सीलन रहती है और बीमारियों फैलने का खतरा भी रहता है। सखियों, सीलन से बचाव के लिए घर को हवादार रखें। इसके लिए घर की खिड़कियां खुली रखें, खाना बनाते वक्त घर की एग्जॉस्ट फैन जरूर चलाएं, इससे भी एक्स्ट्रा नमी बाहर निकल जाती है, घर सीलन से बचा रहता है। इसके अलावा खिड़कियों के जॉइंट्स को चेक कर लें, कूलिंग के लिए स्लिप्ट एसी लगा, इसके लिए उसका आउटडोर छत या दीवार पर लगा है तो दीवार में जिस जगह से पाइप आ रही है उस जगह को भी चेक करना जरूरी है, अगर वह खुली है तो उसे सील कर दें और वाटरप्रूफिंग कर दें। सखियों, इस चीज को नजरअंदाज करने की गलती न करें, अगर आपकी घर छत दीवार पर किसी तरह का पौधा उगाया है तो उसे तुरंत निकाल दें। पीपल बरगद जैसे पौधों की जड़ें अंदर तक जम जाती है, तो इन्हें निकालने के लिए आसपास की कुछ दीवार को तोड़कर इसे निकाल दें, फिर दीवार की मेंटेनेंस करवा लें, इससे भी घर की सीलन की समस्या समाप्त हो सकती है। वैसे तो ये मानसून का सीजन की शुरुआत होने से पहले ही करवा लेना चाहिए और छत से लेकर दीवार तक के कोने कोने की अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए, अगर कोई भी दरार है तो उसे तुरंत ठीक करवा लें, दरार को सीमेंट या वाटरप्रूफ कंपाउंडर से भर दें। सखियों, ये छोटी छोटी टिप्स अपनाकर हम अपने घर को बरसात की सीलन से बचा सकते हैं। सखियों, बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, अब आपको लिए चलते हैं हम संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: अमूमन देखा गया है कि महिलाएं जितनी अच्छी तरह से अपने महंगे आउटफिट्स की केयर करती हैं, उतनी अच्छी तरह से वे अपने इनर गारमेंट्स की टेक केयर नहीं करती। इस कारण कई बार महंगे से महंगे इनरवियर भी देखभाल के अभाव में खराब हो जाते हैं। कुछ अंडरगारमेंट्स तो अपनी लाइफ से भी कम चलते हैं और इसलिए महिलाओं को बार बार इन्हें खरीदने में पैसा वेस्ट करना पड़ता है। यदि उचित देखभाल और रखरखाव किया जाए तो आपके इनरवेयर साल भर नए जैसे बने रहेंगे। तो चलिए सखियो, हम इस बारे में बात करते हैं कि हम अपने इनरवेयर की देखभाल कैसे करें और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सखियो, अंडरगारमेंट्स की देखभाल के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उसकी ढंग से साफ सफाई करें। इससे इनरवेयर को लॉन्ग लाइफ भी मिल जाएगी और ये आपकी हाइजीन के लिए भी बेहद जरूरी है। अपने अंडरगारमेंट्स को साफ करने के लिए हमेशा सॉफ्ट डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें। आपको बाजार में बहुत सारी अच्छी ब्रांड्स के सॉफ्ट डिटर्जेंट मिल जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि अंडरगारमेंट्स में कभी भी साबुन ना रहने दें, उसे अच्छे तरह से ठंडे पानी से वॉश करें। इतना ही नहीं, कभी भी अन्य कपड़ों के साथ अपने अंडरगारमेंट्स को साफ ना करें, इससे वे खराब हो सकते हैं। साथ ही साथ अंडरगारमेंट अच्छी तरह से सुखाएं और फिर स्टोर करें। सखियो, अमूमन महिलाएं इनरवेयर को स्टोर करने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं करती हैं। इनरवेयर को वॉश करके सुखाकर वह उसे ऐसे ही बिना फोल्ड किए किसी भी स्थान पर रख देती हैं, जबकि इस तरह से इनरवेयर को स्टोर करने पर वो बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं। सखियो, इससे आपकी फिटिंग भी प्रभावित हो सकती है और ऐसे में उसके फैब्रिक पर भी बुरा असर पड़ता है और कई बार ढेर सारे कपड़ों के बीच में इनरवेयर रखने पर कपड़ों के साथ ही उलझ जाते हैं। इससे उन्हें निकालते वक्त फैब्रिक में खिंचाव आता है और वह खराब हो जाते हैं। इनरवेयर को स्टोर करने के लिए उन्हें ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। सखियो, पहली बात तो ये है कि आपको अपने साइज को ध्यान में रखते हुए इनरवेयर खरीदना चाहिए। छोटा या बड़ा साइज आने पर केवल फिटिंग ही प्रभावित नहीं होती बल्कि उसकी देखभाल पर भी प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही कम से कम आपको 4-5 इनरवेयर के सेट रखने चाहिए और हर दिन नए सेट का प्रयोग करना चाहिए। इससे एक सेट को हफ्ते में एक ही बार धोने की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी कारण से आपका इनरवेयर फट गया है, उसका धागा निकल रहा है, तो तुरंत उसे रफू कर लें और उसे वह ज़्यादा खराब होने से बच जाएगा। सखियो, इनरवेयर को रोज रोज चेंज करें, यह आपकी हाइजीन के लिहाज से भी जरूरी है और रखरखाव की नजर से भी आवश्यक है, क्योंकि पसीने या वेजाइनल डिस्चार्ज के कारण इनरवेयर के फैब्रिक पर खराब प्रभाव पड़ता है। अगर आपके इनरवेयर में इलास्टिक है और किसी वजह से उसकी सिलाई खुल गई है और सिलाई का लॉक टूट गया है, तो उसे नजरअंदाज न करें बल्कि तुरंत ही उसकी मरम्मत करें। कभी भी इनरवेयर को वॉशिंग मशीन में वॉश न करें। इनरवेयर डेलिकेटेड होते हैं, अन्य कपड़ों के साथ उलझकर वह फट भी सकते हैं। इनरवेयर के लिए हैंड वॉश सबसे बेस्ट तरीका है। तो सखियो, ऐसी कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपना ख्याल रख सकते हैं। सखियो, बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। अब आपको लिए चलते हैं हम संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420-2233।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: सखियों, अगर आप अच्छे मन से खाना बनाते हैं और सब्जी टेस्टी न बने तो सारे मेहनत पर पानी फिर जाता है। सब्जी में सब कुछ डालने के बाद भी अगर स्वाद में मजा ना आए तो मन बहुत खराब हो जाता है। सब्जी की ग्रेवी को टेस्टी बनाने के लिए हम कई तरह के मसालों का इस्तेमाल करते हैं, कभी होममेड मसाला तो कभी बाजार के मसाले डालते हैं। लजीज खाना बनाने के लिए हम तरह तरह के टिप्स भी अपनाते हैं। तो सखियो, आज हम ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिनके इस्तेमाल से हम सादे खाने को भी बेहतर स्वाद में बना सकते हैं। सब्जी की ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू को पीस कर उसका पेस्ट बना लें। सब्जी बनाते समय इस पेस्ट को ग्रेवी में मिला दें। इससे ग्रेवी गाढ़ी तो हो जाएगी, इसके साथ ही सब्जी का स्वाद भी बढ़ जाएगा। सखियों, सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए आप क्रीम या मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यदि दूध की मलाई निकाल कर ग्रेवी में डाल दिया जाए तो स्वाद बढ़ जाएगा। अगर आप घर की मलाई नहीं है तो मार्केट से क्रीम लाकर भी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी सब्जी काफ़ी टेस्टी बनेगी। सखियों, अगर आप चाहते हैं कि सब्जी चटाकेदार के साथ साथ हेल्दी भी बने तो आप इसके लिए दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी को हल्का सा भून लें, उसे पीस कर सब्जी में मिला दें। इसी तरह से दही को अच्छे से फेंट लें, फिर ग्रेवी में मिला दें। इससे सब्जी का स्वाद भी बढ़ेगा और ये हेल्दी भी बनेगी। सखियों, हमने कई बार देखा है कि बहुत से लोगों को चटपटा खाना पसंद होता है, तो ऐसे में आपको

हरी मिर्च का इस्तेमाल करना चाहिए, ग्रेवी में लाल मिर्च नहीं हरी मिर्च डालनी चाहिए, क्योंकि ये सेहत को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। इसलिए इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल करें। हरी मिर्च को बारीक पीसने के बाद उसे ग्रेवी में मिलाएं। इसके अलावा गरम मसाले में लौंग, दालचीनी, इलायची, काले मिर्च और तेज पत्ता जैसी चीजों का पीस लें। इसका पाउडर ग्रेवी में डालें ताकि सब्जी चटपटी और जायकेदार बने। तो सब सखियों, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमारी रसोई में हमें हमारे पास उपलब्ध होती है, तो इन सबको हम अपनी सब्जी की ग्रेवी को टेस्टी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सखियों, बातें तो आपसे यूं ही चलती रहेगी, अब आपको लिए चलते हम संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।

है। इंसान इसकी भारी कीमत चुका भी रहा है, उसे प्रदूषण के साथ जीना पड़ रहा है, अनगिनत बीमारियां उसके गले पड़ रही है, लेकिन अब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। नए पेड़ पौधे लगाकर वो अब कुदरत का कर्ज उतार रहा है। पर्यावरण को संरक्षित करने में पेड़ पौधों का अहम योगदान होता है। पेड़ पौधों की कमी से ऑक्सीजन की भी कमी होती चली जाएगी, जिससे जीना दूभर हो जाएगा। ऐसे में पेड़ पौधों को जीवन को बचाने में ही नहीं बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी अहम रोल अदा करते हैं। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण कम करने के साथ साथ पर्यावरण को भी शुद्ध रखते हैं। पेड़ पौधे मात्र वायु प्रदूषण को ही नहीं बल्कि हानिकारक रसायनों को छानकर जल को भी साफ करते हैं। जितने अधिक पेड़ होंगे पर्यावरण भी उतना शुद्ध होगा। आजकल लोगों को वायु प्रदूषण के कारण कई प्रकार के सांस के और अन्य रोगों से पीड़ित होना पड़ रहा है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि घर के साथ साथ अपने आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाएं। सखियों, इसी के साथ सुनते हैं हम कार्यक्रम का आखिरी गीत।

महिलाएं अभी महिला दिवस कार्यक्रम सुन रही थी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब आप हिंदी में समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के भी निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा गया है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुणे और उसके आसपास लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा। इससे शहर को भीड़भाड़ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकेगा। लावले स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित बुनियादी ढांचा विकास विकसित भारत की राह विषय पर श्री गडकरी ने कहा कि पुणे, शिरूर, हडपसर यावत, तलेगांव, चाकन, शिकरापुर और शिरूर संभाजीनगर सहित कई प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजी जा सकती है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना

0: पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह फिर से खोलना अमेरिका की प्रमुख मांग रही है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को 21-7, 21-11 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। गॉल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति कविता कृष्णमूर्ति और साथियों को। फिल्म का नाम है घूंघट।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुरेश वाडेकर और अलका याग्निक का गाया अग्नि फिल्म से। गीत की रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। इसमें हमारे आज के कलाकार हैं भंवर सिंह एंड पार्टी। तो आइए सुनते हैं इनकी गायी कुछ लोक प्रस्तुतियाँ।

0: नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 12 में कहा, राजस्थान में वीबीजी रामजी के तहत इस साल 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में 309 निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। केंद्र सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई, अगले 4-5 दिनों में पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में छुटपुट बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन, और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों के लिए 3,473 करोड़ रुपए की लागत से 2,89,000 पक्के मकान बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने आज 12 में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के ग्रामीण के तहत बनाए जाएंगे।
1: 3,473 करोड़ रुपए की लागत से 2,89,355 आवास आज राजस्थान को समर्पित किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कृषि विभाग के अंतर्गत आरकेबी बाई और कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत 340 करोड़ 59 लाख रुपए की भी ये पत्र मैं आपके हाथों में राजस्थान की जनता के लिए सौंप रहा हूँ।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि उन्नत योजना के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 340 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि का स्वीकृति पत्र भी सौंपा। श्री चौहान ने ये भी कहा कि राजस्थान में 16 लाख लखपति दीदी बन चुकी है, अब 32 लाख और बनाई जाएंगी। मिलावटी कीटनाशक बनाने वालों पर लगाम लगाने के लिए अगले संसद सत्र में नया कानून लाया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि राजस्थान में इस साल वीबीजी रामजी के तहत गांवों में 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
1: अब ये विकसित भारत जी रामजी योजना आई है, और उस योजना में राजस्थान के भाई और बहनों, इस साल मार्च तक 7 महीने के लिए हमने 7,582 करोड़ रुपया दिए। 7,582 करोड़ भारत सरकार के, और 40% जुड़ेंगे राजस्थान के, तो 12,000 करोड़ रुपया 9 महीने में खर्च होना है गांव में।
0: श्री चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज 12 और झालावाड़ जिले को 1,258 करोड़ रुपए के 98 विकास कार्यों की सौगात दी। वहीं प्रदेश के 5 लाख पशुपालकों को 280 करोड़ रुपए की राशि भी उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। साथ ही सखी योजना के तहत स्कूटी वितरण और 12 में ग्राम श्री राज सखी मार्ट का लोकार्पण किया गया। प्रदेश के 309 निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी आज निकाली गई। इसके साथ ही 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाओं में वर्गवार आरक्षण की तस्वीर साफ हो गई। जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के लिए जिला कलेक्टर संदेश नायक और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा की मौजूदगी में लॉटरी निकाली गई। इसमें एससी वर्ग को 20, एसटी को 6 और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 30 वार्ड मिले हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 31, ओबीसी महिलाओं को 10, एससी महिलाओं को 7 और एसटी महिलाओं को 2 वार्ड मिले हैं। अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों में से 20 वार्ड अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति और 16 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, चूरू, झुंझुनू, बाड़मेर, डीग, अलवर, नागौर, फलौदी, करौली, भीलवाड़ा और पाली सहित अन्य जिलों में जिला कलेक्टर की मौजूदगी में लॉटरी प्रक्रिया पूरी की गई। आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के साथ ही अब संभावित प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों की चुनावी गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है।

0: कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना समाज का नैतिक उत्तरदायित्व है। श्री बिरला आज कोटा में राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प संवाद सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को समाज के विकास का मुख्य आधार बताया। श्री बिरला ने कहा कि महिलाएं और बालिकाएं पूरी आजादी के साथ आगे बढ़ सकें, इसके लिए सभी को मिलकर सुरक्षित वातावरण तैयार करना होगा।
1: आज हमारे बीच में हजारों महिलाएं महिला सुरक्षा का संकल्प के साथ समाज में अच्छे संस्कार, अच्छे विचार और एक ऐसे समाज के निर्माण की ओर बढ़ेंगे जहां हमारी संस्कार और संस्कृति हो, जहां महिला सुरक्षित भी हो और महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व भी करें। आज भारत के अंदर महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है और आजादी की पहली लड़ाई के साथ देश की आजादी के लिए और आजादी के बाद देश के निर्माण के अंदर महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है।
0: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेश को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभिभावक और शिक्षक की अनुमति लेकर मीडिया विद्यार्थियों से बात कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्राचार्य की अनुमति के बिना स्कूल में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। विद्यार्थियों की सुरक्षा और निजता को लेकर ये आदेश जारी किया गया है।
2: छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है और जो नाबालिग छात्र छात्राएं होते हैं, फोटो लेना, कोई भी प्रकार से माइक लेना, इसके पहले परमिशन जरूरी है। किसी भी समय कभी भी कोई भी आकर के संस्थान में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है और उनको निजता को बनाए रखना की जिम्मेदारी हमारे विद्यालय संस्था प्रमुख है उसको। और इसलिए हमने सबको कहा है कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो, उनका अधिकारों को हनन न हो, बाल संरक्षण अधिनियम भी यही कहता है। और इसलिए हमने कहा कोई भी व्यक्ति बिना किसी बात जाकर के इंटरव्यू लेगा, बच्चों की निजता भंग करेगा, बच्चों से अनावश्यक प्रश्न करेगा, यदि कोई बहुत आवश्यक है तो हमारा जो संस्था प्रधान है उसके लिखित में अनुमति लेगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। वे सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर बोल रही थी। उन्होंने कहा कि ये समिति बैंकिंग सुधार के लिए दिशा तय करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय बैंक इस समय मजबूत स्थिति में है। उन्होंने भरोसा जताया कि उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के बाद सरकार बैंकिंग क्षेत्र को और गति देने में सक्षम होगी। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम की आधिकारिक घोषणा की। उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। राजेश मंगल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं बीएल संतोष पार्टी के संगठन महामंत्री के रूप में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को सोशल मीडिया पोस्ट में बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हनुमानगढ़ में पुलिस ने नशीली और प्रतिबंधित दवाइयों की बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने बताया कि एक गोदाम से करीब 4 लाख से ज्यादा टैबलेट और नशीले कैप्सूल जब्त किए गए हैं। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के सप्लाई नेटवर्क की जाँच की जा रही है।
3: जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत नशा और नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तहत टाउन थाना पुलिस ने नशे की टैबलेट्स की एक बहुत बड़ी खेप पकड़ी है। एक अवैध गोदाम संचालित की जा रही थी जिसमें करीब 4 लाख से अधिक नशे की गोलियां बरामद की है। इसमें जो मुख्य किंगपिन है मनप्रीत सिंह, उसके साथ साथ उसके जो 2 गुर्गे जो उसके लिए काम करते हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। ये जो बरामद की है टैबलेट्स की खेप, इसका अनुमानित कुल कीमत मार्केट में करीब 17 करोड़ के आसपास है। जितने भी लोग शामिल हैं अनुसंधान में उनका हम पहुंचेंगे और सबको

0: नामजद करके आगे की अनुसंधान की जाएगी।
1: और अब मौसम। राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की गतिविधियां कमजोर हुई हैं, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4-5 दिन राज्य के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में छुटपुट बौछारें पड़ने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में मॉनसून की रफ्तार धीमी हो गई है, किंतु बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में 19 से 21 अगस्त के दौरान मॉनसूनी गतिविधियों के फिर से जोर पकड़ने के आसार हैं। अलवर, भरतपुर, दौसा और डीग सहित 8 जिलों में कल बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। जल संसाधन विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 7 जिलों में अत्यधिक बारिश हुई है, 20 जिलों में सामान्य और 14 जिलों में सामान्य से कम पानी बरसा है। छोटे बड़े 693 बांधों में से 39 लबालब हैं, वहीं 446 आंशिक रूप से भरे हुए हैं। प्रदेश भर में सावन के पवित्र महीने के तीसरे सोमवार पर आस्थामय माहौल बना हुआ है। इसके साथ ही नाग पंचमी का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। शिवालयों में भक्ति की भीड़ उमड़ी और जलाभिषेक किया गया, साथ ही भगवान शिव को बिल्व पत्र अर्पित किए गए। सवाईमाधोपुर जिले के घुश्मेश्वर महादेव, अर्णेश्वर, अमरेश्वर और सोलेश्वर महादेव सहित सभी छोटे बड़े शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बाड़मेर के चौहटन स्थित कपालेश्वर मंदिर और जसदेर स्थित शिव शक्ति धाम हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। उधर सलुम्बर में आज 3 दिवसीय कांवड़ यात्रा का समापन हुआ। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटिक क्षेत्र में श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप के बेकाबू होकर पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 20 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को झुंझुनू के बीडीके अस्पताल रेफर किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने त्योहारी सीजन को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आम लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मैदानी स्तर पर सक्रिय रहने और मिलावटी चीजों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने अधिकारियों को बिना पर्ची के मिलने वाली ओटीसी दवाइयों की सैंपलिंग को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी दवाइयों की नियमित जांच कर उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 12 में कहा, राजस्थान में वीबीजी रामजी के तहत इस साल 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश में 309 निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। केंद्र सरकार विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकिंग सुधार पर जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की रफ्तार धीमी हुई, अगले 4-5 दिनों में पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में छुटपुट बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से जोधपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं रामेश्वर बेड़ा। जोधपुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस उम्मीद राजकीय स्टेडियम में उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। संसदीय कार्य, विधि और न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। आरएसी प्रथम मंडोर रोड ने मार्च पास्ट प्रतियोगिता जीती। समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 77 प्रतिभाओं, अधिकारियों, कर्मचारियों और समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने व्यायाम प्रदर्शन किया और आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जोधपुर दौरे पर रहे। उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत और सिल्वर जुबली समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि कानून बंद किला नहीं बल्कि ऐसा खुला मंच होना चाहिए जहां हर नागरिक को न्याय और सुनवाई मिल सके। समारोह में यूजी, पीजी और पीएचडी के 176 विद्यार्थियों को डिग्रियां और 24 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। उन्होंने युवा न्यायविदों से न्याय व्यवस्था को सुलभ और पारदर्शी बनाने का आह्वान किया। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन से नियमित विमान सेवाओं की शुरुआत हुई। पहली उड़ान के यात्री चंद्रवीर सिंह को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने टिकट और स्वागत किट देकर रवाना किया। यात्रियों का राजस्थानी परंपरा, पुष्प

0: गुच्छ, बैंड और लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों से स्वागत किया गया। श्री शेखावत ने कहा कि 12 वर्षों के प्रयासों से एयरपोर्ट आधुनिकीकरण का काम पूरा हुआ है। उन्होंने बताया कि 2014 की तुलना में यात्रियों और विमान परिचालन में 10 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। जोधपुर की पारंपरिक मोजड़ी को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग मिल गया है। जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन और ग्राम विकास सेवा संस्थान को इसका प्रमाण पत्र सौंपा गया। करीब 200 वर्ष पुराने मोजड़ी उद्योग का घरेलू कारोबार लगभग 100 करोड़ रुपए और निर्यात करीब 10 करोड़ रुपए है। GI टैग से निर्यात और कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। इससे कारीगरों को बेहतर कीमत, फर्जी उत्पादों पर रोक और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण में मदद मिलेगी। ट्रेनों में बेड रोल उपलब्ध कराने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। जोधपुर की लॉन्ड्री में लागू व्यवस्था के तहत धुलाई के बाद AI कैमरे, बेडशीट, पिलो कवर और अन्य लिनन की गुणवत्ता जांचेंगे। दाग या खराब गुणवत्ता वाला लिनन अलग होगा। बेडशीट का डिजिटल उपयोग और धुलाई रिकॉर्ड भी तैयार होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने हाल ही में ट्रेन समय पालन में भारतीय रेलवे के सभी मंडलों में पहला स्थान हासिल किया। मंडल ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 100% और समग्र रूप से 99.07% समय पालन दर्ज किया। मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने इसे टीम वर्क, ट्रेन प्रबंधन और परिचालन दक्षता का परिणाम बताया। उपलब्धि में परिचालन, इंजीनियरिंग, विद्युत, सिग्नल, दूरसंचार और यांत्रिक विभागों के समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने अचानक होने वाली घटनाओं के दौरान मस्तिष्क के ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया से जुड़े विशेष नेटवर्क और ब्रेन वेव्स की पहचान की है। शोध से पता चला कि मस्तिष्क जरूरी संकेतों को गैर जरूरी सूचनाओं से अलग कर तत्काल प्रतिक्रिया देने में सक्षम होता है। अध्ययन के निष्कर्ष स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सहायक तकनीकों में भी उपयोगी होंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 9 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ड्रग टेस्टिंग लैब शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित प्रयोगशाला में 6 आधुनिक मशीनों से आयुर्वेदिक दवाओं की गुणवत्ता जांची जाएगी। इनमें एलोपैथिक दवाओं की मिलावट और सीसा, पारा, आर्सेनिक और कैडमियम जैसी भारी धातुओं की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। शुरुआत में किडनी, लिवर, हड्डियों और पाचन तंत्र से संबंधित दवाओं की जाँच होगी। इससे नकली और मिलावटी दवाओं की पहचान आसान होगी। इसके साथ ही जोधपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 12 मई कहो राजस्थान माय VBG रामजीरा तहत ई साल 12,000 करोड़ रुपया खर्च करिया जावेला। प्रदेश माय 309 निकायां रा वार्डां रा आरक्षण री लॉटरी निकाली ची। केंद्र सरकार विकसित भारत रो लक्ष्य हासिल करण सारू बैंकिंग सुधार माथे बेगी आला दर्जारी समिति बनावेला। और प्रदेश रा घनखर हल्का माय चौमासा री बिरखा मंदी पड़ी, आवता 4-5 दिन माए उगनी और उतराद हल्का माए छिटपुट बिरखारा आसार। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य माए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रातेत 3,473 करोड़ रुपया रा खर्चों 2,89,000 पक्का मकान बनावन रो ऐलान की नो है। वे आज 12 मई ओ ऐलान की नो
2: 3,473 करोड़ रुपए की लागत से 2,89,355 आवास आज राजस्थान को समर्पित किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कृषि विभाग के अंतर्गत आरकेबी भाई और कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत 340 करोड़ 59 लाख रुपए की भी ये पत्र मैं आपके हाथों में राजस्थान की जनता के लिए

0: 100 राउंड।
1: श्री चौहान कहो कि राजस्थान में 16 लाख लखपति दीदियां बन चुकी है और 32 लाख और बनाई जावेला। वह कहो कि कीड़ा मारण री मिलावटी दवाइयां बनावन वाला माथे लगाम लगावन सारू संसद रा आवता सत्र माए नुवो बिल लायो जावेला। केंद्रीय कृषि मंत्री कहो कि राजस्थान रा गावा माए ई साल VBG राम जी रातेत 12,000 करोड़ रुपया खर्च कराया जावेला।
0: अब ये विकसित भारत जी राम जी योजना आई है और उस योजना में राजस्थान के भाइयों और बहनों इस साल मार्च तक 7 महीने के लिए हमने 7,582 करोड़ रुपया दिए। 7,582 करोड़ भारत सरकार के और 40% जुड़ेंगे राजस्थान के, तो 12,000 करोड़ रुपया 9 महीने में खर्च होना है गांव में।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज 12 और झालावाड़ जिला ने विकास रा 1,258 करोड़ रुपया खर्च वाला 98 कामा री सौगात दीनी। वह राज्य रा 5 लाख पशु पालका रा खाता माए 280 करोड़ रुपया री रकम ये भेजी। इस आगे सखी योजना रा तेत स्कूटी दीरी जी और 12 माए ग्राम श्री राज सखी मार्ट जनता ने सौंपीचियो। प्रदेश रा 309 स्थानीय निकाया माए वार्डा रा आरक्षण री लॉटरी आज निकाली जी। इस आगे 10 नगर निगम 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकावां माए वर्गवार आरक्षण री तस्वीर साफ की है। जयपुर नगर निगम रा 150 वार्डा सारू जिला कलेक्टर संदेश नायक और नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा री मौजूदगी माए लॉटरी निकाली ची। इनमें अनुसूचित जाति तबका सारू 20, अनुसूचित जनजाति तबका सारू 6 और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC सारू 30 वार्ड आरक्षित करी चिया है। सामान्य वर्ग री महिलावां सारू 31, अन्य पिछड़ा वर्ग री महिलावां सारू 10, अनुसूचित जाति री महिलावां सारू 7 और अनुसूचित जनजाति री महिलावां सारू 2 वार्ड राखी चिया है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर, अजमेर, चूरू, बाड़मेर, डीग, अलवर, फलौदी, भीलवाड़ा और पाली समेत न्यारा न्यारा जिला माए जिला कलेक्टर री मौजूदगी माए लॉटरी निकाली ची। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहो है कि महिलावां और टाबरियां री हिफाजत तय करनो समाज री नैतिक जिम्मेदारी है। वे आज कोटा माए राखी जिया राज्य स्तर रा महिला सुरक्षा संकल्प संवाद सत्र माए बोल रहा है। श्री बिरला महिलावां ने मजबूत बनावण ने समाज रा विकास री बुनियाद बतायो। लोकसभा अध्यक्ष कहो कि महिलावां और टाबरियां रो पूरी आजादियों आगे बढ़वो ते करण सारू सगला ने मिलर सुरक्षित वातावरण तैयार करनू वेला।
2: आज हमारे बीच में हजारों महिलाएं महिला सुरक्षा का संकल्प के साथ समाज में अच्छे संस्कार, अच्छे विचार और एक ऐसे समाज के निर्माण की ओर बढ़ेंगे जहाँ हमारी संस्कार और संस्कृति हो, जहाँ महिला सुरक्षित भी हो और महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व भी कर रही है। आज भारत के अंदर महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है और आजादी की पहली लड़ाई के साथ देश की आजादी के लिए और आजादी के बाद देश के निर्माण के अंदर महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहा है।
1: शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अखबार, टीवी और रेडियो वाला रे दाखिल वेवण माथे कोई रोक नहीं लगाई ची है। वह कहो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कानून जारी करी जिया हुक्म ने गलत तरीकों बतायो जा रियो है। शिक्षा मंत्री कहो कि विद्यार्थियों रमायता और अध्यापकों की मंजूरी लेर मीडिया विद्यार्थियों सागे बातचीत कर सके है। वह कहो कि शाला प्रधान री मंजूरी बगैर स्कूल माए बाहर रा लोग दाखिल नहीं वह सकेला।
3: छात्रों की सुरक्षा का जिम्मा हमारा है और जो नाबालिग छात्र छात्राएं होते हैं फोटो लेना, कोई भी कार से बाइक लेना, इसके पहले परमिशन जरूरी है। किसी भी समय कभी भी कोई भी आकर के संस्थान में बिना अनुमति घुस जाए, कुछ भी करे, उससे हमारे बच्चों की निजता बाधित होती है और उनको निजता को बनाए रखना की जिम्मेदारी हमारे विद्यालय संस्था प्रमुख है उसको। और इसलिए हमने सबको कहा है कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो, उनका अधिकारों को हनन न हो, बाल संरक्षण अधिनियम भी यही कहता है। और इसलिए हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी बात जाकर के इंटरव्यू लेगा, बच्चों की निजता भंग करेगा, बच्चों से अनावश्यक प्रश्न करेगा, यदि कोई बहुत आवश्यक है तो हमारा जो संस्था प्रधान है उसके लिखित में अनुमति लेगी।
1: समाचार आप

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। केंद्र सरकार विकसित भारत बनावण रो लक्ष्य हासिल करण सारू बैंकिंग सुधार माथे विचार बाबत बेगी आला दर्जारी समिति बनावेला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में आ जानकारी दीनी। वे सरकारी बैंकां रा दो दिन रा सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र रे मौके बोल रही है। वित्त मंत्री कहो कि भारत रा बैंक मौजूदा दौर में मजबूत हालत में है। राज्य री पहली वाली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भारतीय जनता पार्टी री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाई ची है, जबकि राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सतीश पूनिया ने पार्टी रा राष्ट्रीय महासचिव बनाई चिया है। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज पार्टी री नुवी राष्ट्रीय टीम रो आधिकारिक ऐलान कीनो। उदयपुर रा सांसद मन्ना लाल रावत ने अनुसूचित जनजाति मोर्चा रा अध्यक्ष री जिम्मेदारी दीरी ची है। इस आगे राजेश मंगल ने राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाई चिया है। पहली वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रीय महामंत्री री जिम्मेदारी सौंपी ची है, जबकि बी एल संतोष पार्टी रा संगठन महामंत्री बनिया रह वेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय कार्यकारिणी रा नुआ ओहदादारा ने सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए बधाई और शुभकामनावां दीनी है। हनुमानगढ़ में पुलिस नशीली और रोक लगायोड़ी दवाइयां री मोटी खेप बरामद कीनी है। एसपी बी आदित्य बतायो कि एक गोदाम 4,32,000 नशीली गोलियां और कैप्सूल जब्त करी चिया। इस मामला में 3 जना ने गिरफ्तार करी चिया है, जहां पूछताछ रे जरिए आगे री जांच करी जा रही है।
1: जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत नशा और नशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तहत टाउन थाना पुलिस ने नशे की टैबलेट्स की एक बहुत बड़ी केप पकड़ी है। एक अवैध गोदाम संचालित की जा रही थी, जिसमें करीब 4,00,000 से अधिक नशे की गोलियां बरामद की है। इसमें जो मुख्य किंगपिन है मनप्रीत सिंह, उसके साथ साथ उसके जो दो गुर्गे जो उसके लिए काम करते हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। ये जो बरामद की है टैबलेट की खेप, इसका अनुमानित कुल कीमत मार्केट में करीब 17 करोड़ के आसपास है। जितने भी लोग शामिल है अनुसंधान में उनका हम पहुंचेंगे और सबको नामजद करके आगे की अनुसंधान की जाएगी।
0: अरबे मौसम राज्य में चौमासा री बिरखा फिलहाल कम पड़ की है, हालांकि कठे कठे हल्की मझला दर्जा री बिरखा वह रही है। मौसम विभाग रे मुजब आवता 4-5 दिन प्रदेश रा उगनी और उत्तराद उगनी हल्का में छांटा छिड़का रा आसार है। राज्य रा आतुनी हल्का रा जोधपुर संभाग में चौमासा री बिरखा कम पड़ की है, हालांकि बीकानेर संभाग और शेखावाटी हल्का में 19-21 अगस्त बीच बिरखा माए ओजु तेजी आवण री संभावना है। ई बीच अलवर भरतपुर दौसा और डीग समेत 8 जिला माए काल बारिश रो येलो अलर्ट जारी करी चियो है। जल संसाधन विभाग ने मुजब प्रदेश माए हाल तय 7 जिला माए चोखो में बरसियो है, जबकि 20 जिला माए सामान्य और 14 जिला माए सामान्य कम बिरखा भी है। राज्य रा छोटा मोटा 693 बंधा मायू 39 पूरा भर गया है, जबकि 446 थोड़ा घना भरिया है। प्रदेश में सावन महीना रा तीजा सोमवार ने आज आस्था सागे नाग पंचमी रो त्योहार ही मनायो जा रियो है। ई मौके शिवजी रा मिंद्रा माए मोटी तादाद माए भगत पुग्या और भगवान रे जल और बील रा पत्ता चढ़ाया। सवाई माधोपुर जिला रा घुष्मेश्वर महादेव, अरणेश्वर, अमरेश्वर, अरसोलेश्वर महादेव समेत न्यारा न्यारा शिव मिंद्रा माए जात्रुआ रो तांतो लाग्योड़ो है। बाड़मेर जिला माए चौहटन रा कपालेश्वर मिंदर और जसदेर रा शिव शक्ति धाम मा थई हर हर महादेव रा जयकारा गूंज रिया है। सलूम्बर माए आज 3 दिन री कावड़ यात्रा पूरी हुई। सुखिया सोमवार रे मौके उदयपुर रा गुलाब बाग माए खास मेलो भरियो। ई बीच झुंझुनू जिला रा उदयपुर वाटी हल्का माए जात्रुआ री एक पिकअप बेकाबू फेर पलट जावणु एक जना री मौत वेगी, जबकि 20 जना जख्मी वेग्या। घना जख्मी लोगा ने झुंझुनू रा बीडी के अस्पताल माए भर्ती कराई चिया है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरु सुन ली रहो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 12 माए कहो राजस्थान माए VBG रामजी राते ई साल 12,000 करोड़ रुपया खर्च करया चावेला। प्रदेश माए 309 निकायां रा वार्डा रा आरक्षण री लॉटरी निकाली ची। केंद्र सरकार विकसित भारत रो लक्ष्य हासिल करण सारू बैंकिंग सुधार माथे बेगी आला दर्जा री समिति बनावेला। हर प्रदेश आग

0: कणखर हल्का माय चौमासा री बिरखा मंदी पड़ी हिंसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार
1: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाला सेंग भाया ने बाया ने और अपना छोट किया टाबरिया ने आपरे प्रेम भैरा गणा हेत और गणा कोट जू राम राम। किसान भाया देखो टेम टेम ज्यू अपने खेत में कोई भी काम हुआ है तो आप अपने खेत ने टेम टेम हमाले ही करा और हमालन की आई है कि भी आपने हमाल हमाल जद भी किसान जद आपरा खेत रे माय ने जाए और खेत ने हमाले तो देखो किसान को भी जीव हो रो है और आपने किसान ने यानी आपरा मालिक ने देकर खेत को भी जीव थोड़ो बहुत तो हो रो या ही करे है। तो देखो एक आपस में है जो को बहुत ही और जो को संबंध है वो दीख तो संबंध को नहीं है खेती और किसानी को पण वो संबंध है जरूर। और इनके वास्ते देखो अब के देखो आप जन करने भी देखा है या जन करने भी पूछा तो एक ही जवाब मिले भाई बरसात थोड़ी माड़ी है। तो किसान भैया हगड़े ओ हाल है कटी कटी है जो बिर का छोकी वही है और कटी कटी है जो अब के मामलो थोड़ो धीमुई है यानी कोई नाडी खाबड़ा है जगह बरीजा भी को नहीं। और कई किसान भाई आ भी कह रिया है जने आप खेत आला पौंड बना यानी फार्म पौंड जकई है जो हाल खाली बढ़िया है। तो देखो शाह आपने तो आई है कि सरकार भी कदगी आपने आई आपने निर्देश भी देवे आपने अभी को पालन भी करना चाहिए कि भाई आपने जल संरक्षण करना ही चाहिए यानी आपने पानी बचाना है तो जिंदगी बचानी है और लंबो टाइम बिताना है। तो किसान भाई इन वास्ते सबों सबों और बढ़िया उपाय वो है जखा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है जखा मायने आपने अंडरग्राउंड पानी उपलब्ध है यानी बांका किस्मत है तो मैं किस्मत ने और लंब चमकाने वास्ते लंबो बनाने वास्ते आप किसान भाई का कर सके यानी बूंद बूंद सिंचाई अपना सके टपक सिंचाई तो इनकी आपने पूरी जानकारी रहनी चाहिए यानी यूं आप है जो ड्रिप संयंत्र लगा लिया तो किसान भाई है जो 70 लेर यानी 75% तक भारी पानी की बचत कर सके। और बचत के साथ साथ फायदो वो है किसान भैया की सरकारी में है जो आपने सब्सिडी भी मिला करे सरकार की तरफ तो भी को भी आप फायदो ले सके यानी आपने डबल फायदो है। तो जत्ते भी बात आवे फायदा की तो जरूर आपने लेनो भी चाहिए क्योंकि पानी बचाने के सिवाय यूं मोटो फायदो तो और बार का टाइम में आपने लागू को नहीं है। तो ई अपन देखो अगर आप बूंद बूंद लगा लिया तो भी आपने फायदो कहीं पहली बात तो जकी आप फसल बोवा सीधो पानी है जो 100% पानी बिट्टी टोपो पड़े और वो पानी है जो भी पौधा नहीं मिले जगह ना आप उगाना चाहवा यानी दूजोड़ा जगह खरपतवार हारे उगे बाने पानी दे उनकी कोई जरूरत नहीं है तो बे उगी कटू यानी माड़ो महड़ो मुर्दो है जो खरपतवार तो यही बढ़ जैसी क्योंकि बिना पानी भी कौन मिले तो वो उगे लो कटे छू। और भी एक फायदा वो भी है कि पानी की गुणवत्ता में भी अपन सुधार हो क्योंकि एक तो लगातार आप पानी काटा और काट काट पानी ने खारो कर दिया तो किसान भाई जो टोपो टोपो पानी जावे ना पौधा ने तो पौधा ने पूरा पानी मिल पोक रहे पानी की गुणवत्ता भी बनी रहे। इनके साथ ही आप पानी में मिलायर भी में है जो बूंद बूंद के मायन खाद है या उनको उर्वरक है या चढ़ाए सका तो वो भी एक वेस्ट कौन जावे यानी एक आता हूँ फेंका या बीजा तो अपन देखो पूरा खेत में बीज में पड़े और जो इनके मायने कहीं है कि सीधो घोल अपन चढ़ाए थे तो जो को बिंकी मात्रा सीधी जट पहुँचनी चाहिए यानी अपनी फसल के मायने पहुँचनी चाहिए बस सीधी बिंक नहीं उगे। किसान भैया आप अपनी बात तो रहा कहाँ जारी बिहू पहले सुना एक काम की बढ़िया सी बात।
1: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेतीबाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम

0: 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेती बाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का एसडी कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान,
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: हाँ तो किसान भैया, आप बात कर रहे हो बूंद बूंद होने वाला फायदा की, तो देखो फायदा की बात तो आप होगी, अब बात करा कि इन है जो को किन किन प्रकार को जो को किसान है भी को फायदो ले सके। तो देखो किसान भैया, थाके करने कम कम 0.2 हेक्टेयर कृषि अपने करने होनी चाहिए जो कि सिंचित भूमि हुए, और सिंचित रहे वास्ते आप या तो कुआ होना चाहिए या ट्यूबवेल होनी चाहिए या पानी को जो को फार्म पौंड है वो होना चाहिए, क्योंकि बेनी योजना आप पावे क्यों, तो ये चीज़ें होनी जरूरी है। और इन योजना को लाभ जो को है अधिकतम आप 5 हेक्टेयर भूमि तक ही ले सका हाँ, यानी यूँ ऊपर अगर जमी है तो आपने फायदों को नहीं, यानी आपने खुद नहीं पज लगानो पड़ी आपने पैसों, और इन वास्ते जगह डॉक्यूमेंट मांगे आप दस्तावेज, बेम आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और खेत की जमाबंदी की नकल चाहिए, और सिंचाई स्रोत उनको यानी प्रमाण पत्र, यानी आप बिजली बिल भरे हाँ तो वो बिल आप दे सका, मिट्टी पानी की जांच की रिपोर्ट भी आप मांगा करे, तो मिट्टी और पानी की जांच आपने किसान भाई टेमो टेम कराता ही रहे, और जकी आप कंपनी को लगावा बिको कोटेशन यानी बिको बिल आपने देना पड़े। और इन वास्ते कोई किसान भाई अगर फायदो लेने चाहे तो पास में कोई ई मित्र है भी मत जाहिर इनको आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन कर सके है। तो आ तो हुई किसान भैया आप के बूंद बूंद सिंचाई की बात, और आज देखो आप बात करी हाँ गांव आकेड़ी बी का किसान हाँ नरेंद्र भाई बहु जकी बात करी, मारे बहु जकी भेंट हुई बा था तई करा पूगती। किसान भैया जब भी आपने टेम मिला कर है तो टेम टेम सारू आप कोई गांव गौंतरे जाए अपना किसान भाइयों मिल और बहु जकी बंतर करा, तो आज आपने मिला है एक किसान भाई दिखे है बहु खराब बंतर। राम राम सा।
4: राम राम सा।
3: नरेंद्र भाई किसो गांव है थको?
4: माको गांव आकेड़ी बी है सा।
3: आकेड़ी बी में काई काम कर रिया हो?
4: आकेड़ी बी में अबार तो बस खेती बाड़ी को करा काम।
3: हाँ।
4: मूंग गुआर बाजरी पूड़ा है।
3: और अब के बरसात दशात क्या कही है नरेंद्र भाई?
4: बरसात से देखो सा माका ने तो बरसात बढ़िया है।
3: बढ़िया है।
4: हाँ।
3: कती बार होगी चौकी बरसात?
4: चौकी बरसात देखो 2-3 बार होगी सा।
3: 2-3 बार होगी जना कहीं कहीं हाका बड़ी है, कती कहीं जमी है थे?
4: अब देखो सा जमी गणित को नहीं 50 बीघा भवा।
3: हाँ।
4: और अब गए ज्यादातर गुआर बड़ो है।
3: हलम गुआर ही है?
4: हाँ गुआर ज्यादा है।
3: एर मूंगड़िया?
4: मूंग है जका तांग देख लो 9-10 बीघा मूंग बड़ो है।
3: 10 बीघा मूंग है, बाकी अगलो ही गुआर।
4: हाँ अब के कहीं गुआर की खेती थोड़ी ज्यादा है माँ गाँव का नहीं।
3: हाँ। तो थाका ने देखा तो गुआर तो बहुत ही छोका है एकदम, एक हरी का उबा है काई बात है ता, मतलब लाल साल में यान को या अब की हांत रहो या?
4: अब देखो सा लाल साल के मुताबिक तो अब के गुआर थोड़ो ज्यादा ही ठीक लग्यो माने।
3: घणो ठीक है।
4: हाँ जगह 75 गुआर है वे भी बहुत तगड़ा है,
3: और देखण में तो काटा का गुआर है नरू भाई है तो बहुत ही लंबा, यानी आपा जता था तो उगा महीने फिर तो आदमी को दिखे।
4: हाँ बिल्कुल सा मारे खुद के गुआर भाई है तो मऊ ज्यादा ही है।
3: हाँ हाँ तो इनके फड़िया आने बस गति कहीं लगी हल्की कम लगी गई?
4: हाँ फड़िया देखो सा अब के फड़िया जोर है फुल फड़िया लगोड़ी है।
3: फाल आयोड़ो है ताजो?
4: फाल आयोड़ो है।
3: तो इम थे जकी टाइम भाई जो ना बीज कहीं कोई खरीद रह जाया के कोई घराड़ो ही काम लियो?
4: नहीं मैं तो बीज सा घराड़ो ही काम लियो।
3: घराड़ो ही काम लियो।
4: हाँ
3: तो इनकी बढ़िया पैदावार उजी पहले ला रहे वही भाईड़ हो गई?
4: हाँ लार ओई बेवड़ हो रे बढ़िया उतरे भी है कम आके थोड़ी जमी है बढ़िया जगह।
3: और एक अपन देखा भाई कोई तो है जगह बाजार

0: इधर थैलियां जावे और कोई जो है जो घराड़ों में काम चला ले तो बीन की पैदावार में की फर्क पड़ेगा।
1: अब देखो सा, नयो बीज को फर्क पड़ी है और एन आपा घराड़ो बावा तो भी आपा ने ठीक पैदावार देवे, बीघे को उतर जावे 2-2.5 क्विंटल। और एन थैलियाणो देखा जरा, थैलियाणो कहीं पहली बार बावा जरा तो बढ़िया उतरे और वहां दोबारा बावा जरा वहां बोई कम उतरे। हाँ
0: सो घराला जीशी उतरे। हाँ बहुत बस बात तो वैसे ही घर को बीज उजा सकूँ
1: हाँ घर को भी सोचा,
0: थोड़ा घणो ही फर्क रहे।
1: हाँ थोड़ा घणो ही फर्क रहे पैदावार में और बढ़िया पैदावार देवे और भी घर को बीज है तो ही।
0: तो ये मैं पूछ
1: हाँ
0: काई निनान निनान कड़ा या के बार देखा तो एकदम हले तगारी खेत पड़िया है था के तो काई के कोई स्प्रे वगैरह करियो।
1: नहीं सर, मैं निनाड़ कौन का जा, मैं तो हल्दी कर रही था।
0: हाँ हलनी करी।
1: हाँ घर को साधन हो जरवा, निनाड़ कौन का जो गए हल्दी कर ली।
0: हलनी क्यों करी
1: हल्दी सर देखो आम पाके तो जगह हड़ू बा बे हुई हल्दी करी मैं तो। हाँ
0: हड़ों भाया जखों पाचे आपन हलनी करनी पड़े दूजा हड़ों कौन है।
1: दूजा हाड़ू देखो एन हूँ तो जे बरवा कहीं थोड़ा उम्रो मरण को डर रहे, गुआर बूंटा पड़ जावे
0: उम्र बांधे भाई
1: और आपा जका हाड़ू बाल आप देव बढ़िया रहे। हाँ
0: बेहू करा तो हूत हूत।
1: हूँ तो हूँ देवे उम्रा पर। हाँ
0: हाँ मिलाए देवे एकदम हड़ियो तगार कर देवे खेत ने तो टेट रेट चला लो कहीं।
1: हाँ टेट रेट बना जा।
0: हाँ तो बढ़िया बात है देखो युवा किसान हो और ट्रैक्टर भी चला लियो और चौकी खेती भी थे तो कर में लियो बहुत बढ़िया फायदो भी था ने वेला इस बार तो बढ़िया
1: हाँ
0: फसल है
1: सर
0: था कि इम कोई स्प्रे वगैरह करियो कहीं और।
1: इस पर देखो गुआर में कोई माचर वगैरह हुई हो देखो इस पर एक एकड़ तो करियो वहां पर। और फालान तो कोनी में फालान दूई तो कौन सा था जो कहीं ये बडरा का उतरे के फाल तो बाहर हो आया करे।
0: बाहरों आया नहीं
1: हाँ
0: किस बाहरों बाजन आवे।
1: अब आतू उनको बाहर बाहर जर के लोग के बावे फाल। हाँ
0: हाँ आले 2 दिन यहाँ काल को या तुम बाजे थे आले जो जना तो फायदो ही है
1: हाँ फायदो ही ऐसा।
0: तो अब बार थे धान में दुई छांटी कोई जीव की तो थाने
1: हाँ
0: जीव कहीं कटी फिर वो दिखियो ही में के एले ही छांटी।
1: ओ जीव दुई छांटी जरा एक लीला कलर को छोटो सो माचा रहा कर जो
0: हाँ
1: को गाइडा फाल लावे जरा भी फूल पर बैठे बाद का मुंडा बन जावे जवा फाल भजा कम लागे वो छांटन आई है थोड़ा फाल का जगह मुंडा खुल जाए फाल तगड़ो आवे फलीन सो की लागे।
0: जनपद दवाई कहीं थाने याद ही के आज आई जाए अपन छाड़नी है कोई कृषि विशेषज्ञ ने पूछो कि कटू पूछ ले या।
1: अब देखो सा दो ही माके का ही है कि मैं रेगुलर एक दो ही काम में लेवा देखो
0: हाँ
1: बाद दो ही का सा ठीक भी है फर्क पड़े भी हूँ।
0: है नहीं
1: हाँ
0: जन था तो खुद ही जानकार हो
1: हाँ
0: देखो जानकार ने तो खेती करनी हो रही
1: हाँ
0: अनजान ने तो खेती में जो दी भी हूं तो की वही को नहीं हक बक्यू जो कहीं करूं
1: बिना
0: भाणो
1: बिना बाणो ही को ना।
0: आओ को नहीं के करूं कहीं।
1: हाँ
0: हाँ यार गुआर के महीने बाढ़ दियो तो बाहर निकलियो तो कुछ रही कुछ रहे।
1: सही
0: गुआर की
1: बात
0: कम
1: है
0: भी
1: बात।
0: खाओ गणी नरू भाई और
1: हाँ
0: एम गुआर में जब आप स्प्रे करा तो अपन की
1: हाँ
0: सावधानी रखनी पड़ेगी।
1: सावधानी देखो सा अगर आप दुई तगड़ी जावा तो देखो हाथा पगड़ा को रे मुंडा को जा रहा पड़े के साथ देखो कहीं अगर ज्यादा पावरफुल दुई जावा तो कटी नाक आग में नहीं जा चढ़ जावे तो थोड़ो खतरो रहे ये बात है। सावधानी हुई छाटनी रात का देखो इतनी मतलब दुए कोई कोई थोड़ी कम मिल जावे पावर की जकी वाई छाटा यहाँ।
0: हाँ, तो भी है जो विषय ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपने किसान भाई ने वो ध्यान जरूर रखना कि जद भी अपन दुई
1: हाँ बिल्कुल
0: छांटा।
1: सा ध्यान रखना चाहिए और आजकल का ही है कि ये दवाइयों एलर्जी भी बहुत हुए लोगों के। हाँ
0: हाँ चामड़ी संबंधी कोई एलर्जी हो जावे आंखें में चश्मो राखनो मुंडा पर मास्क राखनो
1: बिल्कुल सा
0: एन हवा के बाहर के भंग है जो को दुई उल्टी दिशा में छांटनी अपन जी बाहर है तो अपन भी बाहर आ हम नहीं छांटना है
1: हाँ बात तो
0: क्योंकि
1: बात है सर।
0: हम छांटा जाना बहुत उड़ उड़ अपन मई नहीं आए
1: हाँ
0: तो ये बात तो अपना किसान भाई ने बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत ही है। और अब
1: हाँ
0: था
1: सर
0: के कता जब फड़े लगिया बाद में किता 2 महीना ला गया पाच फसल पाकड़ में।
1: अब देखो सर गुआर की तो फसल आया है कि आ थोड़ी लेट आया करे जितने पूरे नहीं होके बीते की बड़ा अंदर मतलब हो रहे।
0: यार औरों की दवाई वही को छिड़काव इम करना पड़ी कि अब की जरूरत कौन है।
1: नहीं एक करे करे कोई अगर कोई रोग आ जाए के भाई माचना को ज्यादा डर रहे भी कुछ हार जाए भी बाद में कोई दिक्कत कोनी।
0: और गुआर में कोई गुआर कटन की बड़न की एन की समस्या तो कौन है।
1: नहीं सर बिल्कुल असमस्या कौन।
0: कोई कोई के है कहीं।
1: हाँ कोई कोई के है बाकाई है के उदय की समस्या है उदय लागे भी टाइम में।

0: કિસાન બહેન એક વાત કહેવી છું કે તે બીજ જીકી ટાઈમ બહુ હતો બે કઈ એક દોઈ આયા કરે
1: બી ઉપચાર કર લે ભાઈ
0: બીકો બીજા કો ઉપચાર કર બી બાદ ની ભણ તો કઈ ઉદય કો ના
1: બહુત હી બઢિયા બાત બતાઈ હો બહુત હી આપણે કિસાન ભાઈ ને ફાયદા કી બાત બતાઈ હો નરુભાઈ કે ભાઈ બીજ ઉપચાર કર આપણ જદ બીજ ભાવા તો કઈ પ્રકાર કા રોગ આપણ હેજો કો પહેલી હેજો કો પાણી વાળી પાળ માંડ્યા પછી કાઈ હે કી ખતરો કોણ રહે જકો વાત હે આપણને પહેલી સુવિધા મળી જાવે
0: બિલકુલ સા
1: હા ઓર મૂંગા મહિને કઈ હાલચાલ હે મૂંગ કેડા કઈ હે ફાલ હાલ આયો કઈ
0: મૂંગ બઢિયા હે સા ફાલ ઉડો હે ફળિયા બઢિયા હે
1: હા
0: ઓર અગે તો મૂંગ ભરડા જકા તો અવણ પર હે અબે
1: અવણ પર હી હે
0: हां
1: कितना जा रहा आएगा भी मैं
0: ताके 15 20 दिन की और जेज है और बाद में मार्केट मूंग आयोडे
1: 15 20 दिन ने मूंग अजीर अबार जो औरु बरसात की जरूरत है के अब कोई नहीं
0: नहीं अब मूंगा ने तो जरूरत कोनी थांग बसा
1: घणी जरूरत कोनी
0: कोनी
1: जणा सही बात है यानी 15 दिन पच अगर बरसात हुए तो मूंगा ने तो नुकसान ही है कुल मिलाकर
0: हां नुकसान है सा देखो लालीवा नुकसान हुयो मूंग काला होगा
1: हां हां
0: तो बिना के लाली साल ना अब के नहीं हुए तो ठीक है भगवान हम देख ले
1: મારવાડી
0: તો રીપર રીપર બોલ્યા કરે રીપર હું બઢિયા બાટ દેવે
1: રીપર કટું લેણી પડે
0: अब रीपर देखो सा हम पाके माके सारे कुचेरा 70 शहर है जो भी मान मिल जे कटे किसी उद्योग के मान
1: हां कृषि उद्योग
0: यंत्र और माके गांव के मान भी कासा राके लोग
1: अच्छा लोग राके जगह बे बाड़ दे भाई
0: हां बे बाड़ दे
1: बे पछ किया काई हिसाब बाड़ किराए रे लेवे
0: हां किराए लेवे सा बे दिगे का हिसाब लेवे कोई दिगे का 500 लेवे कोई 400 में बाड़े
1: हां हां देखो ध्यान अबार के भाई तेल को थोड़ो मंगो ही हो तो बस भाव ही बदलला
0: हां बे बावा के हिसाब में दे अब के देखा कहीं माम तो देखा लाली बार तो 500 में काटे बा अब के हाल देखा कटाव तो कहीं रेटा हुए
1: हां 100 रुपए बदला और तो कहीं
0: हां तेल मंगू हुई जर बत रेटा तो बड़ी
1: हां कायदो है देखो न रुपए
0: हां
1: घर तो बड़द मार कहती तो करी जको ने
0: हां
1: घाटो खार कोई कहती करे कोन कहीं
0: सही बात है सा
1: सही बात है बण है जो खेती है कहीं है की कहीं है की छो की फसल देखन जणा तो एन जीव होर हुए
0: हां बिल्कुल सा जीव खेती दे खेत में जावे जरा जीव हो रहे हुए
1: हां पण करे छे काई एक रोग है इनको लाग जे पछ एन जीव दुख पावे
0: हां जण
1: किया करे भाई चौकी खेती बाड़ी दे के गर्व किया किसान अजहु झोला बहुत है घर लाए तब जान यानी खेती में तो धान घरे आवे नहीं जणे किसान को जीव दापे
0: जी बिल्कुल
1: तो नरु भाई बहुत ही बढ़िया थे बातें बताई और अपना किसान भाइयों का ही संदेश देने चाहो जो कहूँ किसान भाइयों भाई खेती करण में भी आसानी हुए खेती इन तरीकों करे कि भाई बान की फायदा हुए या कोई ने पूछताछ कर विशेषज्ञ राय ले करे तो बहुत बढ़िया रहे तो कहीं राय
0: किसान भैया ने एक ही बात कहनी है कि भाई देखो बढ़िया क्वालिटी को बीज लेवो और बीज बोन पहली ये खास बात को ध्यान रखो कि बीज को बीजोपचार बहुत ही जरूरी है
1: बहुत
0: अगर बीजोपचार नहीं करो तो उदय लाग जाए बढ़िया फसल हुई तो ही बाहु दही मायनू मायनू खाए जरा की फसल आप हाथ आवे को नहीं तो बीजो उपचार बहुत जरूरी है
1: बिल्कुल नरु भाई थे इतनी बढ़िया बात भाई आपने किसान भाइयों ने बहुत बढ़िया फायदा वेला आप रो गणो और गणो धन्यवाद
0: जी धन्यवाद
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए श्रोताओं अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेती बाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं तो नोट कीजिए हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582 और हाँ आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।

किसान भैया, देखो बातें भी हुई, बातें बहुत ही फायदा हुई। अब थाने एक बात अभी बता दूं, देखो किसान भैया, कपास की खेती अपना किसान भाई कर रहे है, और कपास में इन टाइम में आपने देखो, क्योंकि अबार बादला ऊपर छाई जुड़ रही है, तो इनमें है जो कीट पनपिया करे है, यानी रोग बढ़ने का चांस रिया करे है। तो कपास के मायने रस चूसने वाला कीट है, सुंडी है, यान का है जो छेदक यानी छेद करने वाला कीट है, यान का लाइक क्या करे। सब पहली तो बात करें भाई, रस चूसने वाला है वह है सफ़ेद मक्खी है, हरा तेला है, माहू या चेपा के वो है, और है थ्रिप्स। ऐसे का छोटा छोटा भूरा यान का वह पत्तियां के निचला हिस्सा के माते ला अगर वह पिया करे, और ए रस चूसिया करे, यानी पत्ता पत्ता मातू रस चूस ले, तन्ना मातू रस चूस ले, और पेड़ ने है जो को खराब कर दिया करे। ए तो रस चूसने वाला कीट यार, अबे बात करा सुंडी और छेद कीट जगह छेकला कर दे, अपन देखा नहीं पत्ता ने है जो को छेद गिरे डला दे, यानी आपन पत्ता को रूप है जो बिगड़ जावे। और सुंडी की बात करा तो गुलाबी सुंडी है, अमेरिकन सुंडी है, और एक चित्तीदार सुंडी भी हुआ करे। एक कहीं करे है कि कपास का जगह डोडा हुआ है, बट डोडा महीने जाहिर बैंक जो को बीज हुआ है भी, बीज ने खा जाया करे, बिंकी गुणवत्ता है जो पूरी तरह नष्ट कर देवे, और डोडा ने एक जगह गोल है जो थोतो तो बनाए दे, और यानी अपन उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया करे। इनके अलावा कुछ थोड़ा सा कीट और भी है जिन्हें अपन मिली बग है। मिली बग तो अपन देखा कि अपन एक सफ़ेद तरह को तना के माथे चिपियोड़ो अपन दिख जाए करे मोटो चौक, वो कहीं क्या करे सफ़ेद मोम की परत बना और भी रस न चूसा करे, और ज़्यादातर यह है जो ग्रुप में दिख के अपन, यानी एक साथ ही निरकला जगह तना के माथे चिपियोड़ा रिया करे, तो बने आप हेटा भी बढ़ सकते हो बिन वास्ते बढ़िया कीटनाशक का उपयोग। आप विशेषज्ञों जानकारी ले भी करना आपने चाहिए। एक लाल कपास बगावे है जो को खुला डोडा वे नहीं, यानी आप डोडा फाटन के बाद में बी के बाद में वो है जो महीने बीज को है रस चूसर बिना गंदो कर दिया करे, तो कपास की क्वालिटी यानी गुणवत्ता में खराबी आ जाए करे, तो इन आपने उत्पादन माते यानी पैदावार माते फर्क पड़िया करे। तो किसान भाई देखो, बातें तो आज आप घनी बढ़िया बढ़िया करिए, और सावण को सोमवार भी आज है, तो किसान भैया मारो भी मन करे कि आप किसान भैया के साथ साथ महादेव जी को भजन सुना और मनोरंजन को फायदा लेवा।

तो महादेव जी को बहुत ही प्यारो भजन मारा किसान भैया ने दाय आयो वेला। और देखो किसान भैया, आज बतावा थाने नागौर मंडी रा भाव। नागौर मंडी रे मायने किसान भैया मूंगा रा भाव है जो 5,500 रेर नीचे, 5,500 ऊपरला भाव 7,500 तक नागौर मंडी रा मूंगा रा भाव है। साथ ही गंवार का भाव है जका 5,100 रुपयों लेर 5,750। तारामीरा रा भाव 5,800 रुपयों लेर 6,200। सरसों रा भाव 8,000 और जीरा रा भाव 16,000 लेर 20,000 तक है। इनके साथ ही दाना मेथी की बात करा तो किसान भाया 6,000 6,500 दाना मेथी रा भाव रिया। इस गोल का भाव 9,000 लेर ऊपरला 12,000 तक रिया। सूंप का भाव 7,000 लेर 13,500, यानी सूंप के मायने काशा छेती है, यानी कम कम 7 ऊपर ला 13,500। इनके साथ ही असाड़िया भाव 5,600 लेर 6,000 तक नागौर मंडी रख ए आजरा भाव है। जो भी किसान भाई आप री फसल नागौर मंडी रे मायने जार बेचने चाहे तो इन भावों के अनुसार हूँ बेच सके है। और किसान भाई देखो आपने पानी बचाना है और इनके साथ साथ हरियाली भी आपने जानी है, क्योंकि देखा हाँ कि जद भी आप पढ़ता भी हा तो आपने मार साहब आई पढ़ा था कि जट ज्यादा पेड़ हुए तो बट बरसात भी ज्यादा हुआ करे। तो आपने राजस्थान ने हरियालो बनाना है और इन वास्ते यानी आपने संकल्प लेना है कि कम से कम 10 पेड़ तो मैं एक लो ही है जो लगा दे, और खाली लगाऊ की को ने बाने मोटा भी करना पड़ी तो बाने पालना पड़ी भाई किसान भाई। आपा जिया ना अपना टाबरा ने पाला बिन प्रकार पालना है। इन वास्ते मारा तो कहना है बढ़िया ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाओ हरियाली लाओ। और किसान भाई अब ते कहाँ घड़ी का नहीं तो तेवड़ो टेम हो रही है पूरा, तो आप रे प्रेम भाई ने दिराओ सीख करा। राम राम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। धन्यवाद आप सबका उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए। तो आइए करते हैं हमेशा की तरह शुरुआत आज के सुविचार से, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
3: वाह, संस्कृति प्रकृति के लाता सारे रंग, ऐसा कार्यक्रम है हमारा उमंग।
2: सबके लिए शिक्षा की प्रेरणा जगा देता है, ऐसा प्यारा है कार्यक्रम उमंग।
3: तो बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए जो आपने अपने प्यारे कार्यक्रम उमंग को समर्पित किया। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है सहसपुर लोरमी से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू, सतीबाई साहू और सत्यम साहू जी ने। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम ला सुनाइन दो कंपियर साथी हमरा बहुत सुंदर प्रस्तुति देईस, अहो ज्ञान वर्धक बात बताई ना, एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: हमें आशा है कि हमने इस भाषा को ठीक से पढ़ा है।
2: जी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पूछा गया पहला प्रश्न था, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
2: इसका उत्तर है, पंचतंत्र नीति साहित्य का कथा ग्रंथ है। इसके रचयिता 2500 से 3000 वर्ष पूर्व प्रसिद्ध आचार्य विष्णु शर्मा माने जाते हैं।
3: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बिरसा मुंडा द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किए गए विद्रोह का क्या नाम था?
2: इसका उत्तर है साथियों, बिरसा मुंडा द्वारा प्रारंभ किए गए विद्रोह को उल गुलान के नाम से जाना जाता है।
3: हमारा अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल कितने डिजाइन प्रस्तुत किए?
2: राष्ट्र ध्वज के चयन के लिए श्री पिंगली वेंकैया ने झंडों के कुल 30 डिजाइन प्रस्तुत किए थे।
3: और अब अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न था, वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए।
2: वीर सावरकर जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित किया गया?
2: राष्ट्रगान जन गण मन महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में लिखा था, लेकिन इसे देश का राष्ट्रगान 1950 में घोषित किया गया था।
3: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: बुर्ज खलीफा से पहले दुनिया की सबसे ऊंची मीनार किसे माना जाता था?
3: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
3: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो प्रारूप में भी NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर सुन सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नहीं होना बीमार।
2: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बड़े हास्य प्रहसन के साथ रोचक ढंग से बताया गया है कि एक बच्चा जब बीमारी का बहाना करते हुए स्कूल नहीं जाता तो उसे अपने घर पर कैसी कैसी अजीब और मजेदार परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
4: बेटा सुमेश, चलो झटपट तैयार हो जाओ, चाचा जी को देखने जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ।
5: जी दादाजी।
6: साथियों, हुआ ये कि सोमेश के चाचा सुधाकर अचानक बीमार हो गए, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
7: सोमेश दादा दादी के साथ अस्पताल पहुंचा। ये उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव था। उसने देखा,
5: वाह क्या सफाई है।

0: दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियों पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चकाचक, कोई शोर नहीं, अद्भुत शांति।
1: एक पलंग पर सुधाकर चाचा लेटे हुए थे। उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो गए।
2: कैसे हो बेटा, अब कैसी तबीयत है?
3: जी माँ जी, अब बहुत बेहतर हूँ।
2: अरे ये लो, डॉक्टर साहब भी आ गए। डॉक्टर साहब, सुधाकर के लिए थोड़ा सा साबुदाने का हलवा लाई थी, खिला दूँ? बड़ा स्वादिष्ट बनाया है। हाँ
4: जी जी, जरूर खिलाइए, शौक से खिलाइए। लेकिन हाँ, ना बाहर का खाना और ना तला भुना हुआ खाना।
0: वाह, क्या ठाट है बीमारों के भी। आराम से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबुदाने का हलवा खाते रहो, कोई काम भी नहीं करना पड़ता। काश सुधाकर चाचा की जगह मैं होता। ओह, मैं कब बीमार पड़ूंगा।
5: कुछ दिन बीत गए। एक दिन सोमेश को स्कूल जाने का मन नहीं हुआ। उसने होमवर्क भी नहीं किया था। स्कूल जाता तो जरूर सजा मिलती। उसने सोचा मम्मी पापा भी किसी काम से दूसरे शहर गए हैं, बीमार पड़ने के लिए आज का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, सो चलो बीमार पड़ जाते हैं।
6: सुमेश, सुमेश बेटा उठो, स्कूल का समय हो गया है।
0: दादी, लगता है मुझे बुखार है।
6: क्या कहा, बुखार है? अरे तेरे मम्मी पापा को भी कल ही जाना था, लेकिन तुम तो कल तक बिल्कुल ठीक ठाक थे। जरा माथा तो छूने दो। अरे तुम्हारा माथा तो बिल्कुल ठंडा है।
0: दादी, बुखार बस अभी अभी आया होगा, इसलिए माथा गर्म नहीं हुआ होगा।
6: अरे कोई बात नहीं, मैं जरा थर्मामीटर लेकर आती हूँ।
0: अरे दादी, इतनी जल्दी पता थोड़ी चलेगा।
6: लो ये रहा थर्मामीटर, चलो अब इसे अपने मुंह के अंदर रखो। हाँ
0: दादी, मुंह में रखने से पता थोड़ी चलेगा, अंदर जल रहा है।
6: अरे बेटा, लेकिन स्कूल का क्या होगा?
0: मैंने कहा ना, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, स्कूल नहीं जाना, अब तो पेट में भी दर्द हो रहा है।
6: अरे ये तो खांस भी रहा है, अब तो स्कूल बस भी निकल गई, चलो तुम आराम ही कर लो।
0: जी दादी।
1: सर्दियों के दिन थे, सोमेश को और क्या चाहिए था, रजाई में दुबक गया। थोड़ी देर में फिर से गहरी नींद आ गई। खटर पटर की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली।
7: सोमेश बेटा, बेटा सोमेश, अब कैसी तबीयत है?
0: जी दादाजी, अच्छा नहीं लग रहा है।
7: अरे अरे अरे अरे, फिक्र न करो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तबीयत। हो हो, तुम्हें तो खांसी भी है। अजी सुनती हो?
6: जी।
7: सुमेश को खांसी भी आ रही है, जरा वो वैद्य जी वाला काढ़ा भी लेती आना, गाढ़ा वाला काढ़ा।
6: जी जी, अभी लाई। लो बेटा, काढ़े के साथ साथ पुड़िया वाली दवा भी ले लो, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। चलो ये लो दवा, लो चलो चलो, गटक जाओ, शाबाश।
0: ओ, ये तो बहुत कड़वी है ये।
6: अच्छा, इसे खाने में क्या देना है?
7: देखो, आज शाम तक उपवास ही करे तो अच्छा, सारे विकार निकल जाएंगे। बेटा

0: अब तुम थोड़ा आराम कर लो, लेट जाओ। शाबाश।
1: जी दादाजी।
2: दोनों चले गए। सोमेश को फिर से नींद आ गई। तेज भूख भला निंदिया रानी को कैसे टिकने देती। थोड़ी देर बाद आंख खुल गई। लेटे रहना मजबूरी थी, यूं ही पड़ा रहा। पड़े पड़े अब पीठ भी दुखने लगी थी, लेकिन कोई उपाय न था। लगभग एक घंटे के बाद फिर से दादाजी आए।
3: कैसी तबीयत है बेटा?
1: जी जी अब बिल्कुल ठीक हूँ।
3: बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बेटा तुम्हें दवाई पूरी लेनी पड़ेगी। दवा बीच में नहीं छोड़ते, रात होने तक दो बार लेनी है। लो लो दवा पी लो, चलो उठो उठो। शाबाश। पकड़ता हूँ। उठो। चलो चलो। शाबाश बेटा, अब तुम आराम कर लो, ले जाओ।
2: बड़ी मुसीबत थी ये नाटक, अब भारी पड़ता जा रहा था। भूख के कारण नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीजें ही दिखाई पड़ती।
1: बर्तनों की आवाज आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू भी तो निचोड़ा होगा। हरी मिर्च भी तली गई है, उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जरा देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा। पूछते तो साबुदाने का हलवा ही तो मांगता, कोई ताजमहल थोड़ी ही मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो सोमेश बाबू, सारे विकार निकल जाएंगे। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे कोई, इससे अच्छा तो स्कूल ही चला जाता। सजा ही तो मिलती, पर ऐसी सजा, उफ।
4: पीछे रेडियो पर गाना चल रहा था, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अब तो सोमेश बाबू हाय हाय करने लगे। जब रहा नहीं गया तो रजाई फेंक कर खड़े हो गए और दरवाजे के पास जाकर बाहर झांका। खाना नहीं मिला तो खुशबू ही सूंघने लगे। कि तभी,
3: अरे सुमेश बेटा जग गए, कुछ आराम आया बेटा है? बोलो ठीक है ना? अरे अब तो तुम्हें खांसी भी बिल्कुल नहीं है।
1: जी दादाजी।
5: चलो चलो बिस्तर पर लेट जाओ, वरना ठंड लग जाएगी। हाँ मैं बस अभी आई। तुम्हें एक पुड़िया और देनी है। हाँ, और शाम तक
3: बिल्कुल ठीक हो जाओगे बेटा।
1: जी।
2: सोमेश जलन, गुस्से और कुढ़न में पांव पटकता वापस बिस्तर पर आ गया। उसे पूरे दिन भूखे पेट ही रहना पड़ा था।
4: सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए उसने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया।
6: साथियों, इस कार्यक्रम में आपने एक वाक्य सुना, सारे विकार निकल जाएंगे। विकार का अर्थ है कोई शारीरिक या मानसिक समस्या या दोष। इस अवस्था में शरीर का कोई अंग यह तंत्र सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाता है। अभी आपने सुना ये मनोरंजक कार्यक्रम नहीं होना बीमार। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिद्धो और कान्हू।
7: ऐसे नहीं मानेगा।
8: साहब मत करो साहब।
7: चल सिपाही।
9: यस सर।
8: साहब
7: इसको हंटर मारो।
8: साहब
9: जी सर।
8: साहब

0: अबुआ राज अबुआ दिसुम, ये था नारा संथाल जनजाति के हुल आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक सिद्धो और कान्हू।
1: अठारह के आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की पहली लड़ाई माना जाता है, लेकिन इससे पहले भी देश भर में स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर विदेशी शासन के विरुद्ध अनेक छोटे बड़े आंदोलन हुए हैं। यदि कहें कि इन आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर के आंदोलनों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
2: आज हम बात करेंगे आजादी की लड़ाई को बल देने वाले एक ऐसे आंदोलन की जिसका नेतृत्व सिद्धो और कान्हू नामक दो संथाल आदिवासी युवकों ने किया। ये आंदोलन हुल आंदोलन या संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
1: जनसंख्या की दृष्टि से संथाल आज भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। सिद्धो मुर्मू और कान्हू मुर्मू का जन्म भोगना डीह नामक गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था, जो कि वर्तमान में झारखंड के साहेबगंज जिले में है। सिद्धो मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में हुआ था और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था।
2: इनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था।
1: जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। इस नीति के तहत वो बहुत से भारतीय जमींदारों, सामंतों, महाजनों और साहूकारों के सहयोग से भोले भाले आदिवासियों का शोषण करते थे। इस क्षेत्र में अंग्रेजों का आधिपत्य सन 1756 से ही हो चुका था। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत दयनीय थी।
3: ए मैन, तुम्हारा नाम क्या है?
4: जी, मेरा नाम कोड़ा है।
3: ओके, तो तुम कोड़ा हो
4: जी।
3: तुम यहाँ फसल कैसे काट रहे हो?
4: जी, ये मेरी जमीन है।
3: तुम्हारा जमीन थी, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुमने माल गुजारी नहीं दिया है।
4: जी, मुझे थोड़ा और समय दीजिए। इस बार की उपज बेचकर पूरी माल गुजारी चुका दूंगा।
3: पिछले साल भी तुमने यही बोला था। सरकारी आदेश आया है कि तुम्हारी फसल जब्त कर ले जाए।
4: नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिए। हम क्या खाएंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे साहब।
3: ये तो तुमको पहले सोचना चाहिए था। सिपाहियों,
5: जी सर,
3: आगे बढ़ो और कटी हुई फसल को बैलगाड़ी में डालो।
5: जी सर।
3: और खेत में रात का पैरा बिठा दो।
5: जी सर।
3: बाकी फसल कल काट लेंगे, कचहरी में जमा कराना है।
5: जी सर।
4: नहीं नहीं साहब, साहब ऐसा मत करो। साहब ऐसा मत करो।
3: चलो हटो।
4: साहब
3: आओ।
4: साहब
3: आओ। ए, ऐसे नहीं मानेगा।
4: साहब मत करो। साहब
3: सिपाही।
5: यस सर।
4: साहब
3: इसको हंटर मारो।
4: साहब
5: जी सर।
4: साहब साहब मत करो। साहब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। साहब साहब मत करो। साहब मैं बर्बाद हो जाऊंगा।
1: इस तरह की अनेक घटनाएं उन दिनों में आम थी। लगान नहीं देने पर, बड़ी क्रूरता से पैसा वसूलना, कर्जा नहीं चुकाने पर किशोरों और बच्चों तक को बेगारी में लगाना, जमीन हड़प लेना, कर्जा देकर भारी सूद वसूल करना आदि ऐसी घटनाएं थीं जिनके कारण धीरे धीरे आदिवासी समुदाय में असंतोष पनपने लगा।

0: निवासी लोग अपने खेतों के उत्पाद जैसे अनाज, दूध, शहद, जंगली कंदमूल और साग सब्जियां इत्यादि बाजार में बेचने आते थे। महाजन और जमींदारों के कारिंदे कर्मचारी बाजारों में भी उनका भारी शोषण करते थे।
1: होता ये था कि वो बड़े बटखरे से इनके उत्पादन को खरीदते थे और छोटे हल्के बटखरे से उन्हें भारी कीमत पर उसी सामान को बेचते थे। असंतोष बढ़ता जा रहा था। कई बार आदिवासियों ने इन बातों का थोड़ा बहुत विरोध भी किया, लेकिन उन्हें बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। कचहरी थी, लेकिन कहीं न्याय नहीं मिलता था। विदेशी हुकूमत और स्वदेशी जमींदारों की साझेदारी के कारण उन पर दोहरी मार पड़ती थी।
0: सिदो और कान्हू अक्सर इन बातों पर अपने परिवार में और गांव के लोगों के साथ चर्चा किया करते।
2: भाई कान्हू।
3: जी भैया।
2: अंग्रेज अफसरों और उनके लोगों का शोषण तो बढ़ता ही जा रहा है।
3: हाँ, वो तो है। आज ही देखो ना क्या हुआ।
2: क्या हुआ?
3: सुबह जगत बेसरा के घर से उसके दो बेटों को जमींदार उठा ले गया।
2: क्या कान्हू, अब तो हमें कुछ करना ही होगा।
3: हाँ भैया।
2: ऐसा करते हैं, कल गांव वालों की एक बैठक बुलाते हैं, वहाँ विचार करेंगे कि हमें क्या करना है।
3: लेकिन भैया, मुझे लगता है कि सिर्फ गांव के लोगों को बुलाना ठीक नहीं रहेगा।
2: तो फिर
3: कम से कम आसपास के 5-10 गांवों को बुलावा भेजना चाहिए।
2: हाँ, ठीक कहा तुमने।
3: हाँ,
2: ऐसा ही करेंगे।
3: जी भैया।
0: फिर क्या था, आसपास के 10 गांवों की सभा बुलाई गई और सर्वसम्मति से तय किया गया कि बड़े पैमाने पर अंग्रेजों और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे शोषण का जबरदस्त विरोध किया जाएगा।
1: सबके मन में भयंकर आक्रोश पनपने लगा था। 10 गांवों के लोगों ने मिलकर तय किया कि मात्र 10 गांवों से काम नहीं चलेगा, 100 गांवों से भी अधिक गांवों को न्योता भेजा गया। सिदो कान्हू ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इस काम में उनके दो भाइयों चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू, साथ ही दो बहनों फुलो मुर्मू और झानो मुर्मू ने भी पूरा सहयोग दिया।
0: लोगों को एकत्रित और संगठित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों की परंपरागत विधि अपनाई। गांवों में डुगडुगी बजा दी गई और साल वृक्ष की टहनी भेजी गई। साल वृक्ष संपन्नता, स्थायित्व, जीवन और क्रांति का प्रतीक है। तीर धनुष के साथ लोगों को सभा में आने का आह्वान किया गया। इस आंदोलन में आदिवासियों के अलावा समाज के दूसरे तबके के लोगों ने भी भाग लिया।
1: दिन था 30 जून 1855। स्थान सिदो कान्हू का गांव भगनाडीह। जंगलों पहाड़ों से निकलकर भारी संख्या में संथाल आदिवासी जमा होने लगे। पारंपरिक हथियारों के साथ लगभग 20,000 लोग सभा स्थल पर जमा हो गए। सिदो ने जोश भरा क्रांतिकारी भाषण दिया।
4: अंग्रेजों का अत्याचार तो अरे हमारी जमीन
5: मेरे संथाल भाई और बहन, आज हमारा जो हाल है वो किसी से भी छुपा नहीं है।
6: सही बोले, सही कहे।
5: हमारी जमीन हमसे छीन ली गई है।
7: हाँ, सही कहा।
5: हमारे जवान बच्चों से बेगारी कराई जाती है। सूद की दर इतनी भारी है कि हम चुका नहीं सकते।
6: भैया सही बात
7: कह रहे हैं।
5: बाजार में हम अपना ही सामान नहीं बेच सकते। माल गुजारी नहीं देने पर हमारी फसलें जब्त कर ली जाती है।
7: हमारी भी फसलें जब्त कर ली गई।
5: लेकिन भाइयों अब समय आ गया है। अब समय आ गया है कि हम इन बातों का विरोध करें। और हमारा नारा है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
8: अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
5: अब करो या मर जाओ।
8: अब करो या मर जाओ।
5: अबुआ राज, अबुआ किसम।
8: अबुआ राज, अबुआ किसम।

0: इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति घोषित कर दिया गया। भारी भीड़ तीर धनुष के साथ चल पड़ी और अंग्रेज अफसरों, स्थानीय साहूकारों और जमींदारों के कार्यालयों और घरों पर हमला कर दिया गया। उनकी विशाल कोठियों पर अधिकार कर लिया गया। लगभग 19 अंग्रेज अधिकारियों और उनके साथ काम करने वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी।
1: क्रांतिकारियों ने वीरभूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। रघुनाथपुर और संग्रामपुर की लड़ाई में संथालों की बड़ी जीत हुई, लेकिन तब तक ब्रिटिश सेना बुला ली गई। सेना ने बंदूकों से क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। भला बंदूकों के आगे तीर कमान कब तक टिकते। युद्ध धीरे धीरे मंद पड़ने लगा था। सिद्धो कान्हू के दोनों भाई चांद और भैरव युद्ध में शहीद हो गए।
0: इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। सिद्धो और कान्हू के कुछ साथी लालच में आकर अंग्रेजों से मिल गए और गद्दारों के सहयोग से उपरबंदा गांव के पास कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अगस्त को बढ़ैत गांव में सिद्धू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों भाइयों को खुलेआम फांसी दे दी गई।
1: इसके साथ ही सशक्त नेतृत्व के अभाव में आंदोलन कमजोर पड़ गया और धीरे धीरे विद्रोह को कुचल दिया गया। बेशक आंदोलन समाप्त हो गया, लेकिन परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 को कानूनन संथाल परगना जिला की स्थापना हुई और इस आदिवासी क्षेत्र का विशेष कानून बना, जिसके कारण आदिवासियों को बहुत से अधिकार मिल गए।
0: संथाल विद्रोह या हूल आंदोलन का तो अंत हो गया, लेकिन इसने कुछ साल बाद 1857 की आजादी की लड़ाई की भूमिका बना दी थी, जो अखिल भारत की स्वतंत्रता का पहला आंदोलन माना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो और करो या मर जाओ। ये मात्र संयोग नहीं है कि आजादी की लड़ाई में यही नारे अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो के नाम से प्रसिद्ध हुए।
1: आज भारत का आदिवासी समुदाय और समस्त देश इन भाइयों पर गर्व करता है। 30 जून को संथाली हूल दिवस पूरे झारखंड में मनाया जाता है। संथाली गीतों में आज भी सिद्धो और कान्हू का शौर्य गाया जाता है।

0: और उनके शहीद स्थलों पर मेले लगते हैं।
1: भारत सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया, उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया और उनके नाम पर संथाल परगना में सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसमें जनजातीय विषयों पर गहराई से शोध किया जाता है। इन शहीदों को हमारा शत शत नमन।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सिद्धू और कान्हू। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर

0: समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ चेतना, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का अभी आप 1351वां भाग सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल से। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार का गाया गुलामी फिल्म का ये गीत, जिसे पसंद किया है मायला बाजार जाहिल से संपत कुमार, शांतिबाई, अनिल, अमन और नमन ने। तो ये सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी नागौर से आप कार्यक्रम दिल से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अगली फरमाइश भेजी है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खंड से और विनोद खंड से ने। आप सुनना चाहते हैं अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण का गाया लाल दुपट्टा मलमल का फिल्म से ये गीत।

सुनवा रहे हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से, पसंद किया है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। आप सुनना चाहते हैं अमर अकबर एंथोनी फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको दिल से कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं। नैया फिल्म का गीत यशोदास का गाया है। इसे पसंद किया है सुराणा की बड़ी पोल नागौर से जय सिंह ललवाणी और उनके परिवार वाले। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

दिल से कार्यक्रम में सोशल मीडिया के आधार पर हम फरमाइशी फिल्मी गीत सुना रहे हैं। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत वडिंग खेड़ा पंजाब से पसंद किया है मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा ने। आप सभी सुनना चाहते हैं राधा का संगम फिल्म से लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार का गाया ये गीत। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्में गीत अभी आप कार्यक्रम दिल से मैं सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। विविधा कार्यक्रम के तहत हम आपको एक झलकी सुना रहे हैं, बलि का बकरा। तो आइए सुनते हैं ये झलकी।

0: खराबी है जो चूजू का मुरब्बा हो रहा है। कमरा सुधारू या दरवाजा टूटने से बचाऊ? और ये आने वाले लोग भी नींद से ही उठते ही चले आते हैं। अरे खोल रहा हूँ, नींद तो खुल जाने दो।
1: खोल रहा है, खोल रहा है। नमस्कार,
0: 100%
1: नमस्कार।
0: मेरे कान एकदम 6x6 के हैं। आप जरा धीरे बोलिए, धीरे, आहिस्ता आहिस्ता।
2: अंदर आने को नहीं कहोगे क्या?
0: हेलो अजी, अंदर तो आप खड़े ही हैं, फिर भी आइए आइए आइए आइए। घर में सब कुशल मंगल तो है जी? वो बोरिया बिस्तर भी ले आइए ना।
2: कमरा तो बहुत छोटा है, क्यों है? अरे कैसे गुजारा होता है तुम्हारा?
0: जी आदमी के रहने के लिए बहुत है।
2: क्या क्या मतलब?
0: जी मेरा मतलब ये है कि एक आदमी के रहने के लिए ठीक है, अब फिर आप तो जानते ही हैं जनाब की महंगाई किस कदर से बढ़ रही है।
2: अरे बरखुरदार, इस उम्र में महंगाई की चिंता करते हो? अरे अभी तो तुम्हारे खाने पीने के दिन है। हाँ, ऐश करो ऐश।
0: वो कैसे?
2: अपना तो एक ही सिद्धांत है। हाँ, महंगा पहनो, महंगा खाओ और महंगे रहो।
0: वो तो आपको देखकर ही मालूम हो रहा है जनाब, पर आदमी अगर सारा इन्हीं में खर्च कर देगा तो बचेगा क्या उसके पास?
2: बचेगा? अरे बचेगा क्यों नहीं, अगर आदमी अकल वाला हो तो जरूर बचेगा। हाँ क्यों जी, तुम्हारा क्या ख्याल है, बचता है ना?
3: अजी बचता है, एकदम बचता है। 4-5 लाख तो बच ही जाते हैं साल में, ठीक है ना?
4: साल का नहीं, महीने का बोल ले मम्मी।
2: कितनी समझदार हो गई है हमारी रानी बिटिया।
0: जी हाँ, जी हाँ।
2: पर वास्तविकता इन दोनों को पता नहीं है। 2 लाख तो मेरे 10 दिन में ही बच जाते हैं।
0: हाँ, बच जाते हैं जनाब, वो तो आपकी शक्ल ही बता रही है।
2: क्या बता रही है मेरी शक्ल? क्या लिखा है मेरी शक्ल में भला?
0: अजी लिखा नहीं, छपा बोलिए छपा। अजी 100-100 के नोट और चांदी के सिक्के, वाह।
4: कितना अच्छा जोक करते हैं। हरे हरे नोट नहीं, काले काले नोट, चेचक के 10 चांदी के सिक्के नजर आ रहे हैं क्या?
3: चुप पगली, सबको थोड़े ही बताते हैं कि पापा काले हैं। और काले हैं तो क्या हुआ, कैसे स्मार्ट है, फिल्मों में एक्टर होते बिल्कुल वैसे।
4: विलन कहते शर्म आती है ना मम्मी?
3: चुप, जैसी शक्ल वैसी अकल, आपकी बोली तो 2 बचे-खुचे दांत और तोड़ दूंगी।
2: तो बेटे मैं जब भी बाहर जाता हूँ 5 स्टार से कम नहीं ठहरता। हाँ
0: अजी क्यों नहीं, क्यों नहीं, 5 स्टार समझकर ही तो आप आ गए मेरे घर में। अब तो आपने देख ही लिया है।
2: अरे तुम तो नाहक बुरा मान रहे हो, तुम एकदम चिंता मत करो। हाँ हाँ, रातों रात तुम्हारे इस कमरे को बंगला बनवा सकता हूँ।
0: बंगला? बंगला?
2: हाँ।
0: वो कैसे?
2: अरे आदमी समझदार हो तो तकदीर बदलते देर थोड़े ही लगती है भला। क्यों जी, ठीक है ना?
3: क्यों नहीं, तुम भी तो इसी की तरह कंगाल थे, मुझसे शादी करते ही करोड़पति हो गए, वरना भीख मांगते फिरते सड़कों पे।
4: पापा पिक्चरों में भी तो ऐसा ही होता है ना, हीरो गरीब और हीरोइन मेरे जैसी।
2: कितनी समझदार हो गई है हमारी बिटिया।
0: जी हाँ।
2: अरे कितने साल की हो गई है तू?
3: अरे बताना, बशर्मा मत, बता बता।
4: 16 साल 24 महीने 13 दिन 76 घंटे और 160 सेकंड।
2: देखा तुमने, क्या मैथमेटिक्स है हमारी बिटिया का।
4: मैथमेटिक्स नहीं पापा, मैथमेटिक्स।
3: आपने क्या आवाज है, एकदम रेडियो वॉइस, कैसी लगी अजय जी आपको?
0: अरे बहुत जानदार लगी, बहुत जानदार। वाह वाह वाह, क्या आवाज है, गाय के रंभाने से भी अच्छी है। क्या आवाज है अजी, मैं तो कहता हूँ कि गधे भी सुने तो 2 साल तक ढैचू ढैचू भूल जाए। और वैसे भी मुझे जानवरों की आवाज बहुत पसंद है जी।
3: अजी देखा आपने, कितनी मिलती है दोनों की पसंद। हमारी बिटिया को भी गाय और भैंस बहुत ही पसंद है।
0: होगी होगी होगी, अरे वो तो शक्ल देखते ही पता चल जाता है।
2: बेटे पर वो तुम्हारी मम्मी कहाँ गई?
0: अजी मम्मी बहुत भाग्यशाली है जनाब, कल ही सूरतगढ़ गई है।
2: क्या कहा, क्या वो यहाँ नहीं है?
0: जी नहीं।
2: अरे राम राम राम राम, अधर्म हो गया, अधर्म हो गया।
0: क्यों?
2: उनकी गैर हाजिरी में तो हमें यहाँ कतई नहीं ठहरना चाहिए।
0: अच्छा, और ये तो बहुत नेक विचार है आपके। तो सामान उठाओ।

0: टैक्सी करूं?
1: अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दो, हम भला तुम्हारा दिल तोड़ सकते हैं, रहने दो रहने दो,
2: और फिर आप भी बुरा मान जाएंगे, है ना?
0: अजी बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। जाएंगे आप?
3: बेटे वो तुम्हारे बाथरूम किधर है?
0: क्यों?
3: हम दोनों जरा हाथ मुंह धो लें। क्यों? तब तक तुम बिटिया रानी से बातें करो।
0: बिटिया रानी से?
1: अच्छा बोलते, लड़ना नहीं, अभी आते हैं।
0: सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए, मेरा बाथरूम छोटा है जनाब, आप दोनों एक साथ कैसे नहाएंगे उसमें? आप में से एक यही मेरे पास रुकिए ना।
3: अरे इसकी तुम चिंता मत करो।
0: अरे सुनिए, ओ गए, ये आप इस तरह घूर घूर कर मुझे क्या देख रही हैं? क्या आपने आदमी नहीं देखा कभी?
2: सुनो, तुमने कभी बकरा कटते हुए देखा है?
0: बकरा कटते हुए? हाँ। क्या मतलब?
2: जब धीरे धीरे चाकू बकरे की गर्दन पे चलता है, कितना दर्द से दिल बिलाता है। मुझे बहुत मजा आता है देखने में, बहुत मजा आता है।
0: राम राम राम राम राम। अरे ब्राह्मण बालिका होकर ऐसे ख्याल आ तुम्हारे, एकदम रौ रौ नरक मिलेगी तुमको। हाँ
2: मुझे तुम्हारी शक्ल उसी बकरे जैसी लग रही है।
0: क्या कहा? मेरी शक्ल बकरे जैसी? और तुम, तुमने कभी आईना देखा है?
2: आईना? आईने से हमारे डैडी बहुत चिढ़ते हैं, इसलिए घर में ही नहीं रखने देते। पर हाँ, मैंने बचपन में एक बार नानी के यहाँ आईना देखा था, वो तुरंत टूट गया।
0: बहुत खुशकिस्मत था जो टूट गया है, वरना इतनी भयानक शक्ल।
2: सुनो, तुम्हारी सैलरी कितनी है प्रियतम?
0: मेरी सैलरी? मेरी सैलरी से तुम्हें क्या मतलब? देखो देखो देखो, तुम जरा दूर बैठो, है दूर बैठो। ये तुमने इतने ये बड़े बड़े नाखून क्यों बढ़ा रखे हैं? एकदम डायन जैसे।
2: ये तो तुम्हारे लिए है जानी।
0: जानी?
2: तुम्हें प्यार करूंगी इनसे। एक गाना सुनोगे?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं,
2: मेरा तुझसे है पहले कनाटा कोई, यू ही नहीं दिल बाता कोई।
0: मैं आया एक मिनट।
3: अरे अरे अरे अरे अरे, भाग कहाँ रहे हो बेटे? हम आ गए हैं। भोजनी, तुम जरा चाय बना कर लाओ बेटे।
0: ए भगवान, मेरी रसोई का क्या होगा? बुरा न मानो तो एक बात पूछूं जनाब आपसे?
3: अरे पूछो बेटे पूछो, शर्म कैसी इसमें?
0: वो ये आप लोग हैं कौन, और ये मुझे कैसे जानते हैं? यहाँ क्यों आए हैं? क्या आपकी लड़की के दिमाग का इलाज करवाने तो नहीं आए आप?
3: भोतरी का दिमाग 100% ठीक है। हाँ, रही बात तुम्हें जानने की, तो बेटे ये मत पूछो।
0: वो क्यों?
3: बस मत पूछो।
0: चलिए नहीं पूछते।
3: खैर, हम जब तुमने पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम भंगराज रामचंद्र है। हाँ, ये है मेरी पत्नी सुनंदा।
1: नमस्ते।
3: और उसे तो तुम जानते ही हो, मेरी प्यारी बिटिया भोथरी।
0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ।
1: बेटे हम लोग तुम्हारे खानदानी समझी है।
0: क्या मतलब?
3: तुम्हारे चाचा के ससुर की दूसरी पत्नी की भाभी भी हमारे खानदान की थी,
1: और तुम्हारे नाना की दूसरी पत्नी के देवर की साली हमारे खानदान की थी।
3: और अब हमारे खानदान का लेटेस्ट प्रोडक्शन है भोथरी।
1: तुम्हें भोथरी तो पसंद ही है ना बेटे?
0: भोथरी पसंद समझी? मामला क्या है गड़बड़? सुनिए, मुझे ऑफिस लेट हो रहा है, मैं रात को आऊंगा, आप लोग मेरी चिंता मत करिएगा, मैं चलता हूँ।
1: अरे अभी तो 8 ही बजे हैं। अरे कपड़े, अरे नाइट ड्रेस, अरे सुनो तो सही।
2: अरे जा कर रहे हो? देखो कितने प्यार से चाय बना कर लाई हूँ।
0: चाय?
2: हाँ, वो क्या हुआ, दूध में गलती से पानी की जगह केरोसिन डल गया।
0: केरोसिन?
2: हाँ, पर क्या फर्क पड़ता है, प्रेम में तो जहर भी पी लेते हैं।
0: सुनिए, चाय मैं नहीं पीता है, मैं नहीं पीता, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ।

0: साहब आपको बड़े साहब ने बुलाया।
1: मुझे और बड़े साहब ने? अरे भाई आज तो मैं 2 घंटे पहले आ गया था। चल भैया आ जाए, फिर कोई मेमो तैयार है आज। चल मे आई कम इन।

0: सर।
1: कम इन कम इन। हेलो जय, आओ आओ बेटे बैठो। रामलाल दो कॉफी लाना। सुनाओ जय कैसे हो, ऑफिस में कोई ट्रबल तो नहीं?
2: अरे सर ट्रबल, आप खुश हो तो भला फिर ट्रबल का क्या काम।
1: बहुत समझदार हो वाकई, तुम जैसे लोगों ने ही इस ऑफिस की शान बना रखी है।
2: ये आप क्या कह रहे हैं सर।
1: मेरा एक दोस्त है भृंगराज।
2: भृंगराज
1: तुम्हारे घर ठहरा होगा?
2: हाँ।
1: बचपन का दोस्त है मेरा, बहुत पैसा है, करोड़ों का व्यापार है। उसकी एक सुंदर सी लड़की है, क्या नाम है?
2: भोतरी सर।
1: हाँ तुम्हें पसंद है ना
2: सर? मैं वो
1: अरे भाई ऐश करोगे ऐश, घर मोटर फैक्ट्री, तुम्हारे सपने सच हो जाएंगे।
2: सर मैं सपने देखता ही नहीं हूँ।
1: अजय आज जिसके पास पैसा है सब सुख है, सुंदरता का क्या है, आज है कल नहीं।
2: पर सर क्या पूरे भारत में एक मैं ही कुंवारा बचा हूं? मुझे नहीं बिकना सर, आप कोई दूसरी जगह ट्राई करवा दे उसकी।
1: अजय डोंट बी फुलिश, ध्यान रखो तुम्हारा प्रमोशन ड्यू है, तुम मुझे सोच के जवाब देना। जाओ
3: मेरे पांव को छोड़िए, मैं यहीं सो रहा हूं जनाब, कहीं नहीं भागूंगा, कहीं नहीं भागूंगा।
4: बहुत मजा आता है, बहुत मजा
3: आता है। मुझे नहीं करनी शादी, मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, मैं तो नहीं करूंगा।
5: पानी लाना, अरे पानी
4: प्रियतम, मेरे
3: प्रियतम, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बचपन से मुझे एक दौरा पड़ता है जनाब। हाँ जी, उस दौरे में मेरे सामने जो भी आता है उसका मैं गला दबा देता हूँ। अरे इसीलिए तो मेरी शादी नहीं हो रही जनाब। हाँ, लगता है दौरा पड़ रहा है। हाँ गला गला गला गला गला दौरा गला दबाओ गला दबाऊंगा
6: दबाओ
3: गला दबाऊंगा गला गला। अरे अरे मुझे अकेला मत छोड़, मेरा मुझे अकेला मत छोड़, गला गला गला गला गला गला गए गए। अरे अपना बेडिंग तो लेते जाते।

विविधा कार्यक्रम में अभी आप ये झलकी सुन रहे थे बलि का बकरा। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से सुनेंगे समाचार संध्या।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं की गहन जांच करने का निर्देश दिया। भारतीय जनता

0: पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से यूपीआई के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गॉल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और हमलों की साजिश नाकाम की। एक रिपोर्ट।
1: ये आतंकी गतिविधियां स्वतंत्रता दिवस के आसपास की जानी थी। इस ऑपरेशन के तहत 14 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51 और पंजाब से 44 लोग शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान आईएसआई समर्थित इस आतंकी संगठन के पास से आईईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद किए गए। शहजाद भट्टी नेटवर्क पाकिस्तान में स्थित और आईएसआई समर्थित एक आतंकी सिंडिकेट है जो पूरे भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों और टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा है। अब तक इस नेटवर्क के खिलाफ 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। अमन यादव के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,900 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। ये प्रस्ताव 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 प्रस्ताव शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रस्तावकों को मंजूरी पत्र सौंपे। श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं से रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में 106 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो चुके हैं। इन एक प्रोजेक्ट्स में 69,548 करोड़ इन्वेस्टमेंट आ रहा है और 2.5 लाख लोगों को टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिला के इन फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जिस स्कीम में 31 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत तेजी से इंडस्ट्री ने अपना इन्वेस्टमेंट लगाकर 38 प्रोजेक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग और ऑलरेडी चालू कर दी है और 16 प्रोजेक्ट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि इन परियोजनाओं में एसिटिलीन ब्लैक, स्पीकर और माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ट्रांसीवर, कैपेसिटर और कॉइल जैसे उत्पादों का विनिर्माण शामिल है।
2: भारत में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 7 गुना बढ़ी है, अब 13 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 11 गुना बढ़कर 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इलेक्ट से होने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, उसके बाद में मॉड्यूल्स और उसके बाद में कंपोनेंट्स और आगे डीप जाने पर कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने वाले मटेरियल्स और कैपिटल इक्विपमेंट, जिन मशीनों से इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है।
0: शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। एक रिपोर्ट।
3: श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा है। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर बताए गए शक्ति की सप्त धारा से कृषि और ग्रामीण भारत को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में योजनाएं बनाकर और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करके इस लक्ष्य को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री ने कृषि और खाद्य उत्पादन को मजबूत करने, खाद्य प्रसंस्करण तथा वैश्विक बाजारों तक पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट। केंद्रीय

0: दूसरी ओर भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावड़े, सुनील बंसल, स्मृति ईरानी और बिप्लब कुमार देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त पदाधिकारी पार्टी को मजबूत करने और जनसेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारी विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव तन्मय कुमार ने कहा है कि ब्रिक्स संगठन पिछले 2 दशक में आर्थिक संवाद मंच से विकसित होकर महत्वपूर्ण चुनौतियों के समाधान का प्रभावी मंच बन गया है। आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर पर्यावरण कार्य समूह और संपर्क समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि ये चुनौतियां बढ़ते प्रदूषण, जैव विविधता हानि और बढ़ते तापमान की वैश्विक समस्या से संबंधित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान में मध्य करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे वर्ष 2002 और 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 1 दशक में भारत की विदेश नीति किस प्रकार विकसित हुई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 15 चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र निर्माण, पासपोर्ट सेवा केंद्र, पुराने नियमों को समाप्त करने और नए नियम बनाने, प्रशासन में तकनीकी बदलाव तथा लेखा व्यवस्था जैसी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बदलती प्रशासनिक और सामाजिक जरूरतों के अनुसार पेंशन प्रक्रिया को लगातार सरल बना रही है। उन्होंने बताया कि पेंशन फॉर्म से अनावश्यक प्रावधान हटाए गए हैं और जटिल प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया है।
2: भारत सरकार में सेवानिवृत्त या पेंशनर्स की संख्या, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, वर्किंग एम्प्लॉय, उससे कहीं अधिक है। द रिटायरमेंट हैपनिंग एट द एज ऑफ 60 व्हेन द लाइफ स्पैन हैज गॉन ऑलमोस्ट अप टू 70, सो मोस्ट ऑफ दीज रिटायरिंग कुलीग्स आर इन द प्राइम ऑफ देयर हेल्थ, ऑल्सो प्राइम ऑफ देयर एक्सपर्टाइज, प्राइम ऑफ देयर एक्सपीरियंस, और इसलिए उनको इस तरह से छुट्टी पे न जाने दिया जाए। उनकी सेवाएं, उनका योगदान किसी न किसी तरह से राष्ट्र निर्माण के कार्य आए और किस प्रकार आ सकता है, ये उनके साथ चर्चा करने का माध्यम बने।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने फर्जी जमानतदारों को लेकर चिंताओं के बीच मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम से संबंधित मामलों में आरोपी विदेशी नागरिकों के लिए जमानत की शर्तें कठोर करने का आदेश दिया है। इस संबंध में कई निर्देश जारी करते हुए न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि जमानत पर रिहा किए गए विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट संबंधित न्यायालयों में जमा करने होंगे और वे पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा नहीं कर सकेंगे। देश की 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के लिए बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रह गई, जो इस वर्ष जून में 5.5% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मासिक श्रम बल और बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जारी किए हैं। ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने घटकर 4.5% रह गई, जबकि जून में यह 5% थी। हर घर तिरंगा अभियान का आज समापन हो गया। हर घर तिरंगा अभियान के 5वें वर्ष में लाखों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने, तिरंगा यात्राओं में शामिल होने और वंदे मातरम गाने के लिए एकजुट हुए। 2022 में शुरू हुआ यह अभियान अब देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस वर्ष का अभियान भारत के राष्ट्र गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर केंद्रित था, जिसमें देशभक्ति के अनोखे जश्न के तौर पर राष्ट्रध्वज और राष्ट्र गीत को एक साथ लाया गया। देश भर में तिरंगा यात्राओं, साइकिल और मोटरसाइकिल रैलियां, सांस्कृतिक जुलूसों, स्कूल कॉलेज के कार्यक्रमों और सामुदायिक आयोजनों में हर घर तिरंगा की भावना साफ दिखी। पिछले 5 वर्षों में हर घर तिरंगा

0: लोगों की भागीदारी और गर्व का एक देशव्यापी प्रतीक बन गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर पर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सुविधा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोग कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेज सकते हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 281 अंक लुढ़क कर 77,728 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी में 78 अंक की गिरावट देखी गई और ये 24,288 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 18 पैसे कमजोर होकर 95.61 रुपए पर बंद हुआ।
1: और अब कुछ खेल खबरें। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी नई दिल्ली में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। सिंधु ने महिला सिंगल्स में आयरलैंड की सोफिया नोबल को और आयुष ने पुरुष सिंगल्स में चीन के शी युकी को हराया। उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लगभग 42,000 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है।
3: केवंझर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, जाजपुर और केंद्रापड़ा में बाढ़ का असर हुआ है, जिससे 1,304 गांव के लगभग 8 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। बैतरणी, ब्राह्मणी और सालंदी नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को भोजन, पीने का पानी और बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आज भद्रक और जाजपुर जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया और राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया। राज्य के जल संसाधन विभाग का कहना है कि यह स्थिति अगले 4 से 5 दिनों तक बनी रह सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने झारखंड में कल के लिए तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, स्वतंत्रता दिवस से पहले ISI समर्थित शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया गया, 200 से अधिक संचालक गिरफ्तार। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने परीक्षा सुधारों पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। कतर में रहने वाले भारतीयों के लिए डाकघरों से UPI के माध्यम से घर पैसे भेजने की सुविधा शुरू। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागौर द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। रात्रि के 9:15 बजे है। लीजिए पेश है दर्द भरे गीत फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, मोहम्मद रफी का गाया शहरा फिल्म का ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं शरारत फिल्म से मोहम्मद रफ़ी का गाया। गीत की रचना असद भोपाली ने की है और धुन बनाई है गणेश ने।

0: अभी आप सुन रहे थे मुकेश को देवर फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दीदार फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में, लेकिन पहले ये संदेश।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

अभी आप दर्द भरे गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.7 MHz पर। रात्रि के 9:15 बजने को हैं। अब आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण विविध भारती मुंबई से सुनेंगे।

0: जाए।
1: श्रोताओ, आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश और शारदा की आवाजों में शैलेंद्र हैं।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आज के फनकार में आज हैं हिंदी फिल्म जगत के मनोरंजन का हंसता हंसाता गुदगुदाता दर्शकों की जिंदगी में मुस्कुराहट बिखेरने वाला फिल्मकार डेविड धवन यानी डबल डी। डेविड मतलब सेल्यूलाइट का धमाल। ओ लाल।

आंखें वो फिल्म थी जिसकी सफलता के साथ डेविड धवन ने एक फिल्मकार के रूप में फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बतौर एक निर्देशक स्वर्ग, शोला और शबनम, साजन चले ससुराल, जुड़वा, जुड़वा दो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दुल्हन हम ले जाएंगे, मुझसे शादी करोगी, पार्टनर और मैं तेरा हीरो जैसी फिल्मों से डेविड धवन मनोरंजन की बहार लेकर आए।

1993 की एक्शन थ्रिलर आंखें और 1999 की कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर वन ने इन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड के लिए नामांकन दिलवाया।

0: डेविड धवन का मूल नाम राजेंद्र धवन है। राजेंद्र धवन का जन्म 16 अगस्त 1951 को अगरतला में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। अब चूंकि इनके पिता बैंक में थे तो उनका स्थानांतरण कानपुर हो गया और वहीं क्राइस्ट चर्च कॉलेज और बीएनएसडी इंटर कॉलेज में 12वीं तक की पढ़ाई के पश्चात अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर चलते हुए डेविड धवन ने फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एफटीआईआई में एक्टिंग के कोर्स के लिए एडमिशन ले लिया। एफटीआईआई की बातें अभी बाकी है, आइए पहले आगे बढ़े हैं बोल राजा बोल के इस गीत को साथ लेकर। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे ऋषि कपूर और जूही चावला।
1: टुक टुक

जी हम बात कर रहे हैं FTII की। यहाँ राजेंद्र धवन ने एडमिशन तो एक्टिंग के कोर्स में लिया था, पर कलाकार सतीश शाह और सुरेश ओबराय से वहाँ मिलकर, जो वहाँ के विद्यार्थी थे, इन्हें लगा कि एक्टिंग इनके बस की बात नहीं है, तो इन्होंने विकल्प के रूप में एडिटिंग को चुना और गोल्ड मेडल के साथ अपनी परीक्षा पास की। वैसे तो मनमोहन देसाई और ऋषिकेश मुखर्जी आपके पसंदीदा निर्देशक थे, पर ऋत्विक घटक की बांग्ला फिल्म मेघा ढाका तारा देखकर आपने एक निर्देशक बनने का सोचा, और जो सोचा वही किया, और कमाल का किया।

डेविड धवन के नाम को लेकर बड़ा ही रोचक और आत्मीय संबंध है। अगरतला में इनके पड़ोसी कैथोलिक परिवार ने इन्हें डेविड कहकर पुकारा, इस तरह से उन्हें पुकारा करते थे, और यही नाम इन्होंने अपने पहले नाम राजेंद्र की जगह चुना और FTII में इसी नाम से दाखिल हुए। वैसे ये जानना भी कुछ श्रोताओं के लिए सुखद होगा कि डेविड के बड़े भाई हैं मशहूर अभिनेता अनिल धवन। छोटे छोटे शहरों से हम तो झोला उठा के चले, डेविड की जीवन यात्रा से जुड़ता हुआ ये गीत है। ये अलग बात है कि चेतना और पिया का घर फेम हीरो अनिल धवन, इनके बड़े भाई, फिल्मों में उस वक्त सक्रिय थे, पर फिल्मों में काम मिलना तब भी उतना आसान नहीं था। मुंबई पहुंचे डेविड ने आरंभिक दौर में बॉम्बे टीवी के न्यूज सेक्शन में एडिटिंग से शुरुआत की। पहला एडिटिंग का ब्रेक सावन कुमार और पहलाज निहलानी ने इन्हें दिया। फिर राजेंद्र कुमार की लव स्टोरी, महेश भट्ट की नाम और सारांश जैसी फिल्मों के सफल संपादन से आपने अपना नाम किया। राजेश खन्ना और संजय दत्त डेविड धवन की संपादन कला के मुरीद थे। डेविड धवन भी मानते हैं कि संजय दत्त ही थे जिनके कारण इन्हें बतौर निर्देशक पहला पहला मौका मिला, और फिल्म थी शोला और

0: गोरी गोरी बाकी चोरे शर्मिली और नखरे वाली।
1: डेविड धवन का जिक्र हो और गोविंदा का नहीं, या फिर गोविंदा का जिक्र हो और डेविड धवन का नहीं, तो बात अधूरी लगती है। चलिए बात को पूरी कर लेते हैं। पहले कुली नंबर 1 फिल्म का ये गाना सुनते हैं।

डेविड और गोविंदा की जोड़ी ने हिंदी फिल्म दर्शकों को अनेक हंसाती गुदगुदाती हास्य प्रधान फिल्में दी। 18 फिल्में इन्होंने साथ की। चलिए इनके साथ की गई फिल्मों के गीतों की एक मेडली सुन लेते हैं।

एक निर्देशक के लिए गोविंदा को फिल्म में लेना निश्चित रूप से सफलता का प्रतीक था। जहां तक डेविड धवन की बात है तो आपका मानना है कि गोविंदा इज द बेस्ट एक्टर, एक ऐसा अभिनेता जो मामूली सीन को भी मनोरंजक बना देता है। और जहां तक गोविंदा के सेट पर देरी से पहुंचने की बात है तो निर्देशक का मानना है कि इससे फिल्म पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि गोविंदा एक तेज कलाकार है। 10 घंटे का काम 4 घंटे में बड़ी ही सफलता और कामयाबी के साथ कर लेते थे। डेविड धवन एक भावुक और आत्मीय इंसान है। 90 के दशक में जरूर काम की अधिकता ने इन्हें एक बैड टेम्पर का बना दिया था, पर आज अपनी 41 फिल्मों के बाद इनका मानना है कि वे अब काफी कूल हैं। अपनी पत्नी करुणा चोपड़ा धवन को आप अपने परिवार का सबसे महत्वपूर्ण भावनात्मक इमोशनल एंकर मानते हैं, जिन्होंने इनके परिवार को सहेजा, दुलारा, प्रोत्साहित किया। डेविड धवन के 2 बेटे हैं, एक रोहित और दूसरे वरुण धवन।

एक कलाकार और निर्देशक का ये बाप बेटे का प्यारा रिश्ता है जो फिल्मों में भी साथ साथ देखने को मिलता है। वरुण धवन को आप एक नटखट बालक के रूप में पाते हैं, पर फिल्म के सेट पर जब डेविड धवन होते हैं तो वरुण सिर्फ एक निर्देशक का कलाकार होता है।

डेविड धवन ने सिनेमा हॉल के अंदर अंधेरी दुनिया में मुस्कान की दौलत खूब लुटाई है। राजा बाबू, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, साजन चले ससुराल, बड़े मियां छोटे मियां, बनारसी बाबू, दीवाना मस्ताना, दुल्हन हम ले जाएंगे, हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, जोड़ी नंबर वन, शादी नंबर वन जैसी खूब नंबर एक फिल्में बनाई है इन्होंने। दर्शकों ने भी इनकी फिल्मों पर प्यार लुटाया है।

0: तो ये था आज के फनकार, जो केंद्रित था निर्देशक डेविड धवन पर। आलेख और स्वर जी श्याम का, संपादन आकांक्षा सिंह का, और प्रस्तुतकर्ता थे रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: धरती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के प्यारे लाल
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी ही हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण अभी आप विविध भारती मुंबई से सुन रहे थे। एफएम एंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल दिन में 8:55 पर हमारी पहली प्रसारण सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।